हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 अगस्त 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण आरंभ होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 MHz पर 6 बजने वाले हैं। और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि-कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
1: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है।

0: पहली बार आयोजित सूर्य पथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधा कृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी आप दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 6:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना। सबसे पहले आइए करें वंदना इस पावन मातृभूमि की।

भगवान भोलेनाथ को समर्पित इस मधुर भजन के बाद आइए सुनते हैं प्रभु श्री कृष्ण को समर्पित ये भजन।

0: और इस मधुर भक्ति रचना के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM में 103.2 MHz पर 6:30 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है कद्दू वर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण। वाचन स्वर अभिनव गौराहा का।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आज आपन बर हम खेती के बात में लेके आए हैं कद्दू वर्गीय सब्जी मन में कीट के नियंत्रण और प्रबंधन। कद्दू वर्गीय सब्जी में आनी बानी के जेन नार वाले सब्जी होते सब आते, चाहे खीरा, लौकी, कोहड़ा या वो कोनो भी साग के बात करी। जब हमार फसल बढ़ते, हमार पौधा वृद्धि करते, तो आनी बानी के कीट के भी आक्रमण होते। सबले जेन मुख्य कीट होते ओला कहे जाते लाल भृंग। यह लाल रंग के होते और दूरिया ले चटक दिख जाते, विशेषकर प्रारंभिक अवस्था में खा के छलनी जैसन बना देते। खाद जाते और अपन संख्या बढ़ा जाते। ग्रसित जेन पत्ती रही थी उमन फट जाते और पौधा के बढ़वार हा रुक जाते। हरियर हरियर पत्ती में लाल लाल किरुआ हा दिख जाते, वैसे भी लाल रंग हमन ला दूर से ही दिख जाते। तो एकर नियंत्रण कौन ढंग से कर सकत हन? खर पतवार मन ला नष्ट करके खेत ला साफ सुथरा रखना है। ओखर बाद दवाई के बात करी, मेलाथियान 5% दवाई 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में मिलाना है। एक कीट पर कार्बोरिल 0.2% घोल के छिड़काव घलो हा प्रभावी रही थे। दूसर कीट के बात करी कटवर्म। एक कीट नन्हा या उगे वाले पौधा के बीज पत्र या पौधा के शीर्ष ला काट देते, जेखर से खेत में पौधा के संख्या हा कम हो जाते। नियंत्रण बर ग्रीष्मकालीन गहरा जुताई एक कीट के निष्क्रिय अवस्था मन ला नष्ट कर देते। नियंत्रण बर बीज के बुआई के समय या पौधा रोपाई के समय कार्बोफ्यूरान 3G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भूया में मिलाना है। तीसर बात करी ब्लिस्टर बीटल। ये आकर्षक चमकीला रंग के बड़े आकार के भृंग होते। एकर पंखा में 3 करिया करिया या 3 पीवरा रंग के पट्टी होते। ये ज़्यादा नुकसान करते, काबर यह पुष्प के फूल के कली और फूल ला खा के नष्ट कर देते।

0: से फर नहीं मिले। नियंत्रण बर खेत में एखर संख्या कम होए मा इमन ला हाथ से पकड़ के हम नष्ट कर सकत हन। ज़्यादा प्रकोप होते तो 0.2% कार्बोरील के छिड़काव हमन ला करना है। अगला कीट की बात करी लीप माइनर। ये पत्ती के ऊपरी भाग में टेढ़गा मेढ़गा भुरवा रंग के सुरंग बना देते। एखर नियंत्रण बर नीम के बीज के सतला 5% या ट्रायोफास 0.5% के 3 सप्ताह के अंतर में छिड़काव करना है। फल मक्खी के बात करी कद्दू वर्गी सब्जी फसल में फल में आक्रमण करे वाले कीट है। एखर जन मैगट होते छोटे फल ला ज़्यादा नुकसान पहुँचाते। मैगट में सीधा नियंत्रण संभव नहीं है, लेकिन वयस्क नर मक्खी के संख्या में नियंत्रण करे से प्रकोप ला कम करे जा सकते। नियंत्रण बर रात के समय खेत में प्रकाश प्रपंच लगाना है और नर वयस्क ला फेरोमेन ट्रेप लगा के नियंत्रित करना है। थायोडान 6 ml प्रति लीटर 4 से 5 लीटर पानी में घोल के छिड़काव करना है। साथ में कीट के निगरानी हमला समय समय में करत रहना है। लाल मकड़ी के बात करी ये कीट भूरवा हल्का लाल रंग के होते जौन पत्ती के निचला सतह में उतक मन लखा के जाली नुआ बना देते। पूरा पत्ती है जाली कस बन जाते और पर्ण हरित के अभाव में प्रकाश संश्लेषण कम होते, फलस्वरूप उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ते। नियंत्रण बर डाइकोफाल 18.5 EC 2.5 ml दवाई प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव हमन ला करना है। तो ए होइस कद्दू वर्गी सब्जी में कीट के प्रबंधन।
1: खेती के बाद अभी आप सुन रहे थे वाचन स्वर अभिनव ग्वारहा का विषय कद्दूवर्गीय सब्जियों में कीट नियंत्रण। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:35 हुए हैं और अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस गान।

वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशलक्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें? किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।

0: श्री राम चरित मानस गान अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 6:45 हुए हैं। और अब आइए सुनते हैं आज का चिंतन आलेख श्री वल्लभ चंद्र थानवी का।
1: अंग्रेजी कहावत है, एज यू थिंक सो यू बिकम। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। सोच ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, इसलिए सोच सदा सकारात्मक होनी चाहिए। इस विषय में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि सूरदास और उनके सद्गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का संवाद उल्लेखनीय है। जब सूरदास जी ने सुना कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी शास्त्रार्थ में मायावादियों को परास्त कर आगरा पधारे हैं, तो वे उनके दर्शन करने आए। महाप्रभु ने उन्हें स्वरचित पद सुनाने को कहा। सूरदास जी ने गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जे ही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसे शूकर ग्रामी, सूर्य पतिति की कौन गति भय है, सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास जी ने यद्यपि बहुत दीनता भाव से स्वदोषों का वर्णन किया था, पर महाप्रभु ने अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, सूर वै के घिघियात काहे हो। सूरदास, तुम सूर अर्थात विद्वान हो, फिर ऐसे घिघियाते क्यों हो। महाप्रभु जी ने आगे कहा, जीव जब सो प्रभु सो बिछुड़ियो है, तब सो पतित भय गयो, या में कहनो ही कहाँ है। अर्थात अपने मूल सच्चिदानंद रूप से अलग होने पर जीव का पतन होना निश्चित ही था, सो हुआ ही है। इसे बार बार कहना तो पिष्ट पेषण है। कोयले को बार बार घिसने से केवल काली ही हाथ लगती है, कोयला उजला नहीं होता। महाप्रभु ने सकारात्मक सोच प्रदान करते हुए कहा, सूरदास अब तुम कुछ भगवत लीला का गुणानुवाद करो, जिससे मन का संताप दूर हो। यह है सद्गुरु देव की अहेतु की कृपा। वे जानते हैं कि जिस प्रकार अग्नि से निकलकर चिंगारी जब दूर जा गिरती है तो ठंडी होकर कोयला बन जाती है। अग्नि का मौलिक धर्म उष्णता और प्रकाश दोनों ही कोयले में दिखाई नहीं देते। अब यदि इस कोयले को पुनः धधकती

0: हुई आग में डाल दिया जाए तो वो प्रज्वलित होकर चमकने और दहकने लगता है। जीव ने भी जब से ब्रह्म से बिछुड़कर देह को अपना घर मान लिया, तब से वो भी बुझे हुए कोयले की तरह कांतिहीन हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जबते जीव हरिते बिलगानियो, तबते देह गेह निज जानियो। निसंदेह कोयले में अग्नि तत्व है, पर वो गुप्त अवस्था में है। अग्नि के संपर्क में आने पर उसके भीतर की अग्नि भी प्रकट हो जाती है। मनुष्य में भी निरानंद की अवस्था का कारण अपने आनंद से अपने को पृथक कर लेने के कारण है। वो आनंद उसमें विद्यमान है, पर प्रकट नहीं होने से वो अपने को दुखी, पराधीन, ऐश्वर्यहीन मान लेता है और ऐसा ही व्यवहार करता है। यह नकारात्मक सोच का ही परिणाम है कि मनुष्य आनंद स्वरूप की संतान होकर भी आनंद से वंचित रहता है। जबकि भगवद गीता बार बार कहती है, ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है। अंश के सारे गुण अंश में विद्यमान रहते ही हैं, फर्क केवल परिमाण का है, गुण का नहीं। मानसकार जीवन के बारे में कहते हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज ही सुख का भंडार होते हुए भी असहाय और दीनहीन मान लेना उसके नकारात्मक सोच का ही परिणाम है। बस दृढ़तापूर्वक एक बार सकारात्मक सोच की जरूरत है। जरा अपने दिल में छिपे दिलवर की ओर एकाग्रता से झांक लें तो उसे सही सोच प्राप्त हो सकती है। गालिब कहते हैं, दिल के आईने में छुपी यार की तस्वीर है, जरा गर्दन झुकाई और देख ली। नकारात्मक सोच ही वो पर्दा है जो हमारे और उसके बीच पड़ा हुआ है। स्वामी रामतीर्थ ने इसे पहचान लिया और मस्ती में गा उठे, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। मेरा यार मुझ में छुपा था, मुझे मालूम न था। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। सकारात्मक सोच की मैं आनंद का अंश, आनंद रूप ही हूं। शोक, भय, उद्वेग, चिंता, ये तो मेरे नकारात्मक सोच का परिणाम है। बस हो गया काम। ये कोरी कल्पना नहीं, वास्तविकता है। सारे शास्त्र और महापुरुष अपनी अपनी शैली में यही बताते आए हैं। इसके सिवाय शांति प्राप्ति का और कोई रास्ता नहीं है।
1: चिंतन अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब कार्यक्रम विवरण में आइए, हम आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के विषय में। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर। प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय का एपिसोड 8 आप सुनेंगे आज सुबह 9:00। नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों आप सुनेंगे सुबह 10:00, जिसमें सामयिक चर्चा होगी आज़ादी का अमृत पर। प्रायोजित कार्यक्रम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहतराई बिलासपुर का। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। और सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। विषय हार्निया की पहचान समय पर करें व इलाज करवाएं, डॉक्टर गुरविंदर सिंह से पद्मामणी की बातचीत। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन, प्रायोजक GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे सुबह 7:40। विविध भारती प्रसारण सेवा से हम जुड़ेंगे सुबह 9:15। सुबह 11:00 हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। 11:55 पर रायपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार होंगे। दोपहर 12:00 हम दोबारा जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

शाम की सभा में 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। रायपुर केंद्र से शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कानून की बात, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013, श्रीमती इंदिरा तिवारी जिला महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर। रायपुर केंद्र से शाम 6:05 पर आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी। शाम 7:30 पर आप सुनेंगे ग्राम सभा जिसमें बेरा के गुट का विषय होगा, मौसमी सब्जियों की देखभाल, फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम, आप मन के गीत।

इसके साथ ही क्रम होगा मौसम मंडी और सामयिक सुझाव का। सुगम संगीत में आप सुनेंगे रात 8 बजे अभिजीत पोहनकर के गीत और 8:15 पर हम हाजिर होंगे लेकर रजनीगंधा की महक। शाम 5:05 पर आप आनंद लेंगे चित्रपट संगीत का और शाम 5:35, शाम 6:20 और शाम 7 आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें गीत सुनें। दिल्ली केंद्र से रात 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या, रात 9 अंग्रेजी में समाचार और रात 9:15 पर हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार हिंदी में और 11:05 पर समाचार अंग्रेजी में। कार्यक्रम विवरण समाप्त। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। FM 103.2 MHz पर 6:55 होने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति। अद्य श्रीराधाकृष्णन् चेङ्गलपट्टुनगरे SMR विज्ञानप्रौद्योगिकी संस्थायाः 22तम दीक्षान्तसमारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नईनगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिमबंगालराज्यानां पूर्वराज्यपालस्य प्रथमपुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नईनगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचनकार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिलायात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागदनिर्मित पाटलचटिकाव्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बसयात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बसयानेषु कागदनिर्मित पाटलचटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिकापर्यन्तं 54 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया।

0: रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निःशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament.
2: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। सुबह के 7:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं नमस्कार। कल हम सभी ने अपने देश की आज़ादी का पर्व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। श्रोताओं यह दिन हम सभी के लिए गर्व, सम्मान और राष्ट्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन हमने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और देशभक्ति गीतों और अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से अपनी भावनाओं को, अपने देशभक्ति के भाव को व्यक्त किया। श्रोताओं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि यह आत्मचिंतन का भी अवसर। स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली एक अमूल्य धरोहर है। लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमें ये आज़ादी मिली।

स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन जब उत्सव की गूंज धीरे धीरे शांत होने लगती है, तब हमें स्वयं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की ज़रूरत है कि क्या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन उतनी ही गंभीरता से कर रहे हैं जितनी गंभीरता से हम अपने अधिकारों की बात करते हैं। एक सशक्त राष्ट्र केवल अधिकारों से नहीं बल्कि जिम्मेदार नागरिकों से बनता है। संविधान ने हमें अनेक अधिकार दिए हैं, लेकिन साथ ही कुछ मूल कर्तव्यों की भी अपेक्षा की है। देश के प्रति सम्मान, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सद्भाव बनाए रखना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना और कानून का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदार नागरिकता का अर्थ केवल मतदान करना नहीं है, इसका अर्थ है अपने आसपास के समाज के प्रति संवेदनशील होना। यदि हम सड़क पर कचरा नहीं फैलाते, यातायात नियमों का पालन करते हैं, जल और बिजली की बचत करते हैं, महिलाओं और बच्चों का सम्मान करते हैं, सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हैं और ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आते हैं, तो हम एक बेहतर नागरिक होने का परिचय देते हैं। आज के समय में युवाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। हमारे युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की शक्ति भी हैं। उनकी ऊर्जा, नवाचार और सकारात्मक सोच देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि युवा राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करें और समाज में जागरूकता, समानता और सेवा की भावना को बढ़ावा दें। श्रोताओं, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ जीवन जीना भी है। जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर उनका पालन करता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और राष्ट्र विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचता है। आइए स्वतंत्रता दिवस के उत्सव को केवल एक दिन तक सीमित न रखें। हम यह संकल्प लें कि अपने दैनिक जीवन में ऐसे कार्य करेंगे जो देश, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आए। राष्ट्रप्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, कार्यों और जिम्मेदारियों के निर्वहन में दिखाई देना चाहिए।

0: बाजार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, जीवन में सुबह का जो समय होता है हम सब के लिए एक नई शुरुआत का दिन होता है। सुबह केवल एक दिन का आरंभ नहीं बल्कि नए अवसरों, नई उम्मीदों और नए संकल्पों का संदेश लेकर आती है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों न रहे, सूरज की पहली किरण हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद उजाला ज़रूर आता है। प्रकृति हमें प्रतिदिन यह पाठ पढ़ाती है

कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जैसे सूर्योदय के साथ पक्षियों का कलरव वातावरण को जीवंत बना देता है, वैसे ही सकारात्मक विचार हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सुबह का समय आत्मचिंतन, योजना और अपने लक्ष्यों को याद करने का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। जो व्यक्ति दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ करता है, वह चुनौतियों का सामना भी अधिक आत्म

दिन की शुरुआत उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ करता है, वह चुनौतियों का सामना भी अधिक आत्मविश्वास के साथ कर पाता है। महान व्यक्तियों के जीवन को यदि हम देखें, उनका अध्ययन करें, तो पाएंगे कि उन्होंने समय के महत्व को समझा और अगले दिन की शुरुआत अनुशासन के साथ की। सुबह का शांत वातावरण हमें खुद से जुड़ने का अवसर देता है। यह समय हमें अपने सपनों को दिशा देने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां बेहद कठिन हो जाती है, असफलताएं निराश कर सकती है, लेकिन हर सुबह यह संदेश देती है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, पर आने वाला कल हमारे प्रयासों से बेहतर बनाया जा सकता है। इसलिए हमें अपने मन से नकारात्मकता को दूर कर आशा और विश्वास का दीप जलाए रखना चाहिए। आइए हम संकल्प लें कि प्रत्येक सुबह का स्वागत मुस्कान के साथ करेंगे, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझेंगे तथा अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पूरा करेंगे। याद रखिए, छोटी छोटी सकारात्मक आदतें ही बड़े बदलावों का आधार बनती है। हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का। इसलिए उठिए, जागिए और नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को सार्थक बनाने में जुट जाइए।

सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। और अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात डॉक्टर के साथ। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की, प्रायोजक GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर लिंक रोड बिलासपुर।

0: सकता हूँ। आकाशवाणी बिलासपुर हर सप्ताह रविवार को सुबह 7:30 बजे स्वास्थ्य का एक बहुत जरूरी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आता है, सेहत की बात डॉक्टर के साथ। कल की बारिश जिसका इंतजार हम सभी को था, अच्छा तो लगा, लेकिन साथ साथ वो घनघोर बारिश ढेर सारी तबाही लेकर बिलासपुर आई। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां जल भराव नहीं हुआ हो और लोग परेशान नहीं हुए हों। जो कुछ फिजिकल या भौतिक रूप से जो समस्याएं आई हैं हमारे जीवन में, वो तो बाढ़ के साथ आई ही, लेकिन बाढ़ के पानी के उतरने के साथ ही हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं, उन समस्याओं का अब हमें सामना करना पड़ेगा। तो आज इसी संदर्भ में कि कौन कौन सी स्वास्थ्य जनित समस्याएं हैं जो बाढ़ के साथ आती हैं और बाढ़ के पानी के जाने के बाद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती हैं, इनके बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से बाढ़ से कौन कौन सी स्वास्थ्य जनित समस्याएं पैदा होती हैं?
1: जी सुप्रिया जी, बाढ़ से एक बहुत ही विषम परिस्थिति जो पैदा होती है, उसका जो मूल कारण है वो है बहुत सारा जब जल इकट्ठा होता है, बह के आता है, तो साथ में अपने बहुत सारी गंदगी भी लेके आता है। अब आजकल सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं, बहुत सारा जल अगर है, बहुत सारा पानी आया, बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, तो वो पानी सेप्टिक टैंक्स में भी घुस जाता है, नालों में भी जाता है, और वहाँ से ओवरफ्लो करते हुए फिर हमारे घरों के अंदर आता है, हमारे किचन में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हर तरफ आता है, हमारे घर के आसपास फैलता है। तो ये मान के चलिए कि जो गंदगी पहले हमने अलग करके रखी थी नालों में, सेप्टिक टैंक्स में, वो सारी गंदगी लौट के वापस हमारे घरों के अंदर घुस के आ गई। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हुई। सोचो उसके साथ कितनी सारी बीमारियों को लेकर हमारे घर के अंदर उसने प्रवेश किया है, तो एक बहुत ही गंभीर समस्या है।
0: सही बात है डॉक्टर साहब। जैसा आपने कहा कि ये जो गंदा पानी है, जो सेप्टिक टैंक और नाली और सीवरेज का था, वो मिल गया, सब तरफ से मिल गया, हो सकता है जमीन के अंदर रिस के हमारे पीने के पानी के साथ भी वो जा रहा हो, मिल रहा, तो कौन कौन से ऐसे वेक्टर्स हैं, कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो इस समय अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकते हैं?
1: देखिए, ये आमतौर पे जो गंदगी होती है, मलमूत्र जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ पर बैक्टीरिया पनपते ही हैं, और ये बैक्टीरिया सारे हमारे लिए पैथोजेनिक होते हैं, मतलब बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें कुछ वायरसेस भी होते हैं जो कि जॉन्डिस पैदा करते हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस, हेपेटाइटिस ई के वायरस ये पी लिया करेंगे
0: जी।
1: टाइफॉइड के बैक्टीरिया ये टाइफॉइड पैदा करेंगे। इसके अलावा कोलीफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आंत्रशोध, जिसको कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, ये पैदा करते हैं
0: जी जी।
1: तो ये तुरंत कुछ घंटों में से शुरू होके कुछ हफ्तों तक इसका असर देखने को मिलता है। तो अब ये सिम्टम कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आप इस तरह से घिर गए हो बाढ़ के पानी में और आपके पानी के स्रोत भी कंटेमिनेट हो गए हैं, उनमें दूषित जल मिल गया है, और उन पानी का सेवन करते हो या आप अपने खाने पीने में या यूज में इसको लेके आते हो पानी को, तो जाहिर है ये सारे जो कीटाणु हैं किसी न किसी रास्ते अगर आपके पेट के अंदर पहुंच गए तो इसके बाद तो ये आपके अंदर बीमारी पैदा करेंगे ही, और लक्षण भी तुरंत पैदा कर सकते हैं और कुछ दिनों के बाद भी पैदा कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और ये जो लक्षण अभी तुरंत ही पैदा होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे घातक संकेत कौन से हैं जिनके चलते हमको तुरंत चिकित्सकीय सेवा लेनी चाहिए?
1: देखिए, अगर आपको अचानक से उल्टी दस्त हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये आंत्रशोथ के शुरुआती लक्षण हैं। इसको आपको इग्नोर नहीं करना है और सेल्फ ट्रीट नहीं करना है, अपने आप इलाज घर में मत करिए। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ ORS का घोल पी लेते हैं या फिर कोई एक आध छोटी मोटी एंटीबायोटिक खा लेते हैं, लेकिन देखिए ये जो आपको इन्फेक्शन हुई है ये गंभीर इन्फेक्शन है, क्योंकि बहुत जगह का गंदा पानी आके मिला है आपके खाने के स्रोत में, पीने के स्रोत में, तो ये जो कीटाणु होंगे ये भयंकर होंगे, जटिल बीमारी पैदा करेंगे। इसलिए आपको घर पे नहीं बैठे रहना है और अपने आप इलाज इसका नहीं करना है, तुरंत आपको डॉक्टरी उपचार करवाना है, प्रॉपर डॉक्टर के पास जाकर वहाँ अपनी जांच करवानी है और सही समय पे इलाज करा लेना है, इससे पहले की स्थिति बिगड़े। क्योंकि जो जवान होते हैं कई बार उनमें प्रॉब्लम होती है, इस तरह की बीमारियां होती हैं, तो जल्दी ठीक हो जाती हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं या जो बुजुर्ग होते हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनमें पहले से कुछ न कुछ बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट की बीमारियां हैं या कोई और बड़ी बीमारियां पहले से चल रही हैं, उनमें यही आंत्रशोथ जानलेवा भी हो जाता है कई बार, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है इस समय।
0: और पानी के संदर्भ में हम अपने श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति जब पानी सब तरफ का मिल गया है तो हमें कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना, अपना खाना और पानी कैसा हो?
1: हमारा पानी बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए। अगर घर में RO है, फिल्टर है, तो वो करें, नहीं

0: है तो उबाल के ठंडा करके पिए। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बाहर से पानी मंगाएं, जहाँ से साफ़ पानी मिल सकता है वहाँ से पानी मंगवा लें। और ये पानी तो सबसे पहली ज़रूरत है, और ये पानी ना सिर्फ आपको पीने के लिए उपयोग करना है साफ़ पानी, बल्कि अपने बर्तन धोने हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि ये गंदे पानी से बर्तन आपने बिल्कुल भी नहीं धोने हैं, क्योंकि अगर वहाँ भी पानी ख़राब है अपने इस्तेमाल किया है तो वो भी ऐसी ही बीमारियों को पैदा करेगा।
1: मतलब छोटी छोटी सावधानियां हैं, देखिए श्रोताओं, हमको उन सब का ध्यान रखना है, क्योंकि इन सावधानियों का ध्यान रखकर यदि हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि एक बार बीमार होते हैं तो जो खर्चा बैठेगा वो शायद इससे कई गुना ज्यादा होगा।
0: बिल्कुल, यहीं पर बहुत ही व्यवस्थित रहने की ज़रूरत है।
1: जी
0: और अब जैसे बाढ़ का, चलिए पानी निकल गया, उसके बाद और नई समस्याएं पैदा होंगी। आपके घर से तो पानी निकल गया बाढ़ का, लेकिन आसपास आपके घरों में पानी जमा है, वहाँ भी फिर जब मच्छर पैदा होंगे तो मलेरिया लेकर आएंगे,
1: जी
0: डेंगू लेकर आएंगे। ये बीमारियां कुछ दिनों के बाद आएंगी, कुछ हफ्तों के बाद आएंगी। ये भी आपने देखना है कि जब जब मौसम साफ हो जाता है, बाढ़ कम हो जाता है, बाढ़ के पानी की निकासी हो जाती है, पूरी तरह से अपने आसपास को व्यवस्थित रखना है, साफ रखना है, ताकि वो बाद में होने वाली प्रॉब्लम्स भी आप ना हो। इसके अतिरिक्त जो पानी घरों में आ जाता है, गंदगी वाला पानी, और उसकी सीलन बहुत दिनों तक रह जाती है, उस सीलन में मोल्ड्स पैदा होते हैं, फंगस पैदा होते हैं, उनमें से एलर्जन निकलते हैं, और वो जो एलर्जन एलर्जी करके अस्थमा को पैदा करते हैं। अगर पहले से अस्थमा किसी को है, दमे की बीमारी है, तो उसको और बिगाड़ देते हैं।
1: जी
0: इसके
1: जी
0: अलावा बच्चों में, बुजुर्गों में निमोनिया तक पैदा होता है, ये भी बीमारियां होती हैं, तो उनका भी करना है, ख्याल रखना है। और जब अपने घर में जैसे बाढ़ छट जाए तो बहुत अच्छे से साफ सुथरे तरीके से जो भी सीलन है, सीलन के ऊपर जो भी काई जम जाती है उसको साफ करना है, मास्क लगा के साफ करना है, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और आगे भी घर में ये समस्या ना आए।
1: बहुत सही। और मेरे को लगता है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह हम लेकर बहुत सारी इस तरह की काई और उसकी
0: जी
1: समस्याओं को
0: हाँ
1: दूर कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। मच्छर से बचने के उपाय भी हम करें, मच्छरदानियां लगा के ही सोएं। तो
0: जी
1: मुझे लगता है ये सारी बातें हैं जो आराम से हम सब अपने मन में ध्यान में रखें, जागरूक रहें, तो हम आने वाले समय में स्वस्थ रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, समय इतना ही है कि हम चाहेंगे बाढ़ के समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, एक बार आप हमारे श्रोताओं को बता दें कि वो सुरक्षित रहें और परिवार को सुरक्षित रखें।
0: देखिए, साफ पानी का सेवन करें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, गंदे पानी में जाएं नहीं, क्योंकि गंदे पानी में भी जानवरों का जो पेशाब मिला होता है उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और अगर आप गंदे पानी में जाते ही हैं तो तुरंत आके हाथ पर अच्छे से साबुन पानी से धो लें, आसपास पानी जमा ना होने दें, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। और घर जो गंदा हो गया उसको अच्छे से साफ रखें ताकि बीमारी ना फैले।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत की बात डॉक्टर के साथ इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच थे इस अंचल के जाने माने उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सिंह।
0: धन्यवाद।
2: सेहत की बात डॉक्टर के साथ अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम। प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीन की, प्रायोजक GI फाउंडेशन और लीवर एंड गैस्ट्रो सेंटर, लिंक रोड, बिलासपुर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। और अब आइए आनंद लेते हैं सदाबहार नगमों का।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारी जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

1942 लव स्टोरी का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़, जावेद अख्तर के लिखे बोल और आर डी बर्मन का संगीत। अगला गीत सुनिए।

उदित नारायण की आवाज में ये गीत सुनिए, फिल्म और प्यार हो गया। जावेद अख्तर के लिखे बोल हैं और नुसरत फतेह अली खान का संगीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: और इसी के साथ सदाबहार नगमे का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 8 बजने वाले हैं और अब समाचारों के लिए हम जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में

0: सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
1: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गाँव गाँव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर के देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती हैं, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में

0: कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी एसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अखुआपदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गिंगुटी और कोकिला नदियों भी उफान पर है। आईएमडी ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश, जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का

0: मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की, इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा, अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030 India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए। लेकिन

संगवारी हो, जय जोहार, स्वीकार करा हमारे नमस्कार। और आज के कार्यक्रम ला आवा करा थन शुरू। और हमार करा पत्र भेजैया हमार श्रोता संगवारी मन हावे। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर ले हावे, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर भाटापारा दतरेंगी ले हावे, द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, कोरबी बेलतरा ले हावे, मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत, मानस राज और जिला मुंगेली गोल बाजार खपरी कला ले हावे, संतोष कुमार सोनी, सुनीता, अखिलेश, नेहल, पीहू, छोटी, दानिश, दीक्षा, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे और भूषण सोनी, कटघोरा गांव जुराली ले हावे, देवचरण पटेल, अंजोरमती पटेल, भूपेंद्र, महेंद्र, दक्ष, दिव्यांश और कुणाल कुमार, ग्राम रसेड़ा कलतरा ले हावे, मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार साहू, कीर्ति कुमार साहू, संध्या साहू, डिकेश औ वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, एक संग कदियापारा जूना बिलासपुर ले हावे, सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, मोनू, सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन और बमा चाटी डी ले हावे, गंगा देवी देवांगन, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की और बेबी मीनाक्षी, निधि देवांगन, बलौदा कलतरा ले हावे, दिलहरण गीत गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल और यह ले हावे, एमन हावे, अनिल वर्मा, पवन दीक्षित, हरिशंकर विश्वकर्मा, राजेश त्रिवेदी और अयोध्या गुप्ता। रावा सुनी हमारे जम्मू संगवारी मन के पसंद के कार्यक्रम के पहले गीत ला जिला गाए हावे, दुखिया बाई मरकाम।

0: अंतर से तोर दरस बिना मोर बैरी कलप कलप मंतर से।
1: ए सुघर गीत के पाछू आवा एक ठन अउ गीत ल सुन ली अउ ए गीत बर फरमाइश भेजैया हमर श्रोता संगवारी मन हावे इंदिरा विहार रायगढ़ ले अकरम नूरजहां डब्लू नूरजहां सईद नूरजहां वसीम वलीउल्ला नूरजहां राजनांदगांव ले हावे याकूब आसमा यूसुफ आसमा इमरान इरफान अउ जेल रोड रायगढ़ ले हावे रेशमा तिवारी सोनम तिवारी अदीबा तिवारी अउ लुतरा खमरिया ले हावे नकुल शाह मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीम उड़ी भाटा कलतरा ले हावे दिलीप चंदन चुवाराम यदु निखिल चंदन वसुंधरा औ प्रांजल चंदन औ ग्राम महमदपुर भक्तिन बजारा कलतरा ले हावे रमेश कैवर्त राजकुमारी औ आरती कैवर्त बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले हावे रोशन देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता देवांगन डिम्पल देवांगन डोंगरगांव ले हावे राष्ट्रपाल गजभिये तन्मय बेबी अनिष्का औ राधिका गजभिये बाग बहरा भदरसी ले हावे पन्नालाल सेन तारा सेन कौशल सेन औ खुशबू सेन यवतमाल विदर्भ ले हावे संतोष खटसे औ विनोद खटसे औ रुआ बांधा सनीचरी ले हावे सुशील जैन कल्पना जैन सिया जैन सौरभ जैन शौर्य जैन औ शुभम जैन औ ए पत्र ल भेजैया हमर श्रोता संगवारी हावे नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेन्द्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र

साहू और मोहन पारा कलतरा ले अभिनव साहू अभिषेक साहू और उमा देवी साहू ता हमारे जम्मो श्रोता संगवारी मन के पसंद के आवा एक गीत ला सुन ली ए लगाए हवे महावीर साहू।

महावीर साहू और तुलसी वर्मा के गाए इस सुघर श्रम गीत के पाछू आवा सुन ली ए गीत ला। और ये गीत पर हमार करा पत्र भेजैया हमारे श्रोता संगवारी मन हावे महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर मिथिलेश तारनी सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर गुड़िया ठाकुर एकरे संग हावे चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू और रविंद्र सेन धरसी वाले हावे छेंदू लाल यादव श्रीमती सीता यादव अर्चना अरुणा यादव अनुराधा अल्पना यादव और दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर ले हावे छन्नू लाल यादव अनुराग अभिषेक अलका अनामिका बलदाऊ कुमारी रानू खुशी प्रवीण साहू और सी एल यादव ग्राम बसी बार ले हावे शिव नारायण नामदेव सविता देवी राम प्रसाद कुमारी आंचल चंचल चांदनी विनय कुमार वर्षा डॉक्टर मनोज कुमार कंवर और शांति नगर पाली ले विष्णु सिंह कोराम श्रीमती संतोषी कोराम आरती पूर्वा प्रतिभा योगेश नीलेश चंद्रशेखर और समस्त कोराम परिवार और रैठी पारा भाटापारा ले हावे अनीता साहू वीना साहू नेहा साहू और मोनिशा साहू भाटापारा ले हावे बचकमल मोतीलाल यादव डॉक्टर बसंत भृगु विनय ठाकुर चोवाराम वर्मा सूरज बारेकर नारायण यदु लेखराम यदु राधेश्याम टेलर जितेंद्र साहू मरवाड़ी कुआं भाटापारा ले सियाराम टेलर अश्विनी पांडे सोना डेले सुब्रत चौधरी बेबी अनीसा और नीलू वेग हरिओम मेघानी आउ नेहरू वार्ड भाटापारा ले प्रेमलाल साहू भूपेन्द्र साहू दुष्यंत साहू राघवेंद्र साहू आउ मोहन पारा कलतरा ले अभिनव साहू आउ हथनी पारा भाटापारा ले हावे दुर्गा दुर्गेश्वरी मुकेश गीतु वर्मा हरीश किरण आउ दुलारी वर्मा दावा हमारे ए श्रोता संगवारी मन के पसंद के ए गीत ला सुनी ए गीत लगाए हमें ममता चंद्राकर और साथी मन।

आओ ममता चंद्राकर के संग साथी मन के गाए सुघर गीत के बाद कार्यक्रम के अंतिम गीत लावा सुन ली। और ये गीत ला सुने बर हमर करा पत्र भेजैया हमर श्रोता संगवारी मनहावे पीपर पारा पालचुआ मुगली छत्तीसगढ़ ले उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी दिवाकर योगिता नितिन दिवाकर और वंशिका दिवाकर सुभाष वाट भाटापारा ले हावे हेमिल यादव अजय कुमार यादव अमित कुमार यादव अमीन कुमार यादव गिरीश करण युवान दाविश यादव हदबंद नेवधा ले हावे सेवक राम यादव टुपेंद्र कुमार तुलेंद्र कुमार देव कुमार यादव और ग्राम कोटगढ़ अकलतरा ले हावे रमेश कैवर्त राजकुमारी सूरज सुरभि आरती कैवर्त सुभाष वाड भाटापारा ले हावे श्रीमती अमृता यादव पार्वती यादव ईश्वरी लक्ष्मी और प्रेरणा डिम्पी यादव हदबंद नेवलाले हावे दुलारी यादव प्रियंका प्रीति उमेश्वरी और सुनती यादव और ग्राम बेलर गांव ले हावे मिथिलेश देवांगन मधु देवांगन हिमांशु देवांगन।

एमन हावे दान सिंह रावत, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, भाटापारा ले। बुड़गान ले हावे रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार प्रजापति, चंद्रकांता प्रजापति, शशिकांता प्रजापति। और छत्तीसगढ़ पथरिया भोरवा ले हावे चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल। देवरी भाटापारा ले हावे गन्नूला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिश्री, माया राम रजक, पुनेश्वर रजक, फनेश्वर रजक और काव्या तान्या रजक। और दतरंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा। और भाटापारा दतरंगी ले हावे बेदबाई वर्मा, सुमित्रा, योगिता, फलेश्वरी वर्मा। तावा हमारे जम्मू श्रोता संगवारी मन के पसंद के कार्यक्रम के ए अंतिम गीत ला सुन ली।

नरेंद्र यादव, पिंकी मरावी अउ साथी मन के गाए ए सुघ्घर गीत के पाछू हमर ए कार्यक्रम ले हमन ल देवा अनुमति। अगले कार्यक्रम मा आप मन से फिर भेंट होही। जय जोहार।

0: छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर 9 बजे हैं। और अब लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम न्याय विभाग प्रायोजक विधि एवं न्याय मंत्रालय।
1: Talk on protection of women from domestic violence, ACT, access to justice, and Sakhi One Stop Center scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project, and Sanju Kumari, member One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: घरेलू हिंसा का अधिनियम है, टीवी एक्ट है, ये 2005 में आया है। तो पहला सवाल ये बनता है कि क्या औरतों के पास कोई तरीका नहीं था, कोई उपाय नहीं था अगर उनके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो कोई भी रिलीफ मांगने का या पाने का? और ऐसा तो नहीं है। तो क्या हुआ करता था कि हमारे पास क्रिमिनल लॉज हमेशा से थे, लेकिन घरेलू हिंसा का अधिनियम जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसे एक क्वासी क्रिमिनल रेमेडी माना जाता है। और इसका ये मतलब है कि इस कानून के अंतर्गत क्रिमिनल लॉज के जो रेमेडीज है, जो रिलीफ है, वो चले नहीं जाते हैं, बट ये उनके साथ साथ उनके उनको और मजबूत बनाने में कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वो 2005 में आया क्यों, उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, तो अगर हम एक्ट का थोड़ा मुआवजा करें तो हम देखेंगे कि इसमें पनिशमेंट जो है, सजा देना, इससे फोकस हटा के दूसरी चीजों पे फोकस कई ज्यादा दिया गया है कि हम सुरक्षा कैसे करें, रेसिडेंस का किस तरह से करा जाए, क्या टेम्परेरी कस्टडी की क्या बात हो सकती है, मॉनिटरी रिलीफ यानी कि पैसों के भरण पोषण की जो सुविधाएं हैं वो, इन टाइप के प्रोसेसेस कैसे किए जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी हम डीवी एक्ट के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हम क्यों आंसर करना चाहेंगे एक एक्ट के अंतर्गत, जब हमारे पास सजा देने की, जो जिन्होंने गलती की है, जिन्होंने गुनाह किया है, उनको सजा देने का मौका है। पहला सवाल ये कि पीड़िता को किस चीज की जरूरत है, और ये जो सोच है इसे हम सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, या पीड़िता को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से कानून बनाए जा सकते हैं, ये एक नजरिया हम इस एक्ट के अंतर्गत हम देख सकते हैं। और कोई भी पीड़िता को अगर वो घर छोड़ रही है किसी भी कानूनी घरेलू हिंसा की वजह से, तो पहली चीज उनको जरूरत हो सकती है कि उनको सुरक्षा रहे और घरेलू हिंसा उनके साथ ना हो, या फिर उन्हें दिन बर दिन डे टू डे भरण पोषण की जरूरत हो सकती है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ये सवाल आते हैं। सो पीड़िता के जो नीड्स है वो कहीं ना कहीं डीवी एक्ट कई ज्यादा आंसर कर पाती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाती है, जिस तरह से क्रिमिनल लॉज कई बार सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए पहला जो एंट्री पॉइंट है किसी भी पीड़िता के लिए वो डीवी एक्ट के अंतर्गत काफी आसान बनाया गया है। इसके अंतर्गत एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू है वो ये है कि कहीं भी एक्सेस टू जस्टिस की जहां हम बात करते हैं, तो किसी भी पीड़िता के लिए कोर्ट आना अपने घर से निकल के, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। जो भी सोसाइटल प्रेशर्स हो, फैमिली प्रेशर्स हो, खुद के अपने अंतर्गत ये हो कि हमने रिलेशंस खराब नहीं करने हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारे जो हमारे फैमिली यूनिट के प्रेशर्स होते हैं, ये सारों को निकल के कोर्ट तक पहुंचना, ये रास्ता भी काफी लंबा होता है। और इसके लिए ना कि ये सिर्फ जरूरत है कि हमारे हम पीड़िता को बोले कि आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, बट ओवरऑल जैसे हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं।

0: की सोसाइटी में जागरूकता होनी चाहिए ताकि पीड़िता को उस तरह का सपोर्ट भी मिल पाए। तो कम्युनिटी लेवल पर हम किस तरह से ये जागरूकता बढ़ा सके, ये एक्सेप्टेंस ला सके कि कल को जाके अगर कोई पीड़िता आगे आती है तो उन्हें बैकलैश ना फेस करना पड़े, उन्हें जितना कम रेजिस्टेंस हो सके उतना वो फेस करें और आगे आके जुडिशियल सिस्टम जो है, चाहे वो लीगल एड के तौर पे हो, चाहे वो किसी तरह से किसी प्रोबोनो सपोर्ट के थ्रू हो, वो उसको एक्सेस कैसे कर सके, पीड़िता आके रिपोर्ट कर सके, तो उसके लिए उस तरह का माहौल भी बनाना एंटायर सोसाइटल स्ट्रक्चर में, जहाँ वो निकल के सेफ फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके रिपोर्ट करने में और कानूनी मदद लेने में, ये एक माहौल बनाने का किस तरह से हम आगे स्टेप्स ले सकते हैं ये सोचना भी जरूरी है। सो सर्वाइवर सेंट्रिक प्रोटेक्शन में ये हम नहीं सोचेंगे कि सिर्फ आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्या ऑर्डर मिल सकता है, क्या फायदा हो सकता है या आउटकम क्या है, बट क्या हम पीड़िता को कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस समय पे चाहती है रिलीफ उस समय पे उसे वो रिलीफ मिल सके, जिस चॉइस की रिलीफ वो चाहती है, चाहे वो उस घर में रह के ही वो अपना केस चलाना चाहती है तो हो सकता है शेयर्ड हाउसहोल्ड का ऑर्डर हो, या चाहे वो किसी और घर में रह के अपना सुरक्षा रखना चाहती है, या फिर वो किसी तरह से अगर उसके साथ वापस घरेलू हिंसा होता है तो उसका प्रोटेक्शन मांग सकती है। हम संजू मैम से सुनेंगे कि पहले तो कि क्या एक्ट के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि कुछ अलग अलग प्रोटेक्शंस है सिर्फ सजा के बिना, तो ये क्या क्या प्रोटेक्शंस है और क्या ये प्रोटेक्शंस जब हम क्रिमिनल लॉज में देख रहे हैं तो हम मेनली मैरिज या मैरिटल स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, क्या डीवी का प्रोटेक्शन मैरिज के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, कौन से और रिलेशनशिप्स होते हैं, कौन से और ऐसे नाते रिश्ते नाते होते हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं डीवी के अंतर्गत, और इन प्रोटेक्शंस को लेने में डे टू डे ओएससी का जो इंटरवेंशन है वो किस तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं या पीड़िता किस तरह की रेमेडीज मांग रही है जिसमें ओएससी का मदद होता है, क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो डिफिकल्ट है नेविगेट करने के लिए।
1: यू वर लिसनिंग टू अ टॉक ऑन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सेस टू जस्टिस एंड सखी वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वी स्लिप इनटू अ शॉर्ट ब्रेक।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है.
1: We continue with a talk from the webinar of Department of Justice on Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme.
2: Sakhi One Stop Center, Central Ministry की स्कीम है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसकी ओवरऑल इंडिया में 700 से 800 सेंटर्स रन कर रहे हैं. दिल्ली में ही 11 सेंटर्स हैं और ये जिला अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अंतर्गत भी आती है, उनकी देख रेख में चलते हैं. सखी वन स्टॉप सेंटर एक्सेस करता नहीं था उस समय, महिलाओं को अपनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे करना है. कोर्ट जाने में वो बहुत घबराती थी, डरती थी, लेकिन सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत जब वो आई हैं तो इस स्कीम में महिलाओं को एक अवेयरनेस मिली है. हम डे टू डे लोकल अवेयरनेस करते हैं, कम्युनिटी में जाते हैं और उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि सखी वन स्टॉप सेंटर के अंदर अगर आप आएंगी तो उनकी जो भी गोपनीयता है उसको बरकरार रखा जाएगा. वो बहुत ज़्यादा घबराती है इस बात को लेकर कि अगर परिवार में या सोसाइटी में ये चला जाता है, जो एक स्टिग्मा है कि हमारी बात लीक हो जाएगी. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जैसे सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड, अगर वो आती है हमसे बात करने के लिए तो सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हमारी जो अभी मैं FIR या लीगल प्रोसीजर में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ एक इमोशनल ब्रेकडाउन जो उनका है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहाँ पर साइकोसोशल काउंसलर्स भी अवेलेबल होते हैं. मैं सखी वन स्टॉप सेंटर के स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ. सखी वन स्टॉप सेंटर के अंतर्गत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर, सोशल काउंसलर्स और पैरालीगल वर्कर्स भी होते हैं. साथ में ही विधिक सहायता के लिए वहाँ पर डालसा से ही रोस्टर लगते हैं. ऑल द टाइम लॉयर्स अवेलेबल होते हैं 10 to 5 की शिफ्ट में और उस दौरान जो भी सर्वाइवर या जो भी महिला हमारे पास

पास आती है, हम उनको जो भी लीगल अवेयरनेस अगर वो चाहती है, लीगल एड चाहती है, तो हम उसको वन रूम फैसिलिटी देते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का मोटो ही वन रूम फैसिलिटी देना है। उसको उसी प्रेमिसेस में मेडिकल भी प्रोवाइड होगा, उसको उसी प्रेमिसेस में लीगल काउंसलिंग भी प्रोवाइड होगी, काउंसलिंग भी वही होगी। और अगर ऐसी स्थिति बनती है कि परिवार से या पति से कोई निकाल दी गई है, घर से निकाल दी गई है, रात के 2 बजे भी निकाल दी गई है, तो 181 हेल्पलाइन के द्वारा उनको पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में सखी वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। मैं यहाँ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पहले 5 दिन का सेंटर मिलता था, परंतु अभी बढ़ा कर ये सेंटर 20 दिन का कर दिया गया है, ताकि उसे कहीं पर भी बिना आश्रय के ना रहना पड़े। उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वहीं पर मौजूद स्टाफ के द्वारा देखी जाती है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी भी रहती है, जिसे PFO बोला जाता है, पुलिस प्रोटेक्शन ऑफिसर। वो वहां पर उसकी कंप्लेन लोकल थाने में रजिस्टर कराते हैं, साथ ही साथ उसकी DD एंट्री या FIR दर्ज कराने में जो भी मदद चाहती है, वो उसको बहुत ईजी प्रोसेस के द्वारा मदद कर देते हैं। साथ ही वहां पर आश्रय में कपड़ा, खाना एवं मेडिकल फैसिलिटी, अगर उसको उस दौरान कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो भी उसको प्रोवाइड की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होती है। कौन सी महिलाएं एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इजी टू मूव सखी वन स्टॉप सेंटर में, कोई एज ग्रुप नहीं है, कोई एज बार नहीं है, आप आ सकते हैं किसी भी टाइम पर। 60 साल की उम्र से लेकर 18 साल तक का बच्चा वो आ सकता है, कोई भी, इवन उससे छोटे बच्चे भी वहां पर आ सकते हैं। और उस दौरान भी हम उन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट यानी कि चाइल्ड लाइन से कोलैब करा देते हैं, उसके द्वारा वहाँ पे काउंसलर्स जो चाइल्ड लाइन के आते हैं वो भी आते हैं। 181 हेल्पलाइन किसी भी प्रकार के लिए महिलाओं के लिए एकदम अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब बात करते हैं सामाजिक परिवेश में, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं हों या फिर घरेलू हिंसा से रिलेटेड कोई भी, चाहे 20 साल हो गए हो शादी को या 25 साल हो गए हो या 2 ही महीने क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा जो भी है। कई बार मैंने अवेयरनेस के दौरान या हमारे वन स्टॉप सेंटर में जो महिलाएं आती हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि घरेलू हिंसा के प्रकार क्या हैं, उन्हें इमोशनल हिंसा पता ही नहीं होती है। उनको ये लगता है कि बस गाली गलौज कोई बात नहीं है, पर वो बहुत इजीली मान लेती है गाली गलौज कोई बात नहीं है। सिर्फ उनके लिए हिंसा वही होती है जिससे मार दिया गया है, खून निकल गया है, वही उनके लिए एक हिंसा होती है। जब हम उनको बताते हैं कि इकोनॉमिकल हिंसा भी होती है कि आप कमा रहे हैं लेकिन आप अपनी पसंद से खर्चा नहीं कर सकते, वो भी एक हिंसा होती है। जो समय समय पर हम छोटे छोटे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने मैप में NGO के साथ में है, या फिर हमारे जो लोकल NGOs वहाँ पे जो भी काम करते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट में है अजय कुमार जी, उनके सुपरविजन में बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स किए हैं, वहाँ पर से बहुत सारी महिलाएं निकल के आती हैं। मैं आपको सिर्फ बताना चाहूँगी, यहाँ पर मुख्य वजह होती है कि उनके पास एजुकेशन की प्रॉब्लम है, एजुकेशन बहुत कम है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बावजूद भी महिलाएं एजुकेशन तक रीच ही नहीं कर पा रही है, कई बार ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, कई बार अलॉटमेंट्स के हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स के पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो फ्री एजुकेशन होने के बावजूद भी अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेज पा रहे। तो हम स्कूल के साथ में समय समय पर ऐसे काउंसलिंग सेशंस करते रहते हैं ताकि एजुकेशन का महत्व उन बच्चों को समझाया जा सके। कुछ होता है सामाजिक परिवेश, कि कुछ सामाजिक परिवेश में ये होता है कि हम ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाएंगे तो वो बिगड़ सकती हैं, जो कि उनकी पेरेंटिंग काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो सखी वन स्टॉप सेंटर पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करता है। अब बात आती है कि वो किस किस अधिनियम के तहत जा सकते हैं, तो हम उन महिलाओं को ये समझाते हैं कि अगर आपका शेयर हाउस होल्ड है वहाँ पर भी आप उनका रेसिडेंशियल राइट ले सकते हैं, आश्रय का आपको अधिकार है, आप मेंटेनेंस के लिए फाइल कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि शादी को कितना समय हो गया, आप अर्न करती हैं या नहीं करती हैं। पहले तो आप अपनी उस परिवेश से निकलने की कोशिश करिए जब आपके साथ जो भी किस्म की हिंसा हो रही है, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में हमेशा महिलाओं को बोलती हूँ कि जो भी हिंसा आप सहन करोगे तो सामने वाले को और बढ़ावा मिलता है। हिंसा कभी भी सहन नहीं की जाती है, पहले भी कई बार होता है नो का मतलब नो, तो पुरुषों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। और ये चीज़ हम काउंसलिंग में भी समझाते हैं कि अगर महिला किसी भी तरीके से नो कर रही है तो इसका मतलब नो ही है, नो का मतलब यस कभी नहीं हो सकता। होप कि आने वाले समय पर ऐसे सेंटर्स की जो भी एक्सेस, मतलब बहुत इजी टू रीच हो महिलाओं के लिए, और ऐसे सेंटर्स में किसी भी प्रकार का कोई सारा फीमेल स्टाफ रहता है, तो सर्वाइवर्स

0: बहुत इजी से आकर अपनी बातें बता देती है। कई बार वो ऐसी बातें भी बता देती है जिनको वो कहती है कि मैडम नोट मत लीजिएगा कैसी, क्योंकि मैं तो ये आपसे फैमिलियर होकर ही बता रही हूँ। तो वन स्टॉप सेंटर का एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग सेंटर में विजिट करें तो अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।
1: यू हैड बीन लिसनिंग टू अ टॉक ऑन Protection of Women from Domestic Violence Act, Access to Justice and Sakhi One Stop Center Scheme by Ankita Sarkar, Migration and Asylum Project and Sanju Kumari, member, One Stop Center. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
2: Prayojit Karikram Nyay Vibhag, abhi aap sun rahe the, Prayojak Vidhi Om Nyay Mantralaya. Akashwani ka ye Bilaspur Kendra hai. FM में 103.2 MHz पर 9:15 हुए हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

जी तो दोस्तों, आज मशहूर अभिनेत्री मनीषा कोइराला का भी जन्मदिन है और विविध भारती परिवार उन्हें भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं दे रहा है। आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला फिल्मों की उन शानदार अभिनेत्रियों में शुमार है जिन्होंने अपनी खूबसूरती के साथ सशक्त अभिनय की मिसाल कायम की है। उनकी फिल्म बॉम्बे हो, खामोशी हो, दिल से हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने उसमें उन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है और उनकी आंखों में जो भावनाएं आती हैं, अभिनय में एक खास सहजता और उनकी जो हंसी है वो आज भी हमारे दिल में बैठी हुई है। तो आप सभी जानते हैं कि मनीषा कोइराला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है बल्कि एक संवेदनशील और यादगार पहचान है और हम सभी आज भी उनके अभिनय के मुरीद हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कंपनी का गाना, आवाजें आशा भोंसले, सपना अवस्थी और सुदेश भोंसले की। नितिन रेकवार के बोल हैं, संदीप चौटा का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

ये आवाजें संगीत हल्दीपुर और रोशनी बैप्टिस्ट की फिल्म का नाम है मर्डर टू। सईद कादरी के बोल और संगीत और सिद्धार्थ हल्दीपुर का संगीत।

दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आज मशहूर अभिनेता सैफ अली खान का भी जन्मदिन है। हम विविध भारती परिवार के सभी लोग उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और रोमांटिक किरदारों से लेकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं तक उन्होंने हर अंदाज को बखूबी निभाया है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म कॉकटेल का गीत, आवाजें नीरज श्रीधर और कविता सेठ की, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार प्रीतम।

इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

संगीत में दो प्रमुख आवाजें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, एक केजे येसुदास की और दूसरा शास्त्रीय स्वर था हेमलता का। हेमलता को इस गीत के लिए 1977 का फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड दिया गया था। हेमलता 70 के दशक की प्रमुख

पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। जहां तक इनके अवार्ड से संबंधित बात चल रही है तो बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए इन्हें 1977 से 1981 के बीच 5 बार नामांकित किया गया था।

पार्श्व गायिका हेमलता का जन्म हैदराबाद में मारवाड़ी भट्ट परिवार में हुआ। बचपन इनका कोलकाता में बीता। पंडित जयचंद भट्ट और अंबिका भट्ट के यहाँ 16 अगस्त 1954 को आपका जन्म हुआ। आप शास्त्रीय संगीत से आरंभ से ही जुड़ी रही हैं। हेमलता का मूल नाम लता भट्ट है। आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। एक मील का पत्थर जिस गीत को हम कह सकते हैं, जिसने हेमलता को लाइमलाइट में लाया, उस गीत को सुनते हैं।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों पर हमने कई गीत सुने हैं जो हेमलता ने गाए हैं, और इन गीतों से ही हेमलता ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है।

1978 की है। इस साल अखियों के झरोखों से इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग नंबर 1 पर था। इस गीत को चाहने वालों की संख्या आज भी कम नहीं है। यूं तो हेमलता ने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, मुकेश, सुरेश वाडकर, जसपाल सिंह जैसे गायकों और आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, चंद्रानी मुखर्जी, उषा मंगेशकर जैसी गायिकाओं के साथ कई गाने गाए हैं। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हेमलता ने केजे येसुदास के साथ कई लोकप्रिय और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत गाए हैं।

सन 1990 के दशक में दूरदर्शन ने हेमलता और येसुदास को अपने श्रोता दर्शकों के लिए गाने का आमंत्रण दिया, जिसे हेमलता और येसुदास ने गाया। तिस्सा नदी सी और एक गाना था, साथ जो तेरा यूं पाया। ये दोनों ही गाने दूरदर्शन पर दिखाए जाते रहे और काफी लोकप्रिय भी हुए। आइए अब आपको हेमलता की मधुर आवाज में सुनवाते हैं सुनैना फिल्म का ये गाना।

रविंद्र जैन के अलावा भी हेमलता के मधुर कंठ का अपने गानों में अधिकतम उपयोग किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और उषा खन्ना ने। उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया आप तो ऐसे न थे, इस फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के निर्देशन में हेमलता ने कई गीत गाए हैं, जैसे जीने की राह, आप आए बहार आई, काली घटा, मैं तुलसी तेरे आंगन की, राजपूत और सच्चाई की ताकत जैसी फिल्में। लेकिन हम आपको जो गीत सुनवा रहे हैं, ये दो आवाजों का एक अद्भुत मिलन है। स्वर है लता मंगेशकर और हेमलता का।

अब आइए बात करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में हेमलता के गाए गीतों की। विश्वास, रुस्तम, राजमहल, मुकद्दर का सिकंदर, ज्वालामुखी और बॉम्बे 405 माइल्स जैसी फिल्में। आइए मुकेश के साथ हेमलता के गाए इस गीत को सुनते हैं।

अपने गीतों के अलावा भजन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से हेमलता का गहरा जुड़ाव है। आपने कई टीवी सीरियल्स के लिए भी गाया। आपके विषय में ये जानकारी बहुत कम लोगों को पता है कि इन्होंने भारत की 14 बोलियों के लोक गीतों के विषय में मौलिक रचनात्मक अभिनव शोध भी किया है। आइए अब इस कर्णप्रिय स्वर में सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये गाना।

आइए अब हेमलता की गायकी की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हेमलता का पारिवारिक माहौल शास्त्रीय संगीत का था। इनके पिता एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, पर परंपरागत रूप से इनके यहाँ लड़कियों को संगीत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। पर बचपन से ही इनका रुझान संगीत की ओर था। जहाँ कहीं मौका मिलता वहाँ वे लुक छिप कर गा लेती थी। स्कूल में गाया, दुर्गा पूजा में गाया। एक बार कोलकाता में एक बड़ा संगीत का आयोजन था जिसमें लगभग सभी बड़े गायकों की शिरकत होनी थी, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार। ऐसे जलसों में इंटरवल न देकर स्थानीय प्रतिभाओं से फिलर के रूप में गायकी की जाती है, जैसा कि आप जानते ही हैं। एक गाने की पेशकश थी, पर श्रोताओं को बेबी लता की गायकी खूब पसंद आई और इन्होंने भी जमकर गाया। उम्र तो छोटी ही थी पर प्रतिभा बड़ी। पिताजी को भी खूब पसंद आया इनका यह गाना, जो कभी इस बात के पक्षधर थे ही नहीं कि लड़कियों को गाना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि बेबी लता को तो फिल्मों में गाना चाहिए, पर पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा फिल्म नहीं, अभी इसे आता ही क्या है।

शास्त्रीय संगीत सीखे और इसके लिए उन्होंने ज्ञान प्रकाश घोष जी के यहाँ हेमलता को संगीत सीखने के लिए भेजा। रियाज किया और हेमलता संगीत सीखने लगी, रियाज करने लगी, लेकिन फिल्मों में गाने का क्रेज तो था ही। और वैसे भी पिताश्री के जो साथी कलाकार थे वो मुंबई में ही थे, जैसे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद आमिर खान, इनसे उन्होंने कहा कि मिलना भी हो जाएगा। और उनकी बहन जो है कमला पंडित वो भी वहाँ रहती थी, और उनका ये मानना था कि 15-20 दिन का मुकाम करेंगे, इस बीच में जो है इस बच्ची की गलतफहमी कम हो जाएगी। 15-20 दिन में ही इन्हें वहां बुलावा आ गया। और ऐसे ऐसे संगीतकारों का नाम था उसमें जिन्हें हम सभी लीजेंड्स कहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो पहला ऑफर आया था वो उषा खन्ना और कल्याण जी आनंद जी का था, और कल्याण जी आनंद जी ने विश्वास फिल्म के ले चल मेरे जीवन साथी इस फिल्म के लिए गवाया। गीतों की ताजगी, भक्ति गीतों की सुगंध को लिए हेमलता ने कई गीत गाए। कहना ना होगा कि इनके स्वर में लोक और भक्ति गीतों को सुनना एक अलग ही अनुभव है। कई गीतों और भावों को हेमलता के स्वर ने जीवंत किया है।

फिल्म संगीत के संसार में कई तारे हैं जो अपनी कला से चमकते हैं। इस आकाश के अस्तित्व तक इनकी चमक कभी फीकी नहीं होगी। ऐसी ही एक कलाकार हेमलता ने अपनी आवाज और गायकी से आसमान को संगीतमय ढंग से रोशन किया।

आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायिका हेमलता पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM 103.2 MHz पर। 10 बजे हैं और अब लीजिए सुनिए नन्हे बच्चों का कार्यक्रम। आओ बच्चों।

नन्हे कदम बढ़ते जाएं, नन्हे कदम बढ़ते जाएं, तिरंगा ऊंचा लहराए, भारत माँ के वीर सपूतों की हम सब मिलकर गाथा गाए। जय हिंद बच्चों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। और आज आपके साथ है आपकी गीता दीदी। बच्चों, 15 अगस्त का दिन हम सभी भारतीयों के लिए बहुत खास होता है। 15 अगस्त आज़ादी पर्व वह दिन हमारे देश के लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ। यह केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बच्चों जरा सोचिए, अगर हमें अपनी बात कहने की आज़ादी ना हो, अपने सपनों को पूरा करने की आज़ादी ना हो, अपनी पसंद की शिक्षा पाने और अपने भविष्य का निर्णय लेने की आज़ादी ना हो तो जीवन कैसा होगा। आज हम खुली हवा में सांस लेते हैं, स्कूल जाते हैं, अपने सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने का भी कोशिश करते हैं। यह सब हमें मिली स्वतंत्रता का ही परिणाम है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत वीरों ने देश के लिए संघर्ष किया। किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही सपना था, स्वतंत्र भारत का सपना। प्यारे बच्चों, आज़ादी का अर्थ केवल यह नहीं कि हम विदेशी शासन से स्वतंत्र हैं। असली आज़ादी तब होगी जब हमारा देश शिक्षित, स्वच्छ, सुरक्षित, मजबूत और आत्मनिर्भर बनेगा। और इसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप मन लगाकर पढ़ें, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान करें, पेड़ पौधों की रक्षा करें, पानी बचाएं, स्वच्छ रखें और सबसे बढ़कर अपने देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनें। जहां सवाल होंगे अनोखे, जहां जवाब भी होंगे निराले, जहां बच्चे बनेंगे जज और वकील फैसले होंगे सबसे निराले। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी अदालत में जो आप अपनी अनोखी अदालत है, और क्योंकि यह ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की अनोखी अदालत है।

0: नमस्कार आदरणीय श्रोताओं, शिक्षा संस्कार और नैतिक मूल्यों की सुगंध बिखेरते ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल काशवाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अनवी तिवारी।
1: और मैं हूं प्रेरणा साहू। आज हम आपके लेकर आए हैं एक रोचक, मनोरंजक और संदेश पूर्ण प्रस्तुति, जिम्मेदार नागरिक की अदालत।
0: अरे अरे, तुम तो सीरियस हो गई।
1: हाँ बिल्कुल, हमारे विद्यालय का विश्वास है कि शिक्षा तभी सार्थक है जब वह केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाए। चलिए शुरुआत करते हैं छोटे से सवाल से। अगर सड़क पर केले का छिलका पड़ा हो तो आप क्या करेंगे?
0: कुछ लोग उसे उठाकर डस्टबिन में डाल देंगे और कुछ लोग ऐसे निकल जाएंगे जैसे छिलका नहीं गणित की परीक्षा हो।
1: लेकिन याद रखिए, छोटी सी लापरवाही किसी और के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है।
0: इसलिए जिम्मेदार नागरिक वही है जो यह ना सोचे कि ये मेरा काम नहीं बल्कि यह कहे आइए मैं कर देता हूँ।
1: तो आइए आज अपने दिल से पूछते हैं,
0: क्या मैं सड़क पर कचरा नहीं फैलाती?
1: क्या मैं रेड लाइट पर स्टॉप लाइन के पीछे रुकती हूँ?
0: क्या मैं पानी और बिजली बचाती हूँ?
1: क्या मैं पेड़ों की रक्षा करती हूँ?
0: क्या मैं मोबाइल का सही उपयोग करती हूँ?
1: क्या मैं अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करती हूँ?
0: अगर जवाब हाँ है तो बहुत बढ़िया,
1: और अगर कहीं नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि सुनिए सुनिए सुनिए सभी आदरणीय श्रोतागण,

0: ध्यान दें, आज विलन पब्लिक स्कूल बहतराई में लगने जा रही है एक अनोखी अदालत, जिम्मेदार नागरिक की अदालत। यहाँ कोई रोएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, बल्कि हंसते हंसते हम सब एक जिम्मेदार नागरिक बनना सीखेंगे।
1: अब इस अदालत में पधार रहे हैं
0: प्रिंस साहू, जो आज माननीय न्यायाधीश की भूमिका निभाएंगे, आदित्य अग्रवाल जो वकील की भूमिका निभाएंगे।
2: ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
3: योर ऑनर, टुडेज फर्स्ट केस इज अबाउट लिटरिंग ऑन द स्ट्रीट्स। मैं सफाई कर्मचारी से अनुरोध करूंगा कि आगे आएं। सफाई कर्मचारी हाजिर हूँ।
4: माननीय न्यायाधीश महोदय, मैंने इन्हें चिप्स का पैकेट सड़क पे फेंकते हुए देखा। इन्हें देखकर और भी लोगों ने वही कचरा फेंक दिया। ऐसे ही सड़कों पर कचरा जमा हो जाता है, नालियां जाम हो जाती है, मच्छर पनपते हैं, बीमारियां फैलती है और लोग कहते हैं कि शहर गंदा है।
2: क्या यह सच है?
4: जी,
5: लेकिन मैंने एक ही चिप्स का पैकेट फेंका था।
0: जस्ट वन रैपर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक?
6: यही सोच तो सबसे बड़ी समस्या है। एक एक बोलकर हम पूरे शहर को कूड़ादान बना देते हैं।
7: क्लीनिनेस स्टार्ट्स विद वन पर्सन एंड सो डज लिटरिंग। अरे अरे, ये कौन आया?
8: योर ऑनर, मैं वातावरण हूँ। मैं प्लास्टिक से बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी मदद करें।
2: योर ऑनर, हम माने ब्रेन पब्लिक स्कूल बहतराई में हम कचरा डस्टबिन में ही डालते हैं और हमारा स्कूल प्लास्टिक फ्री जोन है। क्या अब आपको अपनी गलती का एहसास है?
0: जी माननीय न्यायाधीश महोदय,
2: अदालत का फैसला है कि आपको अपने शहर को साफ रखना है और दूसरों को भी प्रेरित करना है। रिमेम्बर, अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन डजंट थ्रो गार्बेज, दे थ्रो अवेयरनेस।
7: हम शपथ लेते हैं कि कचरा हमेशा डस्टबिन में ही फेंकेंगे और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे।
6: बहुत सुंदर, हमारी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की अपनी अदालत ने पहली समस्या का समाधान कर दिया। अब देखते हैं अगली सुनवाई में कौन सी जिम्मेदारी हमारा इंतजार कर रही है। दूसरा मामला ट्रैफिक नियमों की अनदेखी।
2: ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही प्रारंभ की जाए।
1: ट्रैफिक पुलिस को पेश किया जाए। ट्रैफिक पुलिस हाजिर हो।
9: दो अक्यूज्ड आज लाइव स्टूडियो में आए हैं। रूल्स तोड़कर ये बड़े पछताए हैं। फर्स्ट अप दिस कार ड्राइवर, स्टॉप लाइन पर बिल्कुल रूड, क्रॉस द लाइन ऑन रेड लाइट, सीट बेल्ट तो भूल गए डूड।
10: हे जी महोदय सुनिए, माय शेड्यूल इज बिजी, स्टॉप लाइन थोड़ी सी ही तो पार हुई थी, इससे क्या फर्क पड़ता है? पास ही तो जाना था, सीट बेल्ट न लगाने का बस यही बहाना था।
7: वी फ्रॉम

0: जज साहब, मैं तो बस पास की दुकान जा रहा था, इसीलिए हेलमेट पहनना भूल गया था। रास्ते में कॉल आई तो बात करने लगा। इंसिडेंट, प्लीज लेट मी गो, इट वॉज ओनली फॉर अ सेकेंड।
1: वी फ्रॉम

0: लोग अपनी जान है गंवाते क्योंकि आप जैसे लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं अपनाते।
1: ऑर्डर ऑर्डर, अदालत का फैसला सुनाया जाता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो ट्रैफिक नियमों का पालन खुद करे और दूसरों को भी प्रेरित करे।
2: याद रखिए,

0: का भी समाधान कर दिया। अब देखते हैं अगली सुनवाई में कौन सी जिम्मेदारी हमारे इंतजार कर रही है।
1: ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए।
2: हुजूर, आज हमारे सामने एक बहुत ही अजीब केस आया है।
1: वकील साहब, विषय क्या है?
2: हुजूर, हमारी फरियादी की समस्या बहुत ही विकट समस्या है। नहाते वक्त पानी खत्म हो गया और जब मोटर चालू करने गए तो बिजली चली गई।
1: हे भगवान, दोहरी मार, एक तरफ पानी की समस्या और दूसरी तरफ बिजली की कटौती। कोर्ट में पानी और बिजली को तुरंत पेश किया जाए।
2: जी हुजूर, पानी की बूंद और बिजली, कोर्ट में हाजिर हो।
3: वाटर इन द गार्डन, वाटर इन द सी, वाटर इन द एयर,
4: वाटर इज ऑल अराउंड।

सब लोग मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हैं। पानी नहीं आया, पानी खत्म हो गया, परंतु सच्चाई यही है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं बादलों से हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करके आता हूँ, नदियाँ भरता हूँ, खेतों को हरियाली देता हूँ, जिंदगी बचाता हूँ, और लोग क्या करते हैं, ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं, कार धोते समय मूल्यवान पानी नष्ट करते हैं, जहाँ एक बाल्टी की आवश्यकता है वहाँ पर चार बाल्टी का उपयोग करते हैं, शावर के नीचे गाना गाते हुए नहाते हैं ठंडे।

गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। ओ गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और मैं बूंद बूंद बूंद गायब होते जा रहा हूँ।

0: zap.
1: Good morning, Your Honor. मैं हूँ इलेक्ट्रिसिटी. मैं घर को रोशन करती हूँ. स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करवाती हूँ. मोबाइल चार्ज करती हूँ. और वाईफाई भी मेरे बिना बेचारा नो इंटरनेट दिखा देता है. पीपल डोंट जस्ट यूज मी, दे ओवर यूज मी. एम्प्टी रूम्स, लाइट ऑन, फैन ऑन, टीवी ऑन, AC set to 16 degree Celsius and the person is wrapped in a blanket saying, "Man, it's so hot. Phone is already 100% charged, but the charger is still plugged in. Even I get tired sometimes." And then everyone says, "Save electricity, save electricity, save electricity."
2: Come on, yaar. It's not our fault. हम बस थोड़ा एंजॉय करते हैं. लॉन्ग शावर, एसी फुल, फोन चार्जिंग ऑल नाइट, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी तो अनलिमिटेड है, राइट?
3: रॉन्ग, अनलिमिटेड सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स लगती है, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी नहीं. टुडे वाटर टैंक्स इन मेनी सिटीज आर रनिंग ड्राई. इन विलेजेस पीपल वॉक फॉर माइल्स जस्ट टू फेच वाटर. पावर कट्स कैन इवन अफेक्ट hospitals. Remember, if you waste 1 unit of electricity today, someone tomorrow may have to study in the dark. If you waste 1 bucket of water today, someone tomorrow may go to the bed thirsty.
4: इसलिए रहीम जी ने कितनी खूबसूरत बात कही थी, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून. Water once lost may never come back.
1: और बिजली के बिना नो स्टडी, नो ऑनलाइन क्लासेस, नो हॉस्पिटल मशीन, नो स्ट्रीट लाइट, नो फ्यूचर. प्लीज डोंट वेस्ट मी.
5: कोर्ट ने दोनों तरफ की बात सुन ली है. गिल्टी कौन है? हम सब. बिकॉज सेविंग रिसोर्सेज इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी.
2: सोल्यूशन भी सिंपल है. स्विच ऑफ व्हेन नॉट नीडेड, क्लोज द टैप, यूज बकेट इंस्टेड ऑफ लॉन्ग शावर्स. Don't waste electricity, don't waste water. Small habits, big change.
6: बहुत सुंदर. हमारी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की अपनी अदालत ने तीसरी समस्या का भी समाधान कर दिया. अब देखते हैं अगली सुनवाई में कौन सी जिम्मेदारी हमारा इंतजार कर रही है.
5: ऑर्डर, ऑर्डर. हरित न्याय.

0: कार्यवाही प्रारंभ होती है। पेड़ जी, न्यायालय को बताइए आपकी शिकायत क्या है।
1: न्यायाधीश महोदय, लोग कहते हैं पेड़ों पर पैसे नहीं उगते। सही कहते हैं, लेकिन सांसें तो उगती हैं। फिर भी आज मेरे जंगल में चहचहाहट नहीं, कुल्हाड़ियों की आवाज गूंज रही है।
2: न्यायाधीश महोदय, इंसान कहते हैं होम स्वीट होम, मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन मेरा होम एक पेड़ है और पेड़ कटते ही मेरा स्वीट होम भी चला जाता है।
3: योर ऑनर, ट्रीज आर डिसअपीयरिंग एंड द सन हैज बिकम एन ओवर अचीवर। अगर जंगल कटेंगे तो गर्मी की छुट्टियां नहीं, गर्मी ही गर्मी रह जाएगी, वर्षा घटेगी और हमारा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। इसी संदेश के साथ हमारे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में वन महोत्सव के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया जाता है। ईच वन प्लांट वन एंड केयर वन।
4: माननीय न्यायाधीश, पेड़ों की रक्षा करना किसी एक की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि पेड़ बचेंगे तभी जीवन बचेगा।
0: अदालत का फैसला। ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की तरह हर बच्चा एक पौधा लगाए, उसकी देखभाल करे, पक्षियों को संरक्षित करे और धरती को फिर से हरा भरा बनाए, यही प्रकृति के प्रति हमारा सच्चा न्याय होगा।
1: पेड़ लगाओ, भविष्य बचाओ।
5: न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। न रहो, न निराश करो मन को, संभलो किस योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सद पाए भला। समझो जग को न निराश अपना, पत आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, अखिलेश्वर है अवलंबन को। न रहो, न निराश करो मन को, निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को। न रहो, न निराश करो मन को, प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए। तुम प्राप्त करो उनको न अहो, फिर है यह किसका दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, समझो न अलभ्य किसी धन को। न रहो, न निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब है जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। न रहो, न निराश करो मन को, न रहो, न निराश करो मन।
6: बहुत सुंदर। हमारी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की अपनी अदालत ने चौथी समस्या का भी समाधान कर दिया। अब देखते हैं अगली सुनवाई में कौन सी जिम्मेदारी हमारे इंतजार कर रही है।
7: योर ऑनर, द केस बिफोर दिस कोर्ट इज अनलाइक एनी अदर। स्टैंडिंग एज द कंप्लेंट इज अ मोबाइल फोन, जिस पर बच्चों के जीवन बिगाड़ने का गलत आरोप लगाया जाता है। टुडे वी सीक टू अनकवर द ट्रुथ।
0: अदालत में केवल सत्य की बात होगी। मोबाइल, अपनी सफाई पेश करो।
8: पीपल से, आई स्पॉइल चिल्ड्रन, पर सस्ते हुए है कि मैं कभी उनके पीछे नहीं जाता। दे कम टू मी द मोमेंट दे वेक अप, दे पिक मी अप, खाना खाते हुए, पढ़ते हुए और तो सोने के पहले भी। आई वॉज क्रिएटेड टू कनेक्ट पीपल, येट आई ऑफन वॉज एम डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड अराउंड देम।
7: अब न्यायालय प्रतिवादी यानी बच्चे को अपना पक्ष रखने का अवसर देता है।
9: योर ऑनर, आई डोंट थिंक द मोबाइल फोन इज एट फॉल्ट। आई ऑलवेज प्लान टू यूज इट जस्ट फॉर 5 मिनट्स, पर एक बार जब स्क्रोलिंग शुरू करता हूँ, गेम्स, वीडियो और सोशल मीडिया देखते देखते खो जाता हूँ।
7: योर ऑनर, आई बिलीव अ टीचर्स पर्सपेक्टिव मे बी सिग्निफिकेंट इन रीचिंग अ फेयर कंक्लूजन।
10: The mobile itself is not harmful. It is a source of knowledge that helps students learn and explore new ideas. However, technology is a wonderful servant but a dangerous master. बच्चों को इसे डिसिप्लिन से और अपनी तरक्की के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए।
0: न्यायालय ने सभी पक्षों की बातें ध्यान पूर्वक सुनी है। बच्चे, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ?
9: Your Honor, I now realize my mistake. I will only use it when

0: necessary and give proper time to my studies, sports and family as well.
1: अदालत का फैसला सुनाया जाता है, दोषी मोबाइल नहीं उसका गलत उपयोग है। याद रखिए, मोबाइल आपकी सुविधा के लिए है, आपकी जिंदगी चलाने के लिए नहीं।
2: सुबह उठते ही फोन को सलाम,

Tehi phone ko sa

0: के बाद चेक कटे दरख्वास्त स्क्रीन से निकल कर जिलो हर सास रील की दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़ो जिंदगी के रंगों से रिश्ता जोड़ो
1: जिंदगी के रंगों से रिश्ता जोड़ो जिंदगी के रंगों से रिश्ता जोड़ो।
2: माननीय न्यायाधीश महोदय, आज का अगला मामला किसी गलती का नहीं बल्कि अच्छे संस्कार का है। हाल ही में हमारे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में इंडिपेंडेंस डे बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया है। इस अवसर पर हमने सिर्फ इंडिपेंडेंस को ही सेलिब्रेट नहीं किया बल्कि हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की प्रेरणा भी मिली। हमें ये भी सिखाया गया कि नेशनल फ्लैग को कभी जमीन पर टच नहीं करना चाहिए। तिरंगा हमारे देश की शान है और उसका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है।

0: अच्छा स्टूडेंट ही आगे चलकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनता है। हमारे स्कूल में सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बल्कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाता है और हमें एक बहुत सुंदर मंत्र भी सिखाया जाता है, एवरीडे 1% इम्प्रूवमेंट। हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें हमें एक बेहतर विद्यार्थी, बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है।
1: बहुत खूब, इस कोर्ट के सामने बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सिर्फ बुक्स को पढ़ने से नहीं बनता बल्कि अच्छे वैल्यूज, डिसिप्लिन और डेली प्रैक्टिस से बनता है। अब आइए हम सब मिलकर संकल्प लेते हैं,
2: हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल फ्लैग का हमेशा सम्मान करेंगे।
3: हम नेशनल एंथम के समय पूरे डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहेंगे।
2: हम कभी भी नेशनल फ्लैग को जमीन पर गिरने नहीं देंगे और उसका सम्मान बनाए रखेंगे।
3: हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करेंगे, सड़क पर कचरा नहीं फैलाएंगे और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे।
2: हम पानी और बिजली का सोच समझ के उपयोग करेंगे।
3: हम पेड़ लगाएंगे, उनकी रक्षा करेंगे और पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे।
2: हम मोबाइल का यूज सीमित और सही काम के लिए करेंगे।
3: हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पूरी ईमानदारी से पालन करेंगे।
2: हम हर दिन 1% बेहतर बनने का प्रयास करेंगे क्योंकि छोटी से छोटी अच्छी आदतें ही हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है।
3: हम हर दिन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर अपने परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ाएंगे।
4: मैं बदलूंगी, हम बदलेंगे, तभी हमारा देश बदलेगा और आगे बढ़ेगा।
5: तो दोस्तों, इसी सोच के साथ हम ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहुतराई के विद्यार्थी आपसे विदा लेते हैं।
4: वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।
6: शिक्षा, संस्कार व अनुशासन का पर्याय ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल बहुतराई बिलासपुर, जहां प्रकृति के सामिप्य के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित माहौल है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कक्षा कक्ष व विद्यालय परिसर तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध शिक्षक वृंद विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में नैतिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक मूल्यों का संवर्धन करते हैं। विद्यालय के अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण अग्रवाल जी का शिक्षा के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण व उनकी दूरदर्शिता ने विद्यालय की सफलता के नए आयाम गढ़े हैं। विद्यालय की निदेशक प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती श्रुति गुप्ता जी के कुशल नेतृत्व व कर्तव्य परायणता में उत्तरोत्तर प्रगति करता यह विद्यालय विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य का प्रणेता है। By applying classroom concepts to real world situations, we develop critical thinking and problem solving skills. This approach ensures 21st century ready education for future challenges and success.
7: बच्चों, अभी आप सुन रहे थे आज की यह अनोखी अदालत, जहां हमने सुना बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, उनके भीतर छिपा वकील, जज और तर्कशील विचारक कितनी खूबसूरती के साथ सामने आता है। और इसमें भाग लेने वाले हमारे सभी कलाकार ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के बच्चों की प्रस्तुति थी। तो आप सभी प्रतिभागियों को, शिक्षकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए गीता दीदी को। जय।

0: बहुत अच्छा, लेकिन एक सवाल है, क्या एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सिर्फ किताबों को पढ़ने से बनता है?
1: नहीं सर, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन घर और स्कूल दोनों जगह सीखता है, और वी ऑल स्टूडेंट्स फील ट्रूली प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, जहां हमारे सभी टीचर्स हमें सिर्फ किताबों को ज्ञान ही नहीं बल्कि जीने का संस्कार भी सिखाते हैं।
0: स्कूल में होने वाली एक्टिविटीज, स्पीचेस, रोल प्लेज, रैलीज, पेट्रियोटिक प्रोग्राम और अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से हमें हर दिन यह सिखाया जाता है कि एक

नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आओ बच्चों, अभी आप सुन रही थी आकाशवाणी का। ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। 10:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं नए तराने।

0: फिल्म एजेंट विनोद का ये गीत अभी आपने
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: और इसी के साथ ही नए तराने का ये क्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर 11 बजने वाले हैं और अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज का विविधा कार्यक्रम बहुरंगी है। एक तरफ इस कार्यक्रम पर जहां राष्ट्रीयता का रंग चढ़ा है, फिल्मों का रंग चढ़ा है, वहीं दूसरी तरफ शायरी का और बेहतरीन गीतों का रंग भी है। आज के विविधा कार्यक्रम का आगाज हम करें।

0: सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक से, और उसके बाद गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस हफ्ते 18 अगस्त को आ रहा है गुलजार का जन्मदिन। गुलजार लिखते हैं, नाम सोचा ही न था है कि नहीं, अमा कह के बुला लिया एक ने, एजी कह के बुलाया दूजे ने, अबे ओ यार लोग कहते हैं, तुमने एक मोड़ पर अचानक जब मुझको गुलजार कह के दी आवाज, एक सीप से खुल गया मोती, मुझको एक मानी मिल गए हूं जैसे। गुलजार के गाने हमारे दिलों की धड़कन है, उन पर विशेष सामग्री का इंतजार कीजिए। फिलहाल सुनते हैं राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साउंड कैमरा एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के अगस्त महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज, लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
2: लोग मुझे गीतकार समझ ही नहीं रहे थे, कुछ कॉमेडियन टाइप का समझते थे।
0: और स्मृति शेष में नमन गायिका एस जानकी और अभिनेता प्रदीप रावत को। सबसे पहले संपादकीय हिंदी फिल्मों में आजादी की गूंज। सिनेमा अपने समय और समाज की परछाई होता है। जो कुछ दुनिया में घट रहा होता है उसका सिनेमा पर गहरा असर पड़ता है। हिंदी सिनेमा के साथ भी यही स्थिति है। जब भारत की आजादी का आंदोलन चल रहा था तो सिनेमा भी जनता को आजादी की प्रेरणा दे रहा था। कमाल की बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने बहुत साहसी तरीके से अपनी बात कही। चित्र भारती के संपादकीय में आज हम केवल उन फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने आजादी से पहले देश को जागृत किया, अंग्रेजों से देश को आजाद करवाने की प्रेरणा दी। सन 1943 की बात है। बॉम्बे टॉकीज ने एक फिल्म बनाई किस्मत। ज्ञान मुखर्जी के निर्देशन वाली इस फिल्म में अशोक कुमार और मुमताज शांति ने काम किया था। इस फिल्म में कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था।
3: हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सरकार पहले ही मुसीबत में थी। मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। सारा देश आजादी के लिए कुर्बानी देने को तैयार था। ऐसे में ये गाना हर गली कूचे में गूंजने लगा। नौजवान टॉकीजों में फिल्म रुकवाकर इस गाने को दोबारा प्ले करने को कहते। मजेदार बात यह है कि फिल्म किस्मत किसी भी तरह देशभक्ति पर आधारित फिल्म नहीं थी। इसके बावजूद इस गाने ने लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ और जनता को प्रेरित किया, इतना कि अंग्रेज सरकार डर गई। पर यह कोई पहली घटना नहीं थी। हिंदी सिनेमा इससे पहले भी समय समय पर आजादी की बात करता रहा है। सन 1921 में कांजीभाई राठौड़ ने एक फिल्म बनाई थी भक्त विदुर। इस फिल्म पर इसलिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि इसमें विदुर का किरदार महात्मा गांधी की तरह दिखता था। कुछ दृश्यों में उसे महात्मा गांधी जैसी टोपी पहने भी दिखाया गया था। सन 1931 में वी शांताराम की फिल्म आई स्वराज्याचे तोरण। इस फिल्म के पोस्टर पर छत्रपति शिवाजी झंडा फहराते हुए दिखाए गए थे। अंग्रेज सरकार इससे डर गई।

0: गई और इस फिल्म पर बैन का खतरा मंडराने लगा, इसलिए इस फिल्म का नाम बदलकर उदय काल रखना पड़ा। वी शांताराम के साथ ऐसा एक बार फिर हुआ सन 1935 में, जब वो संत एकनाथ के जीवन पर एक फिल्म बना रहे थे महात्मा, लेकिन अंग्रेज सरकार को ये बर्दाश्त न हुआ क्योंकि ये नाम महात्मा गांधी से जुड़ रहा था। दबाव डाला गया कि फिल्म का नाम बदला जाएगा तभी इसे रिलीज करने दिया जाएगा, और तब जाकर ये फिल्म धर्मात्मा के नाम से रिलीज हुई। सन 1936 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जन्मभूमि, ये भी आजादी की बात करती थी। सन 1938 में महबूब खान ने फिल्म बनाई वतन, इस फिल्म में भी संकेतों में आजादी की बात कही गई थी। सन 1940 में आई फिल्म बंधन, इस फिल्म में ये गाना आजादी की अलख जगा रहा था।
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम,
1: चल चल रे नौजवान,
2: चलो संग चले हम,
0: ये गाना बड़ा ही लोकप्रिय हुआ था। सन 1941 में सोहराब मोदी ने बनाई फिल्म सिकंदर, जिसमें ये देशभक्ति गीत था।

यहाँ मोहम्मद रफी पहली बार नौशाद के लिए गा रहे थे। यहाँ आपको बता दें कि सन 1944 में गुलाम हैदर ने फिल्म भाई में ये गाना बनाया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। इसे नसीम अख्तर और जीनत बेगम ने गाया था, बोल शातिर गजनवी के।

सन 1946 में आई फिल्म हमजोली। इस फिल्म में नूरजहां ने गाना गाया ये देश हमारा प्यारा प्यारा। ये गाना अंजुम पीलीभीती ने लिखा था और संगीतकार थे हफीज खान।

ये साफ है कि सिर्फ हिंदी फिल्में ही नहीं बल्कि उनके गाने भी आजादी की बात कर रहे थे, देशभक्ति का जज्बा जगा रहे थे, देश के प्रति गौरव का एहसास करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही दुर्लभ गाने की। सन 1946 में एक फिल्म आई थी सोना चांदी। इस फिल्म में एक गाना था प्यारे बापूजी तिरंगे की ले लो कसम, इसे लता मंगेशकर ने गाया था। ध्यान रहे ये वो जमाना था जब लता मंगेशकर फिल्म संसार में पैर जमाने की कोशिश कर रही थी।

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि न्यू थिएटर्स की बिमल रॉय निर्देशित फिल्म हमराही में तो गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर लिखित जन गण मन को शामिल किया गया था, जो आगे चलकर भारत का राष्ट्रगान बना। सन 1947 में आई फिल्म एक कदम में तो पोस्टर पर ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाया गया था। ऐसी फिल्मों की लंबी सूची है जो 1947 से पहले

भारत में आजादी की अलख जगा रही थी। ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म धरती के लाल सन 1946 में 30 अगस्त को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में संगीत पंडित रविशंकर का था। बंगाल के अकाल पर बनी इस फिल्म में कुछ गाने ऐसे थे जो देशभक्ति की लौ जगा रहे थे, जैसे ये गाना भूखा है बंगाल।

इसी दौर में आई देव आनंद की पहली फिल्म हम एक हैं, जिसके निर्देशक थे पीएल संतोषी। इस फिल्म में एक जोशीला गाना था, हम जाग उठे हैं सोकर। इसे पीएल संतोषी ने खुद लिखा था, संगीत हुस्न लाल भगत राम का।

सन 1948 में आई रमेश सहगल के निर्देशन वाली फिल्म शहीद। इस फिल्म में गुलाम हैदर का संगीत था। जरा सोचिए कि गुलाम भारत में कितना महत्वपूर्ण और साहस का काम था, आजादी पर फिल्म बनाना। इस गाने के गीतकार थे राजा मेहदी अली खां। याद रहे, ये गाना आजादी से पहले रिलीज हुआ था।

0: हमने अब तक जिन फिल्मों का ब्यौरा आपको दिया ये तो सिर्फ एक झलक है। आजादी से पहले हिंदी या यूं कहें कि भारतीय सिनेमा विभिन्न भाषाओं में देश को जगाने और आजादी के आंदोलन में सहयोग करने का काम जोर शोर से कर रहा था। कुछ साहसी फिल्मकार ऐसे थे जिन्होंने बिना डरे ऐसी कहानियां पेश की। आजादी के बाद से अब तक तो ऐसी अनगिनत फिल्में बनी हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की कहानियां कही गई हैं, पर संपादकीय में हमारा फोकस उन फिल्मों पर था जिन्होंने 1947 से पहले हिंदी सिनेमा में आजादी की अलख जगाई। ये था संपादकीय और अब एक लघु फीचर फिल्म दीवार के 51 बरस। दीवार हिंदी सिनेमा के इतिहास की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। ये फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस तरह इसकी यात्रा के 51 बरस पूरे हुए। दीवार के प्रोड्यूसर थे गुलशन राय और इसे निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म तूफानी लेखक जोड़ी सलीम जावेद की लेखनी का कमाल थी। ये देखना दिलचस्प है कि दीवार से पहले यश चोपड़ा ने सन 1973 में फिल्म दाग के जरिए अपना बैनर शुरू किया था यशराज फिल्म्स। 1973 में ही प्रोड्यूसर गुलशन राय के लिए उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट की जोशीला, जिसमें देव आनंद ने काम किया था।
1: किसका रास्ता देखे।
0: गुलशन राय इससे पहले जोशीला और जॉनी मेरा नाम जैसी बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर चुके थे।
2: पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले।
0: अमिताभ बच्चन की फिल्म यात्रा में ये फिल्म और भी मजेदार जगह खड़ी है। सन 1973 में आई प्रकाश मेहरा की फिल्म

0: जंजीर से अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन कहलाए, पर इसके बाद उनकी कुछ फिल्में आईं जैसे अभिमान, सौदागर, नमक हराम वगैरह। जंजीर के बाद दीवार ही वो फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन वाला रूप दोबारा नजर आता है। व्यवस्था के प्रति आक्रोश, एंटी हीरो वाला रास्ता, कड़क आवाज वाले संवाद, फ्लैट चेहरा, किरदार में छिपा गुस्सा, कुछ कर गुजरने की तमन्ना, विजय हिंदी सिनेमा का एक बेमिसाल किरदार बन गया।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: हाँ, क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई रवि की भूमिका में शशि कपूर थे। कैसे? अरे भाई, शशि कपूर तो अमिताभ बच्चन से बड़े थे और सीनियर भी। ये यश चोपड़ा का कन्विक्शन था कि शशि कपूर छोटे भाई की भूमिका में जमेंगे और यही हुआ।
2: इसमें लिखा है कि तुम पुलिस को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो, अपने जुर्म, अपने काले पैसे, अपने साथियों के नाम। मुझे इस पर तुम्हारे साइन चाहिए।
0: दीवार में मां की भूमिका में नजर आई निरूपा राय। अमिताभ बच्चन की मां के रूप में उन्होंने आगे कई फिल्में की और फिल्म इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। वैसे फिल्म इतिहास में तो दीवार ने अपना नाम इसलिए भी दर्ज किया क्योंकि इसे एक दो नहीं बल्कि 7 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शशि कपूर, बेस्ट स्टोरी सलीम जावेद, बेस्ट स्क्रीन प्ले सलीम जावेद, बेस्ट डायलॉग सलीम जावेद और बेस्ट साउंड रिकॉर्डिस्ट M.A. शेख।
3: आप पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
2: उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
0: इस फिल्म के गाने साहिर लुधियानवी के थे और संगीत राहुल देव बर्मन का था। इस फिल्म का एक अंग्रेजी गाना खुद पंचम यानी R.D. बर्मन ने लिखा था और इसे उर्सुला वाज ने गाया था। दीवार में एक गाना ऐसा भी था जिसे फिल्म से हटा दिया गया था। मन्ना डे की आवाज वाला वो गाना था ये।

0: 51 साल बाद भी दीवार ऐसी फिल्म है जिसे आप कई बार देखने के बावजूद एक बार और देख सकते हैं। कल्ट फिल्में ऐसी ही होती हैं।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है।
0: ये था लघु रूपक फिल्म दीवार के 51 बरस। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा की एक रिकॉर्डिंग। गुलशन बावरा हिंदी सिनेमा के एक गुणी गीतकार, उनका पूरा नाम था गुलशन कुमार मेहता। वो बावरा कैसे बने इसकी भी एक कहानी है जो आज हम आपको सुनवाएंगे। गुलशन बावरा 1955 में मुंबई आए और कल्याण जी वीरजी शाह ने उन्हें सन 1959 में फिल्म चंद्रसेना में पहला मौका दिया। आगे चलकर उनकी सबसे शानदार जोड़ी बनी पंचम यानी आरडी बर्मन के साथ। रुपहला पर्दा, रुपहली बातें, इस श्रृंखला में पेश है गीतकार गुलशन बावरा की एक अनमोल रिकॉर्डिंग।
3: मैं गुलशन बावरा हूं, लेकिन बावरा मैं भी 3-4 फिल्मों के बाद ही बना। ये मेरा दिया हुआ तखल्लुस नहीं है, मैं तो गुलशन के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब मैं सट्टा बाजार कर रहा था फिल्म, तो उसके दो गीत थे। एक गीत था चांदी के चंद टुकड़ों के लिए ईमान को बेचा जाता है, और एक गीत था तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे। तो इन दोनों गीतों में टस्सल चल रही थी। कल्याण जी भाई बोलते थे कि तुम्हें याद होगा अच्छा गीत है, और एक डिस्ट्रीब्यूटर थे शांति भाई, वो बोलते थे नहीं चांदी के चंद टुकड़ों के लिए अच्छा गीत है। तो उन दोनों में डिस्कशन चल रही थी, तो इतनी देर में मैं पहुंच गया। तो जैसे ही मैं पहुंचा तो कल्याण जी बोले, शांति भाई ये इन दोनों का राइटर है, और इसी से पूछ लो कौन सा गीत अच्छा है, क्योंकि तीसरा गीत मैं लिखने गया था आंकड़े का धंधा। तो वो बोले क्या झूठ बोल रहे हो कल्याण जी भाई, क्यों तुम मजाक उड़ाते हो, ये गीतकार तुम्हें कहां से लगता है, ये तो किसी हालत से गीतकार नहीं, ये तो बावला सा लगता है, ये कहां से गीत लिखेगा, और इसने ड्रेस भी कोई ऐसी पहनी हुई है, अभी तो इसकी मूंछें भी नहीं निकली हैं। मैं काफी छोटा था,

इतनी देर में रिंदर दवे की एंट्री हुई तो उन्होंने पूछा कि देखो कल्याण जी भाई, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि इस आदमी ने दोनों ये गीत लिखे हैं। तो शांति भाई ने बोला कि अगर ये दोनों गाने इसने लिखे हैं तो फिर मैं बैनर पे सिर्फ इसी का नाम दूंगा, मुझे ये बावरा सा लगता है, तो इसका नाम आज से मैं रखता हूँ गुलशन बावरा, और तब से मेरा नाम गुलशन बावरा पड़ गया। देखिए, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी।

हमेशा अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बिलीव किया है तो क्वालिटी को किया है। आई डोंट बिलीव इन क्वांटिटी। मैंने 44 साल की अपने फिल्म कैरियर में मेरे आज तक 240 गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और आप शायद आज के दिनों में गीतकारों को देखिए, एक गीतकार ने एक साल में 300 गाने उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं, और मेरा 40 साल के, क्योंकि मैंने क्वालिटी में बिलीव किया है, इसीलिए मुझे उन 240 गानों में उतना रुतबा मिला है, लोगों को शायद 5000 गाने लिखने के बाद भी ना मिला हो। देखिए, जब मैं बचपन में ही थोड़े थोड़े भजन लिखने लग गया था तो मुझे फीलिंग हुई थी कि मैं गीत लिखूंगा, और जब मैं कॉलेज में आया तो इश्क में टक्का होने लगा, तो फिर मैंने इश्किया गीत लिखने स्टार्ट कर दिए, और उसके बाद मुझे फिर पूरा यकीन होने लग गया कि नाउ आई एम फिट फॉर राइटिंग फॉर फिल्म्स। तो अब मैं एक मौका ढूंढ रहा था कि किसी भी तरह मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, और भगवान ने मेरी ये प्रार्थना सुन ली और उसने मुझे बॉम्बे में एक नौकरी दे दी। मुझे देश से सबसे ज्यादा इश्क है, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे देश में जन्म लिया है जहां पर लोग सूरज की पहली किरण से नहाकर प्रीत की पूजा करते हैं। ये मेरा देश महान है, ये संगीत का खजाना है देश। मुझे देश, इस देश से बहुत प्रेम है, इसलिए ये गाना मेरे दिल से निकला हुआ है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।

Dişiş. स्मृति शेष में आज सबसे पहले हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका एस जानकी को। 11 जुलाई को वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। हिंदी फिल्मों के कद्रदान एस जानकी को कुछ गिने चुने गानों से ही जानते थे। सन 1985 में आई थी अनिल कपूर और अमृता सिंह के अभिनय वाली फिल्म साहेब, जिसमें एस जानकी और बप्पी लहरी ने एक गाना गाया।

बस यही गाना हिंदी जगत में ज्यादातर एस जानकी की पहचान था। हालांकि उन्होंने इसी बरस यानी सन 1985 में फिल्म सुर संगम में ये भजन गाया था।

एस जानकी ने फिल्म मर्द के लिए ये गाना गाया। एस जानकी को उनके केवल हिंदी गानों से आंकना ठीक नहीं होगा, उन्हें दक्षिण की स्वर कोकिला कहा जाता था। एस जानकी का पूरा नाम था सिस्तला जानकी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1938 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के पल्ला पाटला में हुआ था। बचपन से ही जानकी को रेडियो सुनने का शौक लग गया था। वो लता मंगेशकर के गाने बड़े चाव से सुनती थीं। लता मंगेशकर उनकी प्रेरणा, उनकी आदर्श और गुरु रहीं। इसके बावजूद एस जानकी के गाने की शैली लता से एकदम अलग थी। जानकी का बचपन सिरसिला में बीता, जहां उनके एक रिश्तेदार थिएटर किया करते थे। इंटरवल में वो जानकी को लता मंगेशकर के गाने गाकर जनता को जोड़े रखने को कहते थे। ऐसे ही एक शो में तमिल फिल्मकार बी आर पंथलु और संगीतकार टी जी लिंगप्पा ने उन्हें सुना और चेन्नई आने को कहा। इस तरह सन 1957 में तमिल फिल्म विधियन विलायत्तू में उनका पहला गाना आया। पहले ही साल एस जानकी ने 6 भाषाओं में गाने गाए। इलैया राजा की पहली फिल्म अन्नाकिली के लिए जानकी ने 3 गाने गाए थे। ये इतने लोकप्रिय हुए कि उन्होंने जानकी को दक्षिण भारत की छोटी की गायिका बना दिया।

एस जानकी ने तकरीबन 6 दशक तक फिल्मों में गाने गाए और संगीतकारों की कई पीढ़ियों के साथ काम किया, जैसे टी चलपति राव, एम डी पार्थसारथी, जी रामानाथन, एम बी श्रीनिवासन, के वी महादेवन और एम एस विश्वनाथन वगैरह। उनकी मातृभाषा भले ही तेलुगु थी, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 भाषाओं में गीत गाए। इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, कोंकणी, उड़िया, तुड़ू, उर्दू, पंजाबी और बांग्ला गीत शामिल हैं। के विश्वनाथ की फिल्मों में इलैया राजा के संगीत निर्देशन में उनके गाए गाने आज भी दक्षिण भारतीय दर्शकों के दिलों की धड़कन है।

हिंदी में एस जानकी के कुछ गाने बड़े ही लोकप्रिय हुए हैं, जैसे सत्यमेव जयते फिल्म का ये गाना। फिल्म आखिरी रास्ता का ये गाना। नक नक

एस जानकी को 4 बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। पूरी दुनिया में उनके प्रशंसक मौजूद हैं जो उन्हें जानकी अम्मा के नाम से पुकारते हैं। विनम्र श्रद्धांजलि।

5 अगस्त को हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने माने अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। वो 74 बरस के थे। प्रदीप रावत ने मुख्य रूप से तेलुगु, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम किया और वो खलनायक की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते थे। प्रदीप रावत ने सबसे पहले सन 1988 में बी.आर. चोपड़ा के मशहूर धारावाहिक महाभारत में काम किया था। यहाँ उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था। आपको बता दें कि प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को जबलपुर में हुआ था। उन्होंने सिनेमा की दुनिया में सबसे पहले तेलुगु फिल्म सई के जरिए कदम रखा था। तमिल सिनेमा में उनका सफर फिल्म गजनी से शुरू हुआ और इस फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव रोल किया, वो डबल रोल था। जब गजनी का हिंदी रीमेक बना तो उन्होंने वही भूमिका निभाई, गजनी धर्मात्मा की खूंखार भूमिका। कन्नड़ में उन्होंने पैरोडी फिल्म में काम किया, मलयालम में चाइना टाउन, बांग्ला में हीरो 420 और भोजपुरी में क्रैक फाइटर। प्रदीप रावत की एक और महत्वपूर्ण फिल्म थी आमिर खान अभिनीत सरफरोश, जिसमें वो सुल्तान की भूमिका में थे। इसके अलावा ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म लगान में उन्होंने तेज गेंदबाज देवा सिंह सोधी का शानदार किरदार निभाया था। विनम्र नमन। स्मृति शेष। ये थी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई केंद्र में किया गया है।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अगस्त महीने का अंक। आप जानते हैं कि हर महीने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती को हम विविधा के अंतर्गत आपको जरूर सुनाते हैं, और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलजार साहब पर विशेष सामग्री, क्योंकि इस महीने 18 को गुलजार साहब का जन्मदिन होता है। अगस्त की 18वीं गुलजार साहब का जन्मदिन। गुलजार साहब अपने एक्सप्रेशंस की वजह से, अपने प्रतीकों की वजह से बड़े विशिष्ट हैं। एक

0: तरफ उन्हें एक बेहतरीन लेखक के तौर पर जाना जाना जरूरी है, जहां आती हैं उनकी कहानियां। दूसरी तरफ जहां आती हैं उनकी कहानियां, रावी पार जैसी बेमिसाल कहानी को हम भला कैसे भूल सकते हैं। दूसरी तरफ हैं शायर गुलजार, जिन्होंने बेमिसाल नज़में लिखी और कुछ यादगार त्रिवेणियां भी लिखी। आप जानते होंगे कि त्रिवेणियां गुलजार की ऐसी कविताएं हैं जिनमें केवल 3 लाइनें होती हैं। उन्होंने त्रिवेणियों की जो प्रेरणा ली वो जापान के हाइकू से ली है, लेकिन त्रिवेणी की जो आखिरी लाइन होती है वो हमेशा ही हैरत में डालती है। त्रिवेणी के बारे में गुलजार साहब कहते हैं कि शुरू शुरू में तो जब ये फॉर्म बनाई थी तो पता नहीं था कि ये किस संगम तक पहुंचेगी। त्रिवेणी नाम इसलिए दिया था कि पहले 2 मिसरे गंगा जमुना की तरह मिलते हैं और एक ख्याल एक शेर को मुकम्मल करते हैं, लेकिन इन दोनों धाराओं के नीचे एक और नदी है सरस्वती, जो गुप्त है, नजर नहीं आती। त्रिवेणी का काम सरस्वती को दिखाना है। तीसरा मिसरा कहीं पहले 2 मिसरों में गुमा हुआ है, छिपा हुआ है, गुप्त है। तो गुलजार की कुछ त्रिवेणियां, एक त्रिवेणी में गुलजार लिखते हैं, सब पे आती है सबकी बारी से, सब पे आती है सबकी बारी से, मौत मुनसिफ है कमोबेश नहीं, जिंदगी सब पे क्यों नहीं आती। एक और त्रिवेणी, गोले बारूद आग बम नारे, गोले बारूद आग बम नारे, बाजी आतिश की शहर में गर्म है, बंद खोलो कि आज सब बंद है। एक और त्रिवेणी, रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, रात के पेड़ पर कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पककर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। गुलजार साहब विविध भारती के स्टूडियो में कई बार आए हैं और उन्होंने अपनी बातें कही हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम उन्होंने पेश किया था बरसों पहले मास्टर राजू के साथ। जरा अपने खजाने की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हमारे हाथ लगती है क्या। ये रही, तो चलिए इसे प्ले करते हैं।
1: फौजी भाइयों नमस्ते, बड़ी खुशी हुई आपसे दोबारा मिलकर। पहली बार अकेले मिला था, इस बार मेरे साथ एक बड़ा खूबसूरत होनहार बच्चा है जिसका नाम है मास्टर राजू। बहुत सी फिल्मों में उसे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में उससे मिले होंगे, लेकिन आज ये फखर मुझे हासिल है कि मैं इस बच्चे का आपसे परिचय करा रहा हूँ।
2: लेकिन अंकल, हमारी पहली फिल्म का भी तो नाम परिचय था।
1: जी हाँ, आपको याद है?
2: हाँ, मुझे उसका एक सीन और एक गाना याद है।
1: अच्छा, सीन कौन सा याद है आपको?
2: वो जब जितेंद्र अंकल नहा रहे होते हैं तो मैं उनके कमरे में लंगड़ा भूत बनकर जाता हूँ और कहता हूँ, अंदर कौन है? मैं लंगड़ा भूत हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा।
1: अच्छा, आपको अभी तक याद है। और गाना कौन सा?
2: वो जो हम सब लोग गाते हैं सारे के सारे।
1: हाँ, तो वो गाना आपने पहली बार स्क्रीन पर गाना गाया था ना?
2: जी हाँ।
1: तो वो गाना हम फौजी भाइयों को सुनाएं?
2: जी हाँ।
1: चलिए वो गाना सुनाते हैं।

ए संजू, ए बिजू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाओ।

0: राजू बेटा एक बात बताइए हमें, आप ये जो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, ये आपने सीखी कहाँ से?
1: ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी बच्चों से भी सीखी। लेकिन अंकल
0: हाँ,
1: एक 5 मिनट,
0: 5 मिनट?
1: मेरा मतलब 2 मिनट।
0: 2 मिनट में क्या करेंगे आप?
1: मैंने गलती हो गई मुझसे,
0: क्या?
1: मैंने फौजी भाई को नमस्ते करना भूल गया।
0: अरे रे रे रे, तो आप नमस्ते कर लीजिए, चलिए।

0: सॉरी भाइयों, मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आपको पहले नमस्ते करना भूल गया, इसलिए मैं आपको अभी नमस्ते कहता हूँ।
1: वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने कहाँ से सीखी, आप बता रहे थे हमें?
0: हाँ, ये एक्टिंग तो मैंने बड़ों से भी सीखी, बच्चों से भी सीखी।
1: बच्चों से कौन से?
0: बच्चों में मुझे एक फिल्म अच्छी लगी, वो आशीर्वाद।
1: अच्छा, उसमें तो बहुत से बच्चों के गाने भी थे।
0: जी हाँ,
1: कोई गाना आपको याद है?
0: वो दादा मुनि का जो गाना था।
1: दादा मुनि, फौजी भाई जानते होंगे, हम अशोक कुमार जी को फिल्म इंडस्ट्री में दादा मुनि कह के बुलाते हैं। तो दादा मुनि का कौन सा गाना आपको पसंद है?
0: वो जो तालेगांव मालेगांव वाला जो गाना था।
1: हाँ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। तो
0: हाँ
1: चलिए रेलगाड़ी पे चढ़े,
0: हाँ
1: चलिए
0: चलिए।
1: आइए।
2: आओ बच्चों, खेल दिखाए, छुक छुक करती रेल चलाए, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाए। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर, सब पैसेंजर, रेडी।

0: रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक भड़क भड़क लोहे की सड़क भड़क भड़क लोहे की सड़क यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
1: बस बस बस
2: अंकल स्टेशन आ गया
1: चलिए उतरिए
2: हाँ चलिए
1: हाँ उतरिए आइए चलिए अब कौन से गाने पे उतरेंगे
2: अब
1: गाना तो सुनाना पड़ेगा आपको हाँ कौन सा सुनाएंगे आप अच्छा ऐसी पिक्चर का गाना सुनाइए जिसमें आपने काम किया हो
2: अच्छा वो गाना मैंने नहीं गाया तो चलेगा
1: हाँ चलेगा लेकिन किसने गाया बता दीजिए
2: वो असरानी अंकल जो गाते बावर्ची में
1: वो कौन सा गाना है
2: वो नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी
1: अच्छा चलिए अच्छा ये तो आप अपने नमस्ते के साथ सुनाते तो बहुत अच्छा होता ना चलिए सुनाते

0: बहवा बेटा।
1: सुबह की किरने आई है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाई है। नमस्ते नमस्ते ओ पिताजी, नमस्ते। जय हिंद ओ पिताजी,
0: जय हिंद।
1: नमस्ते नमस्ते है सबको, नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
2: अंकल आपको मैथमेटिक्स आता है?
3: मैथमेटिक्स क्यों? एक मिनट जरा, मैं कुछ

0: एक कुछ फौजी भाइयों को कुछ बताना मैं भूल
1: अब आप
0: गया।
1: भी भूल करने लगे ना।
0: मेरे भूल हो गई, आपके बारे में कुछ बताना भूल गया।
1: हाँ फिर चलेगा। हाँ
0: फौजी भाइयों को मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू वो आर्टिस्ट है जिसे इस साल हिंदुस्तान में नेशनल अवार्ड मिला है, बस ये बात बताना भूल गया था। आप क्या पूछ
1: अच्छा
0: रहे थे?
1: मैं पूछ रहा था आपको मैथमेटिक्स आता है?
0: मैथमेटिक्स क्यों,
1: मेरे पास एक सवाल है, आप
0: क्या
1: उसे सॉल्व कर सकेंगे? देखिए
0: क्या?
1: एक बट्टा दो, एक बट्टा दो, 2/4 छोटी छोटी बातों में बट गया संसार।
0: ठीक है मैं समझता हूँ आप तो बहुत पसंद है वो गाना, आप वो गाना सुनाना चाहते हैं हमें,
1: जी
0: हैं?
1: हाँ
0: तो चलिए सुनाइए।
1: आप बहुत जल्दी समझ गए।

0: लगता है मैथमेटिक्स आपका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है ना?
1: नहीं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है। आप तो स्कूल में हिस्ट्री पढ़े होगे।
0: नहीं मेरे, हम स्कूल ही नहीं गए, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ोगे?
1: आपको हिस्ट्री पढ़ना है? हाँ,
0: हाँ मुझे पढ़नी है। आप पढ़ाएंगे कैसे?
1: हम जागृति है ना, जो फिल्म थी उसका हम एक गाने की उंगली पकड़ लेते हैं और बस आप उससे ही हिस्ट्री समझ जाएंगे।
0: अच्छा, उससे आप हमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ाएंगे?
1: हाँ
0: चलिए पढ़ाइए, आप शुरू कीजिए।

0: अच्छा रंज, जरा आप अपनी एक्टिंग का नमूना तो दिखाइए फौजी भाइयों को।
1: लेकिन अंकल ये तो रेडियो है।
0: हाँ तो क्या है, रेडियो पे आप अपनी एक्टिंग नहीं दिखा सकते? अरे आवाज से तो आप अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं, जैसे हमें सेट पे
1: लेकिन
0: दिखाया करते हैं, जो जोक सुनाया करते हैं आप।
1: अच्छा कौन सा?
0: आप कोई भी जोक जो आपको पसंद हो।
1: अच्छा मैं आपका फेवरेट जोक कहूँ?
0: हाँ वही
1: हैं
0: सुनाइए।
1: देखिए
0: इस जोक में हम पहले बता दें फौजी भाइयों को कि पहला रोल लसरानी, दूसरा अशित सेन और तीसरा।
1: किशोर मुखर्जी।
0: हाँ सुनाइए।
1: तो ये तीनों अंकल बैठे रहते हैं, तीनों जन अपना अपना बोलते कि मैं होशियार हूँ मैं होशियार हूँ। तो असरानी अंकल पहले कहते हैं कि मैं जंगल में गया। वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, सिर्फ हाँ सिर्फ सिर्फ एक ही। उस झाड़ के नीचे दो शेर बैठे हुए थे, हाँ सिर्फ दो शेर। और मेरी बंदूक के अंदर सिर्फ एक ही गोली थी, सिर्फ एक ही गोली। तो
0: फिर मारा कैसे?
1: उसके अंदर से उन्होंने कहा, मैंने एक को बुलेट मारी, एक को गोली मारी और एक को आंख मारी, दोनों मर गए।
0: अच्छा, दूसरे।
1: फिर टर्न आई अशित सेन अंकल की। अंकल ने कहा, अरे अरे अरे तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, मेरा सुनो, मैं जंगल में गया गया तो वो जंगल के अंदर एक ही झाड़ था, वो झाड़ के नीचे एक ही शेर बैठा था। और क्या हुआ कि मैं जब घर से निकला था तो मैं बहुत जल्दी में निकला और मैं अपनी बंदूक लेने भूल गया। अब मेरे सामने शेर खड़ा है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तो उन्होंने देखा उनके पीछे की जेब में उनका लाइसेंस था, तो उन्होंने लाइसेंस दिखाया।
0: बंदूक का लाइसेंस।
1: जी हाँ, बंदूक का लाइसेंस दिखाया। तो उस शेर को दिखाते ही शेर मर गया।
0: अच्छा, इन्होंने तो लाइसेंस से ही
1: तो
0: मार दिया।
1: जी हाँ, अब किस्टो अंकल की टर्न आई। उन्होंने कहा, अरे धीरा तो धीरा, घुस भी नहीं है, घुस भी नहीं है, मेरा सुन, वो जंगल में गया, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, भागा भागा भागा, मैं जंगल के आगे जंगल मेरे पीछे, सेम
0: हाँ जी,
1: भागा भागा भागा, जंगल मेरे आगे मैं जंगल के पीछे, वो जंगल के अंदर हेगी हेगी हेगी जारदा, वो झाड़ के नीचे एक शेर शेर शेर बैठा था, शेर। वो शेर को मैंने बोला, हे शेर तू ये जंगल का रजाई रजाई? तो बोला, हाँ हूँ, तेरी सब लोग सेवा करते हैं, तेरी सब लोग सेवा सेवा करते हैं। तो बोले, हाँ करते हैं। तो तू झड़ी झड़ी काय को नहीं पहनता है? तू शर्म के मारे मर गया मर गया।
0: तीसरे को आपने शर्म से मार दिया।
1: जी हाँ
0: अच्छा सुनिए, आप मुझे मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार हैं, उतने ही होशियार हैं जितने आप एक्टिंग में होशियार हैं। और आप सेट पे जो कुछ किया करते हैं, एक तो जोक सुनाते हैं,
1: जी
0: उसके
1: हाँ
0: अलावा आप पहेलियां पूछा करते हैं हमसे।
1: जी हाँ
0: अगर हमसे आप कुछ पहेलियां पूछें तो
1: जी
0: पूछेंगे
1: पूछो,
0: या मैं पूछूं आपसे?
1: जो भी कहें आप
0: चलिए हम कुछ पहेलियां आपको सुनाते हैं,
1: पूछिए।
0: अगर अच्छे लगे तो उनके जवाब बताइएगा।
1: चलिए।
0: हाँ जी चलिए।
2: मैं लाल लाल गुजकू, तू हाथ डाले मुझको, मैं काट खाऊं तुझको, तू खाए जाए मुझको, बताओ तो मैं कौन?

0: बताऊं? नारियल।
1: अच्छा एक बात बताइए राजू बेटा, आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी थी?
2: मैं जब छोटा था तो बहुत सारी फिल्में देखता था।
1: मतलब अब आप बड़े हो गए?
2: नहीं, मैं उस उम्र की बात करता हूँ, इस उम्र से भी छोटा था जब।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो मैं जब छोटा था तो बहुत सी फिल्म देखता था, लेकिन उसमें से मुझे एक फिल्म बहुत ही अच्छी लगी, वो ब्रह्मचारी।
1: ठीक है, मुझे याद है।
2: उसके अंदर से मुझे एक गाना बहुत ही अच्छा लगा। अगर वो गाना कभी रेडियो पर आता था ना, भले मैं खेलता था, लेसन करता, कुछ भी करता था ना, और अगर वो गाना रेडियो पर आया, बस मैं नाचने लग जाता था।
1: अच्छा, शमी अंकल की तरह। अच्छा, अगर वो गाना मैं अब भी लगाऊं तो आप नाचेंगे?
2: हाँ, नाचूंगा तो सही, लेकिन फायदा नहीं है।
1: क्यों?
2: कोई देखने वाला तो नहीं।
1: अरे फौजी भाई भी देखना, खुशी से नाचने लगेंगे। मैं लगाता हूँ गाना। चलिए।

0: अरे बेटा, एक बात जो हम भूल गए
1: देखिए
0: वो
1: अंकल, आप फिर से भूल करने लगे हैं।
0: नहीं, भूले मतलब उस तरह की भूल नहीं है, भूल ना जाए इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ कि जिस पिक्चर में आपको नेशनल अवार्ड मिला है उस पिक्चर का कोई गाना तो सुनाइए।
1: अरे हाँ,
0: आपको याद है कोई गाना उस पिक्चर का?
1: हाँ, उसमें से एक गाना मुझे अच्छा लगा, वो आज से पहले आज से ज्यादा।
0: आपको याद है गाना? याद है
1: हाँ
0: तर्ज भी याद है?
1: हाँ और वैसे मैं आज खुश भी
0: अच्छा तो चलिए सुनाइए। मैं कैसे गाना?
1: हूँ। आज से पहले आज से ज्यादा।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाने की अपील की। प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई। और कोरबा जिले में लगातार बारिश के कारण बांगो बांध के 5 गेट खोले गए। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई

लड़ाई न बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए यह सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब राज्य के जिन शासकीय और जिन महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं वहां विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। इससे पहले प्राचार्य स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई और कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त निर्धारित थी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यार्थी समय पर प्रवेश नहीं ले सके थे। छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि योग्य विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब ना हो और वे उच्च शिक्षा से वंचित ना रहें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक राज्यपाल रमेन डेका को सौंपा। यह सहायता राशि असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए प्रदान की गई है। कोरबा जिले में लगातार बारिश के बीच मिनी माता बांगो बांध के 5 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। लगातार बारिश और बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। प्रशासन ने नदी और निचले इलाकों में लोगों को विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का वर्ष 2018 को आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। दुर्ग जिले के भिलाई में ऑनलाइन निवेश के नाम पर रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी से 45 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने लोगों का भरोसा जीतने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और समाजसेवी सुधा मूर्ति जैसे चर्चित नामों का इस्तेमाल कर फर्जी निवेश का विज्ञापन दिखाया था। इस मामले में पुलिस ने मध्यप्रदेश के बैतूल से एक आरोपी विशाल नागले को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के मास्टरमाइंड और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग आज से शुरू हो गई है। आदिवासी विकास विभाग के अनुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया 20 अगस्त तक चलेगी। काउंसलिंग प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मेरिट सूची में आवंटित संबंधित विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। चयनित विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाने की अपील की। प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई और कोरबा जिले में लगातार बारिश के कारण बांगो बांध के 5 गेट खोले गए। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक

0: मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वनीकरण, दवा नल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो वित्त अधिनियम 2026 योजना के अध्याय 4 में शामिल है। ये योजना करदाता को तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। 15 सितंबर तक ये खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सेवा सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। महान संत श्री रामकृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, झारखंड, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में इसे गाया हेमलता ने। गीत रचना रविंद्र जैन की थी और ये गीत था फिल्म सुनैना से।

0: नदिया के पार फिल्म में आपने सुना ये आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता और साथियों की थी। गीत और संगीत थे रविंद्र जैन के।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
3: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
4: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
4: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
5: सखी सहेली।
0: सिने जगत की जानी मानी गायिका हेमलता के गीत आज हैं श्रोताओं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: जख्मों के निशान इस फिल्म का गीत था, हिमलता की आवाज में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: सुन, कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली।

0: चौपाइयाँ आप सुन रहे थे, फिल्म थी दुल्हन वही, जो पिया अमन भाई, हेमलता और साथियों की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अखियों के झलोके से। इस फिल्म का गीत आपने सुना हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। श्रोताओ, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए हेमलता के गाए चंद नगमे। आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जय कहां से हुजूर।
3: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
4: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
3: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
4: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
3: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सेहत नामा।
6: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा सुरीला सफर। इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और आप जुड़ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम से, भेज सकते हैं अपनी प्रतिक्रियाएं।

कमेंट्स। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने फेसबुक पर जो आज हमने इबारत पोस्ट की है उसे पढ़ा है और उस हिसाब से अपने गीतों के जो उनके सिलेक्शन हैं उसको भी बताया है हमें। वैसे आज जो बातें हमने की हैं उसके मातहत बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के नगमे हमें भेजे हैं। सावन का जो ये उजाला होता है श्रोताओं, यानी दिन की अगर बात करें तो जितना खूबसूरत होता है रातें भी उतनी ही मनभावन होती हैं, जो दिन की भागदौड़ से दूर थकन के एहसास को दूर भगाती हैं, अपनी आगोश में हमें ले लेती हैं। कभी गीत कभी गजल सुकून देते हैं ऐसी रातों में, कभी चांद सितारे हमसे बातें करते हैं, फूलों कलियों की खुशबू के साथ साथ भीगे सावन की रातों में कुछ खास यादें आपके मन में दस्तक देती होंगी। बरसात की कोई यादगार रात, जब जिंदगी के किसी सफर में कोई अजनबी बना आपका हम सफर और आपकी यादों में हमेशा के लिए बस गया रजनीगंधा के फूलों की महक की तरह। आज सुरीला सफर कार्यक्रम में सावन की बरसती रातें, कुछ गीत कुछ यादें हैं हमारी हम सफर। और अब आपसे बता दें जो इबारत हमने पोस्ट की है ये कुछ इस तरह से है। तुम्हें याद है वो बारिशों की रात, जब सावन के गीत की तरह समा सुहाना था, एक राह के हम दो अजनबी थे, हवाओं ने जब आपके रुख से पर्दा हटाया तो लगा जैसे बैरागी भंवरा नरगिस के फूलों के दामन में आधी रात कोई कविता सुनाता हो और कहता हो तेरा मेरा प्यार नया है। आज याद आई वही बरसात की रात, जब जिंदगी में जीने की तमन्ना जाग उठी थी, एक अनदेखी निगाह से दिल ने कहा था ऐसे तो न देखो। उस रात बादलों में कयामत के काजल थे, हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे, शायद प्यार हुआ था इकरार हुआ था, छतरी तानी और दोनों साथ चल दिए, दिल ने सच ही तो कहा था कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे। भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं और खोजिए उन शब्दों को जो हैं आज की इबारत में शामिल। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म अनजाना के ये कौन से दो कलाकार हैं श्रोताओं जो भीगना तो चाहते हैं लेकिन भीगने से बच रहे हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। और ऐसी बारिशों में क्या कोई कभी ऐसा दिखा आपको जो बिना छतरी के भीग रहा था और आपने अपनी छतरी के सहारे उसे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया था। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के गद्यांश से जो दृश्य उभर कर सामने आ रहा है वो प्रकृति के श्रृंगार और मानव मन के अंतर द्वंद्व और प्रिय से मिलन का मनोहारी रूप का गाढ़ा चित्रण है। सावन में बारिश की रात में हवा से चेहरे के पर्दे का हटना प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि ये संयोग चमत्कार है जो सत्य सौंदर्य और प्रेम के प्रकटीकरण का रूप लिए है। दो अजनबी का मिलना क्षण भंगुरता में शाश्वतता का अमर और अनंत प्रतीक होने के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस के अंकुरित होने का एहसास दे रहा है। रिमझिम रिमझिम बारिश और सुहाना मौसम प्रेम भाव को जगाने वाला मुख्य उद्दीपन है। एक और श्रोता ने लिखा है कि अनजान अजनबी संग अनजाने में अनकही बातें और अनबूझी आशाओं आकांक्षाओं का आकलन करती इबारत है और आशिकों के आका बनी सावन की बरसती जो बूंदे हैं आकाश में से मानो बौछार कर रही हैं बूंदे और अपने आश्रित आशिकों को अनुरागी आशीर्वाद दे रही हैं। और कुछ एक शब्द हमारे कुछ श्रोताओं ने सुझाए हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रात समा पर्दा प्यार तमन्ना देखो कयामत इकरार दामन, ये सारे शब्द हैं इसमें। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि चाहे जमाना लाख करे सितम हाय कभी तेरा दामन न छोड़ेंगे, और कुछ गीत इन्होंने भी सुझाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी तेरे दामन न छोड़ेंगे हम, प्यार हुआ इकरार हुआ और ए नरगिस मस्ताना, ये सारी गीत इन्होंने पसंद किए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश की वरात शायद इसलिए याद रह गई क्योंकि उसमें मौसम से ज्यादा कुछ और भी बरसा था। दो अजनबी थे एक राह थी थोड़ी सी झिझक और कुछ अनकही बातें, फिर एक निगाह मिली और लगा जैसे दिल ने सब कह दिया। छतरी के नीचे साथ साथ चलते हुए शायद प्यार ने चुपके से दस्तक दी थी। कुछ पल इतने सादे होते हैं कि उम्र भर की खूबसूरत याद बन जाते हैं। तो यही याद हमने आपसे पूछी है श्रोताओं कि क्या कोई कभी ऐसा मिला जो बारिश में बिना छतरी के भीग रहा था और आपने उसे अपनी छतरी के सहारे थोड़ी दूर तक छोड़ दिया। ये कौन से कलाकार

गीत क्या आपके दिल के करीब है श्रोताओ? ये दिल क्या आपको इस गीत को सुनने के लिए बार बार मजबूर करता है? जी हाँ, ये गीत अपने जमाने का बड़ा ही खूबसूरत नगमा बन पड़ा था श्रोताओ, जो मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जुबान पर था। आपने इस फिल्म को क्या देखा है और क्या आप ये कलाकार जो गा रहे थे उन्हें पहचानते हैं, तो आप हमें लिख भेजें। और ये फिल्म क्या आपने देखी है? घर घर की कहानी फिल्म का ये गीत था, आवाज सदाबहार गायक किशोर कुमार की थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि आज की बारात बरसात में तुमसे मिले हम हमसे मिले तुम की तरफ इशारा कर रही है। बरसात सिर्फ तन ही नहीं भिगोती बल्कि मन को भी भिगोती है। बारिश अपने पूरे शबाब पर हो और किसी शेड के नीचे दो अजनबियों का बारिश रुकने तक धीरे धीरे संकोच छोड़कर बातों का सिलसिला शुरू करना, या किसी से मिले लिफ्ट के बाद पता चलना कि दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों ही परिस्थितियों में ये महसूस होता है कि हम दोनों अब अजनबी नहीं बल्कि कई जन्मों के साथी हैं। तब दिल इस बरसात को शुक्रिया स्वरूप कह उठता है, जुग जुग से गीत मिलन के गाते रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है श्रोताओ कि वाकई हम किसी शेड के नीचे खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि ये बारिश अब थम जाएगी, तब थम जाएगी, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि बस रुकने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे में कोई आपका साथी बना क्या जो आज तक आपको याद है? तो बारिश की ये रातें जिनकी यादों को आज आप इस कार्यक्रम में ताजा कर सकते हैं। और हमारे तमाम श्रोताओं में से एक श्रोता ने और लिखा है कि वो बारिशों की रात थी और सावन खिड़कियों पर कोई धीमा सा खत लिख रहा था। हम दो अजनबी थे एक ही राह पर, मगर जाने क्यों हवा बार बार तुम्हारा रुख मेरी तरफ मोड़ देती थी। बादलों के काजल में आधी रात डूबी थी और तुम्हारे चेहरे से जब हवा ने पर्दा हटाया, लगा जैसे नरगिस के फूलों के बीच कोई भूली हुई कविता जाग गई हो। छतरी हाथ में थी और इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं। वैसे

जो सावन की रात होती है उसमें तमाम फूल भी होते हैं। नरगिस के फूल का हमने जिक्र किया है और आपको यादें तो ताज़ा करनी ही हैं, साथ ही नरगिस का जो फूल होता है क्या आपने उसे देखा है, कितने रंग का होता है श्रोताओं, यह आपको बताना है। और नरगिस के फूल को और क्या कहते हैं, यानी और क्या नाम है।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत था और ये दो अनजाने कौन थे जिनकी मुलाकात बरसात की रात में हुई। और ये गीत जो एक्ट्रेस हैं या जो अभिनेत्री हैं वो कहाँ सुन रही हैं जब ये सिर्फ हीरो गाते हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ थी। बाकी डिटेल आपको बतानी है। घर घर की कहानी फिल्म में जलाल आगा पर फिल्माया गया गीत था और अनजाना में बबीता और राजेंद्र कुमार थे। हमारी एक श्रोता ने लिखा है, हमने तो कई बार छोड़ा है एक बड़ी उम्र की महिला को मंदिर तक उसी की छतरी में, बस पकड़ा हमने तो खुद थोड़ा भीग गए पर उन्हें भीगने से बचाया और कई बार अपने फूलों के ऊपर भी छतरी को रखा ताकि उनमें ज्यादा पानी ना आ जाए। जी हाँ, एक और श्रोता लिखती है कि नरगिस का फूल मुख्य रूप से पीले और सफेद रंग का होता है लेकिन इसकी किस्मों में नारंगी, क्रीम, गुलाबी और हल्के लाल रंग भी पाए जाते हैं। इसे अंग्रेजी में डेफोडिल कहा जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, एक सुहानी शाम और बाहर रिमझिम सावन बरस रहा था। वो ठीक वैसी ही एक बारिश की रात थी जब जिंदगी की अनजान राह पर चलते हुए दो अजनबी अचानक एक दूसरे के करीब आ गए। और उसके बाद की बात इन्होंने लिखी है अपने शब्दों में। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं छत पर आई कपड़े सुखाने, फिर कुमुदनी खिली देखी, फिर मोबाइल ले आई, उसकी तस्वीर खींची, बाद में बाकी बेलें हमें भूल गई तो वीडियो

जो करने लगी। बाद में कमल रूठा, उसको सहलाते समझाने लगी, उसके भी फोटो निकाले। चलो अब नीचे जाती हूँ और रेडियो शुरू करती हूँ पापा। इन्होंने पापा को भी याद किया है, यानी गणपति पापा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हाँ, मुझे तो याद है वो बरसात की रात, देशभक्ति गीतों की एक शाम का प्रोग्राम चल रहा था। बाहर बारिश तेज थी, थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए रास्ते में इतना बड़ा

थोड़ा इंतजार करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी। मैंने रेनकोट पहना और स्कूटर से घर आने के लिए, रास्ते में इतना बड़ा पानी से भरा गड्ढा था कि मेरा स्कूटर उसमें फंस गया और मेरा स्कूटर बंद हो गया। मुझे पैदल ही स्कूटर को घसीट कर घर आना पड़ा। मुझे याद है कल की बरसात की रात शायद जिंदगी भर नहीं भूलेगी। तो ऐसा हमारे और भी साथियों ने लिखा है, और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम का अंदाज जो है वो लाजवाब होता है इस कार्यक्रम का। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया के सारे खूबसूरत गाने सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के खजाने में ही रिकॉर्ड करके महफूज किए गए हैं। आपके पास हर मूड के हर दौर के बेहतरीन संगीत मौजूद हैं। जी हाँ, विविध भारती की लाइब्रेरी तो ऐसी ही है, और कई बार आपने फेसबुक पर इसे देखा भी होगा। खूबसूरत हसीना कौन है?

0: वैसे बारिश अगर तेज हो तो छतरियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है श्रोताओं, ये आपको बताना है। और बारिश में आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, या किसी जगह आप गए जहाँ की रात जो थी वो आपको याद रह गई, और वो सफर आपका कैसा रहा, ये आपको बताना है। वैसे बारिश के मौसम में साइकिलें भी खूब चलाई जाती हैं, और सोचा ये जाता है छोड़ो छतरी कौन ले, ऐसा कभी आपके साथ हुआ तो ये आप हमसे बता सकते हैं। और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि इनके कमेंट्स जो हैं वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये लिखती हैं कि बारिश में प्रकृति अपने खुमार से जो है वो खुमार होता है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, धरती भी झूमती है, गाती है बरखा रानी जरा जम के बरसो। और एक कार्यक्रम में हमने आपको ये गीत सुनवाया भी था। एक और श्रोता ने लिखा है कि छतरी की बात पर याद आया, एक बार मेरी एक कलीग जिसे ऑफिस में काम को लेकर थोड़ा मतभेद था, लेकिन शाम को जब हम नरीमन पॉइंट से बाहर निकले तो मैं बरसात बहुत थी और मेरे पास छतरी नहीं थी, वो पीछे से आई और झटपट मेरे सिर पर छतरी उड़ा दी और हम दोनों साथ साथ चलते हुए चर्च गेट तक आ गए। जी हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी नाराजगी भी होती है, पर कुछ ऐसे मौके आते हैं जब फिर से हम साथ साथ हो जाते हैं और छतरी उनमें जो है कह सकते हैं कि अहम रोल निभाती है। तो ऐसी ही बातें आज आपको साझा करनी है। वैसे जो सावन की रातें होती हैं उनमें न सिर्फ लोग या हम सफर साथ होते हैं, बल्कि कोई कोई गीत ऐसा होता है, कोई गजल ऐसी होती है जो आपको अच्छा एहसास दिलाती है। तो ऐसी अगर कोई बात है तो आप लिखें। एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन और किशोर अवस्था में हम झूला देखने सावन की बरसात के बीच जाते थे, खूब जलेबी खाते और गुब्बारे लेते थे, मंदिरों में झूला उत्सव में गायन और नृत्य भी बहुत भाता था, बरसात की रात तो बहुत रोमांटिक होती है। वैसे इस साल अलमीनू ने बरसात को बहुत प्रभावित किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज बारिश का मौसम सब जगह छाया है, सब जगह बारिश है, पर हमारे शहर में बादल हैं, पर बारिश के नहीं, आज के गीतों का आनंद ले रहे हैं, यानी बारिश नहीं है, धूप भी नहीं आती और बारिश भी नहीं, तो आप इंतजार करें, बारिश तो आएगी।
1: तू मेरे बैरागी भंवरा,

अभिनेत्री साधना और धर्मेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। संगीतकार आपको बताने हैं इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म का नाम था। श्रोताओ, न सिर्फ हम सफर यानी कि जो साथ चले कुछ समय और याद रहे या फिर जीवन भर के लिए साथ हो गए, ऐसी यादें आप हमसे ताज़ा कर सकते हैं। और कभी कभी किताबें भी हमारी हम सफर होती हैं इस रात की। कभी कोई गीत, कभी कोई गज़ल आपको ऐसी रातों में, शांत रातों में, बारिश की रातों में सुनना पसंद हो तो आप बता सकते हैं। और कौन हम सफ़र है, वो कौन सा हम सफ़र है श्रोताओ, जिसकी याद बीती रात आपको सोने से, जिसकी याद ने बीती रात आपको नींद से जगाया, तो ये अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताएं। बीती रात यानी कल जो गई, उस रात की हम बात कर रहे हैं। एक हमारे श्रोता ने बड़ी मजेदार बात लिखी है, और वैसे हमारे श्रोताओं से ये आग्रह है कि जल्दी जल्दी कमेंट्स भेजें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो स्क्रोल होते हैं तो वो एक साथ आ जाते हैं। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी के पीछे बैठो, छतरिया उड़ने का डर लगता है और सामने गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, उसके मुंह पर पानी भी टपक जाता है कभी कभी, तो कभी अच्छा भी लगता है। भाई ये तो एक शरारत वाली बात हो गई। एक हमारे श्रोता और लिखते हैं कि सावन का महीना आते ही प्रकृति एक अलग बदलाव ले लेती है, चारों तरफ हरियाली होती है और छोटी छोटी बूंदे जो हैं वो बरसती, ये कहती हैं कि इन बूंदों की तरह हमेशा खुश रहना चाहिए। जी हाँ, जब बूंदों को वैसे भी हम देखते हैं तो एक अजीब सी खुशी जो होती है मन में होती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि हम एक किसान जोड़ी हैं जो खेत में काम करते करते आपका रेडियो सुनते रहते हैं। आज हमें सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, ये गाना सुनना है, कृपया करके सुना दें तो बहुत उपकार होंगे। हमारे नाम, उन्होंने अपने नाम भी लिखे हैं और अपनी अर्धांगिनी का नाम भी लिखा है, तो हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और इंतजार तो करना पड़ेगा, गीत तो एक से एक आते ही रहते हैं। एक और हमारे श्रोता का कमेंट है, वो इस गीत को सुनवाने के बाद बताते हैं। लिफ्ट में जब आप जाते हैं, कोई ऐसी रात जो आपको याद रह गई हो।

ये दो लोग जो हैं वो लिफ्ट में हैं, और कौन सी फिल्म है, कौन से कलाकार हैं, ये आपको बताने हैं। हमारी श्रोता ने लिखा है कि हम एक बार बारिश में छाते से अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक लड़की डॉक्टर को दिखा कर लौट रही थी। रास्ते में बारिश हो गई। बोली, आंटी मुझे गली तक छोड़ देंगी। उसके घर तक छोड़ती हुई तब मैं अपने घर आई। वो भीग रही थी और बुखार में भी थी। ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत बरसती मौसम में हुई मुलाकात की बातों से जुड़े गीतों से बुनी जाने वाली है। तब हम ये कहेंगे, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सावन के महीने में रिमझिम फुहारों के बीच किसी अजनबी से मिलना अक्सर पहली नजर में ही दिल में उतर जाता है। पहली नजर का प्यार कई बार खामोश इकरार में तब्दील हो जाता है, और सावन महीने की हर बूंदें उसकी यादें ताजा करती हैं और भीगे हुए। और उन्होंने अपनी बातें और भी लिखी हैं आगे। एक और श्रोता लिखते हैं कि बारिश और सावन का संगम प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण कर देता है। उड़ते बादल, बरसता पानी, फुहार, सुहाना मौसम जीवन में कई उमंग जो है जागती है। और

ये खूबसूरत एहसास होता है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं, इन्होंने कुछ एक पैरोडी टाइप की लिखी है, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये गीत आप बताइए कि कलाकार के हाथ में कौन सा वाद्य है और ये कौन सी फिल्म है। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपसे पूछा था, वो इश्क पर जोर नहीं फिल्म थी और संगीतकार थे।

कि संदर्भ में है और अंत में हाथ में छतरी फिर क्यों भीगते रहे। पंक्ति उस खूबसूरत विरोधाभास को दर्शाती है जहां इंसान दुनिया की बारिश से बचने का दिखावा तो करता है पर मोहब्बत की बारिश में पूरी तरह भीग जाना चाहता है। कलाकार बताएं श्रोताओं आप।

अरुण गोविल और जैना वहाव पर ये फिल्माया गया गीत था। आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से, ये सुदास की आवाज थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की जो इबारत है, क्लासिक हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर और रोमानी नॉस्टैल्जिया का एक बेहद खूबसूरत और काव्यात्मक ताना बना है। बारिश की एक रात में दो अजनबियों के रूहानी जुड़ाव को यहाँ बेहद नफासत से पिरोया गया है। इस रचना की सबसे बड़ी खूबी इसमें शामिल क्लासिक गीतों

चंदा और देवानंद पर फिल्माया गया तीन देवियां फिल्म का ये गीत था। ये तीन देवियां कौन थे इस फिल्म में? श्रोता, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप हमें जरूर बताएं। सचिन देव बर्मन की तर्ज थी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहले बरसात की रात ऐसी भी होती थी जब रात भर बारिश होती थी और लाइट बंद कर दी जाती थी। चारों तरफ सन्नाटा, काली घटा, कड़कड़ाती बिजली के बीच चौकन्ना रहना पड़ता था और रोशनी के लिए उन दिनों लालटेन के माध्यम रोशनी से पढ़ाई लिखाई और रसोई घर में खाना बनता था और उसी माध्यम रोशनी में बैठकर एक साथ खाना खाया जाता था। कितना सुकून था उन दिनों में भी। एक और श्रोता ने लिखा है कि सुंदर नायाब गीतों का नजराना, यानी सुरमई यादों तरानों का नया कारवां और नगमों की अनकही राहें जिन पर चलने का आनंद हर कोई चाहे।

एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि यदि घनघोर हो रही हो बारिश तो छाता भी काम नहीं करता है। एक और श्रोता लिखती हैं कि मैं आजकल बर्लिन में हूं और वहां से प्रोग्राम सुन रही हूं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बारिश के मौसम में जब छतरी लेकर गाड़ी पर पीछे बैठो तो भाई

ये दो कलाकार आपको पहचानने हैं श्रोताओं, और जो अभिनेता हैं वो कौन सा वाद्य बजा रहे हैं? वैसे अरुण गोविल के हाथ में रावण हत्था था।

आपको वादे बताने हैं और जरूर बताने हैं, जरूर बताइए श्रोताओं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि लिफ्ट पूछो मत, लिफ्ट के बारे में। जगह वृंदावन गए, वहाँ किसी होटल में रुके और लिफ्ट में जा रहे थे, ऊपर अचानक से लाइट गोल, ओके लिफ्ट रुक गई है, बहुत डर गए सब, लेकिन शुक्र है लिफ्ट में नंबर लिखा था तो हमने उसे नंबर पर कॉल करके पूछा तो बोला लाइट गोल है, थोड़ी देर में आ जाएगी, तब टेंशन न करें। श्री 420 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया शंकर जयकिशन की तर्ज थी। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि बारिश की रिमझिम बरसती रात में प्रेम का सुंदर वितान छुपा है, किसी रहस्य की तरह जहां दो अजनबी मिले थे और फिर पूरा समा रंगीन हो उठा था। बारिश में छन छन कराती फुहारें मन पर नेह का जो पुल बनाती हैं उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। नेह का पुल पर दोनों ओर जमजमाते बादलों से जो रस की वर्षा होती है उसको निहारने से मन में प्रेम के फूल खिलते हैं और दिन सुरीला हो जाता है। प्रेम कोई एक दिन की बात नहीं, ये तो हमेशा हमेशा के लिए हर बार मुट्ठी से फिसलती ये बारिश प्रेम भरी और मन में अटक जाती है। कलाकार आपको बताने हैं और फिल्म

की भीगी रात की तरह सुंदर होता है। श्रोताओ, ये कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे थे। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी, इस फिल्म का गीत नंदा और शशि कपूर पर फिल्माया गया। आपके सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

त्रिवेणी में आपका स्वागत है। भाई ये जमाना प्यार से ज्यादा पीआर का है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, जिसका सीधा सा अर्थ है लोगों से संपर्क करना। इन दिनों लोगों से संपर्क बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी समझा जाता है। यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि लोगों से संपर्क रखने का अर्थ किसी भी व्यक्ति से बातचीत करना नहीं है, बल्कि संपर्क उन्हीं लोगों से बढ़ाया जाता है जो आगे काम आ सकें। ऐसे लोगों से न सिर्फ बातचीत करना और उनके आसपास बने रहने के मौके देखे जाते हैं, बल्कि कई बार ऐसे लोगों से दोस्ती भी गांठी जाती है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी के लिए ये बड़े काम के जो होते हैं। हमें पता होता है कि ये साथ होंगे तो बहुत से काम बन सकते हैं।

0: जो पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क में रह पाते हैं वो अलग लोग होते हैं। इसके लिए कई बार वो निश्चित रकम भी चुकाते हैं या दोस्ती में ही उनकी बात बन जाती है। ऐसे में उनकी तारीफ वही लोग करते हैं और इससे आगे बढ़ने के रास्ते भी अपने आप खुलते जाते हैं। लेकिन इन दिनों एक नए किस्म का पीआर भी शुरू हुआ है, जहां लोग अपनी तारीफ खुद ही करने लगे हैं। वो अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों या कामों का ढिंढोरा खुद ही पीटते हैं, पर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, भाई जमाना ही कुछ ऐसा है। इन दिनों जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने, पूछ भी उसी की होती है। और अगर आप अपने कामों के बारे में न बताएं, तो कोई मानता ही नहीं कि आपने कुछ किया होगा। इसलिए जैसा देश वैसा भेष, इसकी तर्ज पर अपना गुणगान करना भी इन दिनों फैशन में है।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

कभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं।
1: भले ही मतलब के लिए जनसंपर्क बढ़ाया जाए या अपनी प्रसिद्धि के लिए अपने ही मुंह से अपना गुणगान किया जाए, ये सब केवल पहली बार के लिए आपको कहीं पहुंचाने में काम आ सकते हैं। लेकिन सच तो यही है कि किसी की योग्यता उसके व्यवहार और उसकी काबिलियत से ही साबित होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दिखावे का पर्दा हटता है तो सामने आती है वास्तविकता। लोग उसी वास्तविकता को देखकर आपसे जुड़ते हैं। यहाँ ना कोई तारीफ काम आती है और ना ही कोई पीआर। काम आता है तो केवल आपका आचार विचार और व्यवहार। जब होता है अच्छा व्यवहार तो लोग आपकी पीठ पीछे भी करते हैं तारीफ। और यहाँ कोई पीआर काम नहीं करता, ये होता है उनका खालिस प्यार।

जहाँ जरूरी हो वहाँ तो जरूर करें प्यार, लेकिन सभी से कीजिए दिल से प्यार। इस संदेश के साथ अब दीजिए आज के त्रिवेणी से अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें स्मरण कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत, ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: छात्र आधिकारिक यूजीसी नेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उत्तर कुंजी को चुनौती दे सकते हैं। प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने के लिए ₹200 प्रति प्रश्न का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। छात्रों को प्रत्येक चुनौती के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी अन्य माध्यम से भेजी गई चुनौतियों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 18 तारीख है। एनटीए ने बताया कि शेष 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार की त्रुटियों से संबंधित शिकायतों की

0: जांच के लिए एक समिति गठित की गई थी। एनटीए ने कहा कि समिति की सिफारिशों के आधार पर इन तीनों विषयों के संबंध में अलग से सार्वजनिक सूचना आज जारी की जाएगी। एनटीए ने छात्रों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित सूचनाओं पर ही भरोसा करें। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है, और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लंबे समय तक विपक्ष में रहे थे, फिर भी उन्होंने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और यही कारण है कि उन्हें अजात शत्रु कहा जाता था। श्री शाह ने ये बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कही।
3: 16 अगस्त आज ही के दिन अटल जी हम सब के बीच में से विदा लिए थे। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है।
1: श्री शाह ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना श्री वाजपेयी के ही कार्यकाल में हुई थी। उनकी पहल के कारण जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए कई कार्य हुए, जिसे मौजूदा सरकार ने भी आगे बढ़ाया है और कई ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए जनजातीय लोगों के हितों और अधिकारों की रक्षा की गई है। श्री शाह आज अलवर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत मंगलवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
4: भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने ब्रिक्स पर्यावरण कार्य समूह के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की पहचान की है, में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, वन संवर्धन, दावानल और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और अनुकूलन शामिल है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर राष्ट्रगीत के विरोध का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के गायन को रुकवाने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ऐसा करके कांग्रेस ने राष्ट्रगीत का अपमान तो किया ही।

0: संविधान और देश की जनता का अपमान भी किया।
1: हमने कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हमने कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी द्वारा किया गया विरोध में देखा। कांग्रेस ने सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स का ही अपमान नहीं, इस देश के संविधान का, इस देश की संप्रभुता अखंडता का और इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है वंदे मातरम के उद्घोष का विरोध करते हुए।
0: भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी मुख्यालय में वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ था। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज हरियाणा में करनाल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये अभियान इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक

0: यानी इस महीने की 9 तारीख से 17 तारीख तक पूरे देश में चलाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने रवाना किया। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
1: अमृत उद्यान के संस्करण में देशज और स्थानीय ग्रीष्मकालीन पुष्प प्रमुख आकर्षण है। इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। वहीं रखरखाव कार्य के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओणम के औपचारिक समारोह आज अथम के साथ शुरू हो गए हैं और पूरे केरल में मनाए जा रहे हैं। अथम की खास पहचान अथ पुक्कलम है, जिसमें घरों में रंग बिरंगे फूलों से कालीन सजाए जाते हैं। इसमें तिरुवोणम तक हर दिन फूलों की एक नई परत जुड़ी जाती है। मध्य केरल के त्रिपुनितुरा में आयोजित होने वाला भव्य अथा चमयम जुलूस भी ओणम समारोह का प्रमुख आकर्षण है। इसमें पारंपरिक कला रूपों और प्रस्तुतियों के माध्यम से राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत की झलक देखने को मिलती है। उधर सबरीमाला मंदिर आज मासिक पूजा के लिए खोल दिया गया है। विशेष ओणम पूजा 24 से 28 अगस्त तक होगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित प्राचीन बाबा बुड्ढा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। श्रावण माह में होने वाली यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पुदुचेरी में आज डी ज्यूरे ट्रांसफर डे मनाया जा रहा है। ये दिन पुदुचेरी के भारत में विलय के स्मरण में मनाया जाता है। इस अवसर पर पुदुचेरी के गृहमंत्री ए नमस्सिवयम ने किझूर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यहां 1954 में भारत में विलय को लेकर ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साइबर कुश्ती 2026 नामक एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा आकलन में मानवीय निर्णय क्षमता का परीक्षण और उसे मान्यता प्रदान करना है। साइबर कुश्ती के लिए कल से शुरू हुआ पंजीकरण अगले महीने की 10 तारीख तक जारी रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में एक बार फिर हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल उत्तरी ओडिशा तट पर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे राज्य में बाढ़ की समस्या और बढ़ गई है। IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में खासकर कल और परसों बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। बैतरणी, ब्राह्मणी, सालंदी, जलका और बूढ़ा बलंग नदियों ने बड़े इलाकों को जलमग्न कर दिया है। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, केंदुझर और केंद्रापड़ा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 500 से ज्यादा गाँव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में

0: हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री राम कृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू होगी। और क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर के युगल स्वरों में गाइड फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया। शैलेंद्र के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

संगीत सम्राट तानसेन। इस फिल्म में मुकेश की आवाज आपने सुनी, शैलेंद्र के बोल थे एस एन त्रिपाठी की तरज थी।

0: आरजू फिल्म का गीत था मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन की तर्ज, हसरत जयपुरी के बोल थे।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहत नामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहत नामा।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आनंद बख्शी की गीत रचना थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

रोशन का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना आपने सुनी सुधा मल्होत्रा की आवाज़ में फिल्म बाबर से। सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

पेश खिदमत है मन चाहे गीत। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बूंदों के रथ पर चांदी सी चमक लिए आपके पसंदीदा गीत आपके शहर से हमारे पास तक आ चुके हैं। साथियों, ये पत्र बड़े ही सुंदर दिख रहे हैं। थकान तो इनमें कहीं दिखती नहीं, ताजगी गीतों की आप भी महसूस करेंगे। बस सुनते रहिए मन चाहे गीत। तो सुनिए जरा ये गीत, इसमें आपके प्यारे प्यारे खतों की खुशबू है। मन चाहे गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

पत्थर की सनम फिल्म का दो गाना आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। गोला बाजार बक्सर से सदानंद, अभयानंद और परमानंद आर्या ने हमें पत्र लिखे। पुलगाम जिला वर्धा से अब्दुल कलाम का पत्र आया। गंगा शहर बीकानेर के हमारे श्रोता हैं कैलाश सोनी, गोविंदा सोनी, उत्तम सोनी और मिलोदास, जयदास, देवेश दास की फरमाइश आई है। धनवंतन बाई, मोतिन बाई मानिकपुरी का भी नाम इसमें है। गणेश धाम परसूली बालोद के हमारे श्रोता हैं और ये पत्र आया है शीशगढ़ बरेली का इलियास नईम और नदीम इदरीसी इसी गीत को सुनना चाहते थे।

साजिद फिल्म में आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बनाई धुन थी, आनंद बख्शी का लिखा गीत आपने सुना। कर्नाटका के ये हमारे श्रोता हैं, तिरुपंजी से इन्होंने पत्र लिखा है। प्रकाश श्यामला, अश्विन और आनंद मनविथ दाम भी है इस गीत के लिए। एक और श्रोता है शारदा, जिला नंदुरबार महाराष्ट्र के का ये पत्र है। प्रकाश शील के, तुषार, किशांग और प्रियांगी ने इस गीत को सुनना चाहा। और ये हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ के शिखा, प्रीति, संध्या, शालू ठाकुर। और ये पत्र आया है जुनताद अकोले से, राजेश, प्रिया और रोहन नेहा वाघमारे का ये पत्र है। और महेंद्र जैन, नागेश जैन, पारस, जयेश, ऋषभ और

पॉपी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया महेंद्र कपूर ने। सच बिहारी के बोल थे। आप सुन रहे थे किस्मत फिल्म का गीत। पोहरा अहिवारा जिला छत्तीसगढ़ के हमारे श्रोता पत्र लिखते हैं, पोषण बंदौर और चंद्रकरण प्रीति और छाया बंदौर की ये फरमाइश है। और मीना तलरेजा जी का भी पत्र मेरे हाथ में है श्रोताओं। इन्होंने कहाँ से लिखा है, जगह का नाम नहीं लिखा। हमारे यहाँ का तो पता ठीक है। दत्तारेंगी भाड़ा पारा के हमारे श्रोता हैं हीरामन वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र और नोखेलाल वर्मा ने इस गीत की फरमाइश भेजी। गेंदलाल श्रीवास और गेंदू भाई का पत्र आया है दुर्गा चौक रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। देवली कांशिवनी तालुका जिला अकोले से हमारे श्रोता हैं सचिन नीलखन, आयुष पीयूष आराध्या सारिका मधुकर राउत। ये हमारे रंगनाथ देवल गांव के श्रोता हैं मधुकर, जया राउत, ओम कीर्ति राउत और

ये खूबसूरत तर्ज थी मदन मोहन की, साहिल धानवी की रचना आपने सुनी। लैला मजनू फिल्म का ये दो गाना था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया। आप सभी की फरमाइश, शीतल पार्क राजकोट से कासिम संगवाणी, इकबाल अनवर संगवाणी ने पत्र लिखा। और बलियापुर धनबाद के हमारे श्रोता हैं गिरधारी लाल अग्रवाल, कंवर कॉलोनी बाड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली ने हमें पत्र लिखे। हुसैन चौक रामनाथ परा जंक्शन प्लॉट राजकोट के हमारे श्रोता हैं मोइन अहमद अजमेरी, लियाकत अहमद इरफान, प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और आशीष कोटेचा ने पत्र लिखे। और इसी गीत को सुनना चाहा सरोज चौक अमरावती के हमारे श्रोताओं ने, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम, आयशा, हदिया आसमा और मुश्तबा खान, सादिक भाई और शाहिद ने।

मेरा साया फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहदी अली खां के बोलों को सुरों में ढाला मदन मोहन ने और फरमाइश भेजी आप सभी ने। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता, दरियापुर बाबली से गजानन नवदीप और विश्वदीप येले की ये फरमाइश है और शाहिद दीपक और ऋषि की फरमाइश आई है सूरत उन गांव से। गांधी चौक बाड़मेर के हमारे श्रोता बबलेश डैनी और मनीष पवार और नई सड़क एमपी शाजापुर के हमारे श्रोताओं ने ये फरमाइश भेजी है। मनमोहन राजावत, राज मधु, राशि चित्रंजन, सरोज, रितिका स्वीटी, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओ कार्यक्रम में अपने पत्र भेजने के लिए। भेजते हैं इसी तरह से अपने पत्र और हम भी सुनवाते रहेंगे आपके पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। और अब इस कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है नाटक पुराना मर्ज नया इलाज। मूल लेखक मॉलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी।
1: अरे भाई कृपण साहब, अरे भाई मैंने कहा क्या जनान खाने में ही घुसे रहोगे यार?
2: आओ भाई डॉक्टर।
1: अरे जल्दी आओ ना।
2: कहो भाई आज कैसे रास्ता भूल पड़े?
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
2: नहीं आज मैं बहुत दुखी हूँ।
1: क्यों?
2: तुम तो जानते हो भाई मेरी इकलौती पत्नी स्वर्ग सिधार गई है।
1: अरे भाई वो तो मालूम है, लेकिन आज महीनों के बाद तुम्हें
2: आज फिर उसकी याद आ रही है। दिल करता टूट फूट कर रहा हूँ।
1: अरे तो फिर रोते क्यों नहीं? देखो आंसू बहाने में कंजूसी ठीक नहीं होती।
2: मजाक ना करो दोस्त, प्यारी पत्नी की याद में कलेजा मुंह खुला रहा है। हाय हाय हाय, कितना चाहती थी मुझे।
1: अरे भाई मैं ये कह रहा था कि बीवी को भूल भाल कर अब तुम बेटी की तरफ ध्यान दो। अगर तुम इस तरह दुखी रहोगे तो तुम्हारी रूपा बेटी भी।
2: रूपा के कारण तो और भी परेशान हूँ भाई।
1: क्यों क्यों क्या हुआ उसे?
2: अरे न जाने क्या हुआ, हर दम उदास रहती है। कोई कोई सी चांद सा गोरा चेहरा पीला पड़ गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं भाई।
1: तो तुमने उदासी का कारण जानना चाहा?
2: नहीं तो नहीं मालूम, पूछता हूँ तो कुछ जवाब ही नहीं देते। भाई उतार चल।
1: हाँ उतार चल। हाँ
2: भाई तुम मेरे दोस्त ही नहीं सगे भाई की तरह हो।
1: सो तो
2: बोले हो ना। तो ऐसा करो तुम्हें कोई तरकीब बताओ, रूपा बेटी को कैसे खुश करूं।
1: देखो भाई कृपण चल, मैं तो स्त्रियों को प्रसन्न करने का बस एक ही नुस्खा जानता हूँ।
2: बताओ बताओ जल्दी बताओ।
1: बताओ
2: बताओ
1: बताओ
2: बताओ। अरे वाह,
1: देखो भाई तुम रूपा बेटी को जरी के काम की कुछ अच्छी अच्छी साड़ियां दिलवा दो।
2: जरी के काम की साड़ियां?
1: अररे इतना ही नहीं साथ ही जड़ाऊ जेवर भी।
2: साड़ियां और जेवर? नहीं भाई ये तो बहुत महंगा रुपया है।
1: महंगा?
2: मेरा तो दिवाली निकल जाएगा। उदाचन भाई उदाचन कोई सस्ती तरकीब सोचो।
1: ओ, ओ, तुम रहे कृपण के कृपण ही। अरे भाई तुम अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते?
2: नहीं भाई, जिसने भी अपनी गाड़ी कमाई साड़ी जेवर पर कमाई समझो उसकी आफत आई।
1: तो फिर खोजो जमाई और कर दो सगाई।
2: क्या मतलब?
1: अरे भाई जमाई का मतलब भी नहीं समझते? तुम्हारी बेटी सयानी हो गई,
2: हाँ तो
1: उसकी शादी कर दो और छुट्टी पा जाओ।
2: शादी? नहीं, शादी के बाद बेटी खुश रहेगी इसकी क्या गारंटी है? बोलो भाई है तो गारंटी नहीं? अरे भाई तुम जानते नहीं हो अक्सर शादी लाती है बर्बादी।

0: पूजा जी, अब जरा ये भी बता दो कि फिर तुमने क्यों की थी शादी?
1: एक ही बार तो की थी।
0: हाँ, एक ही बार की थी। अरे तुम्हारी बहानेबाजी मैं समझता हूँ, तुम पक्के कंजूस हो कंजूस। बेटी की शादी में खर्च हो जाएगा ना, इसीलिए बातें बना रहे हो।
1: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, क्या तुम भी बात करते हो। कोई और मत कर सकते।
0: नहीं नहीं भाई, मैं कुछ नहीं जानता। बेटी तुम्हारी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं चला, दुकान खोलने का वक्त हो रहा है।
1: मैंने कहा कि अपनी दुलारी बेटी को भेजते जाना है। अब रूपा की सहेली है, शायद कोई रास्ता निकाल ले।
0: ठीक है, मैं दुलारी को भेजवा देता हूँ।
1: दीदी को भेजना जरूर।
0: हाँ भेज दूंगा।
1: चला गया, लगता है उधार चंद की बुद्धि भी उधार की है, तभी तो दिमाग नहीं चलता। साड़ी, जेवर, शादी, आय आय आय आय आय आय, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। न जाने क्या हो गया मेरी बेटी को। आय आय
2: चाचा जी।
1: हाँ दादी, तुम आ गई।
2: क्या बात है, मुझे बताइए। चाचा जी, मुझे मालूम हो गया है, रूपा का मर्ज है प्यार और उसका इलाज है शादी।
1: अरे वाह, शादी नहीं बर्बादी। मैं कहता हूँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: मैंने चाचा जी
1: को इसलिए बुला दिया।
2: चाचा जी, रूपा किसी को चाहती
1: है? किस चिड़िया का नाम है जी?
2: उसे पति चाहिए।
1: मैं कुछ नहीं जानता।
2: पति चाहिए चाचा जी, रूपा को पति चाहिए। उसकी शादी कर दीजिए।
1: मैं कुछ नहीं सुनूंगा।
2: रूपा, देखा दुलारी, चिंता की कोई बात नहीं। रूपा, तुम तो कहती थी कि कहने भर की देर है, पिताजी हंसते हंसते प्रेम के साथ शादी कर देंगे। मैं चाचा जी को ऐसा नहीं समझती थी। अब क्या होगा दुलारी, पिताजी शादी करेंगे नहीं और मैं प्रेम के बगैर जिंदा रह नहीं सकती। तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारी शादी प्रेम बाबू से ही होगी, विश्वास रखो। लेकिन पिताजी की जिद क्या गई, तू क्या कर पाएगी? कहा ना, तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। अरे चाचा जी आ रहे हैं, चलो अंदर चलें।
1: प्यार हो गया है, शादी करेंगे। दिन रात एक एक करके मैंने धन कमाया है, क्या इसीलिए कि लड़की की दहेज में स्वाहा कर दूं? कृपण चंद ऐसा मूर्ख नहीं है। मैं अपनी संपत्ति घर में ही रखूंगा और बेटी को भी घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।
2: चाचा जी, चाचा जी, गजब हो गया। रूपा,
1: क्या हुआ मेरी बेटी को?
2: बदकिस्मती।
1: अरे तुम्हारी बोलो तो।
2: दुर्भाग्य।
1: अरे तुम्हें क्या हुआ?
2: रूपा बहन।
1: हाँ, क्या हुआ उसे?
2: आपकी बातों से हताश होकर रूपा अपने कमरे में गई।
1: अच्छा,
2: पीछे वाली खिड़की खोली और आसमान की तरफ आंखें उठाकर कहा, पिता का स्नेह खोकर मैं जीवित नहीं रह सकती।
1: अरे,
2: मेरे लिए एक ही रास्ता है।
1: क्या, क्या?
2: मौत।
1: और वो नीचे कूद गई।
2: नहीं चाचा जी, मैंने पकड़ लिया।
1: क्यों?
2: क्यों? चाचा जी, अब वो बिस्तर पर पड़ी है। पहले रोती रही, फिर अचानक चेहरा पीला पड़ गया और वो मूर्छित हो
1: गई। मूर्छित हो गई। मैं अभी डॉक्टर बुलाता हूँ।
2: जल्दी जाइए।
1: तब तक रूपा को देख लेना। मैं अभी डॉक्टर।
2: रूपा, लाइन क्लियर है, आ जा। क्या कहा पिताजी ने? घबरा कर डॉक्टर बुलाने गए हैं।
3: डॉक्टर?
2: हाँ,
3: अब क्या होगा, डॉक्टर के सामने पोल खुल जाएगी।
2: चिंता न करो, चाचा जी हैं पक्के कंजूस, अच्छे डॉक्टर को लाने से रहे, फटीचर डॉक्टर आएगा, उसे धोखे में रखना मुश्किल नहीं होगा। अरे चाचा जी तो तीन तीन डॉक्टर ला रहे हैं। चाचा तू जल्दी से अंदर जाकर मूर्छित हो जा। चाचा जी, आप तीन तीन डॉक्टर ले आए?
1: हाँ बेटी, एक डॉक्टर है, दूसरा वैद्य और तीसरा हकीम। हाँ बेटी, क्या बात है?
2: चाचा जी, रूपा, पर ये तीनों मिलकर भी शायद बेचारी रूपा को ठीक कर पाए।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है।
4: मैं डॉक्टर बोगस चंद।
1: हाँ बोगस चंद, बिल्कुल बोगस।
4: मैं मर्ज के साथ मरीज को भी साफ कर देता हूँ।
5: और मैं हूँ कविराज
1: मूढ़ानंद,
5: नाड़ी देखकर पूर्व जन्म तक का रोग बता सकता हूँ। मेरा चेहरा देखकर ही

0: लोग पलायन कर जाता
1: है। भी किसी से कम नहीं हूँ, हकीम अहमद सोठवी का नाम बच्चा बच्चा जानता है। चाहूँ तो मुर्दे में जान डाल लूँ और चाहूँ तो जिंदा को
0: अरे भाई मैंने कहा अपने मुमिया में चुप बाद में बनिएगा, आप लोग पहले मेरी बेटी को देख लें।
2: क्या तकलीफ है आपको?
3: मुझे अपनी नाड़ी दिखाई है।
1: अरे मैं तो चेहरा देख कर ही बता सकता हूँ कि इसे कम समय
0: साबान के मेरी बेटी नहीं उसकी सहेली है।
2: आपने पहले क्यों नहीं बताया?
3: हमें धोखे में रखा। खैर कोई बात नहीं, हम सहेली की नाड़ी देख कर ही आपके बेटी का रोग बता।
1: तो मरीजा मरीजा आखिर है कहाँ भाई, मरीजा कहाँ है?
0: आप मरीजा पूछ रहे हैं जी? वो अंदर कमरे में है। इन लोगों को अंदर ले
4: जाइए।
0: वो आ गया है। क्या हाल है मेरी बेटी का?
2: हमने अच्छे तरह एग्जामिन कर लिया।
0: गुड गुड।
2: बॉडी में काफी फॉरेन मैटर है।
0: क्या बात हो जी? पापा मेरी बेटी एकदम देसी है। देसी
3: वायु के साथ साथ पित्त प्रकोप भी।
1: इससे पहले कि हम कोई दवा तजवीज करें, हम आपस में कुछ मशविरा करना चाहते हैं। क्यों डॉक्टर बोगस चंद?
2: आपने सेंट पर्सन सही बात कही है हकीम सोठवी साहब।
3: मैं भी आप दोनों से शत प्रतिशत सहमत हूँ।
0: अच्छा,
3: परामर्श के पश्चात ही निदान और उपचार हो सके।
0: ठीक है, ऐसा करिए आप लोग सलाह कर ले। बेटी को देख लो।
2: आजकल मौसम बहुत खराब है कविराज मूढ़ानंद जी।
3: ऐसे ही मौसम में पित्त प्रकोप और वायु विकार होता है।
1: हमारे यहाँ फिर भी तो मरीज नहीं आते।
2: अरे आपके यहाँ नहीं आते होंगे, मेरी डिस्पेंसरी तो खचाखच भरी रहती है।
3: अरे क्यों मिथ्या खत्म करते हो, जैसे मुझे ज्ञाते ही नहीं। हमारा औषधालय भी तो वही है, दिन रात बैठे बैठे मक्खियाँ मारा करते हैं।
2: और आप कौन सा तीर मारा करते हैं? छठे छमाए कोई दवा लेने आ जाता है।
3: देखिए डॉक्टर साहब, मेरा मुंह मत खुलवाइए।
1: अरे भाई,
3: हमारे यहाँ तो छठे छमाए कोई आ भी जाता है, आपके यहाँ तो कोई खटकता भी नहीं।
1: आपस में लड़ने से कोई फायदा नहीं है भाईजान। हाथ में शफा होनी चाहिए, शफा मरीजों की कमी नहीं रहती। हाँ एक बार का जिक्र है कि एक धोबी को बुखार आ गया, मैं देखने गया। आप यकीन मानिए साहिबान, मैंने गलती से दवा उसके गधे को खिला दी।
3: अच्छा,
1: अब धोबी चंगा हो गया।
2: तो ये क्यों नहीं कहते अहमद साहब कि आप जानवरों के हकीम हैं?
1: जानवरों के डॉक्टर होंगे आप? मैं तो जनाब नानी
2: गधों का इलाज करता हूँ।
3: लीजिए, आप लोग फिर लड़ने लगे।
0: आप लोगों ने क्या किया?
3: देखिए रक्त दोष के साथ साथ वायु विकार और पित्त प्रकोप है, किंतु चिंता की कोई बात नहीं। असाध से असाध रोग भी कविराज मूढ़ानंद के चंगुल से बचकर नहीं जा सकते।
0: तो जल्दी कोई इलाज बताइए।
3: मतलब आप निश्चिंत रहें, मैं रोगिणी का कायाकल्प कर दूंगा।
2: और आपकी जेब का भी कायाकल्प हो जाएगा सर जी। कविराज मूढ़ानंद ठगानंद के नाम से मशहूर है।
3: और अपनी भी तो कहो सेठ जी, डॉक्टर बोगस चंद के चक्कर में फंसकर आज तक कोई रोगी जीवित नहीं बचा।
1: हाँ सेठ जी, हम डॉक्टर साहब और कविराज दोनों वजह फरमाते हैं। दोनों ही जाहिर और ठग हैं।
3: हाँ बिल्कुल ठीक।
1: अरे खानदानी हकीम का जनाब सिर्फ मैं हूँ, खानदानी हकीम जी। हाँ ये देखिए, ये लीजिए एक पुड़िया सोंठ की, फौरन गर्म पानी के साथ खा लीजिए, पलक झपक पकते ही मर्द काफूर हो जाएगा।
0: मगर अकील साहब,
1: हाँ जी
0: मरीज मैं नहीं, मेरी बेटी है।
2: तो क्या हुआ? एक बार हकीम साहब ने गधे को दवा खिलाकर धोबी का मर्ज दूर कर दिया।
3: और धोबी ने प्रसन्न होकर वो गधा इन्हें पुरस्कार में दे दिया।
2: और उसी पर सवार होकर आजकल हकीम साहब दूर दूर तक मरीजों को
1: देखने जाते हैं।
0: सुनिए सुनिए तो मेरी बात, आप लोगों की नोक झोंक मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो रही है। मेहरबानी करके।

0: लीजिए अपनी फीस और आप भी लीजिए अपनी फीस और तशरीफ ले जाइए
1: के लिए दवा
0: और राहुल भी ला जाइए उन्होंने को भी ला जाइए और कहता आप जाइए चल जाओ चल जाओ आया आया आया आया आज मैं ना माकूलों से पाला पड़ा
2: चाचा जी क्या बताया उन लोगों ने
0: अरे वे लोग गधे थे दुलारी
2: मैं तो पहले कह रही थी
0: लगता है मेरी रूपा को मन कोई दूर कर नहीं पाएगा
2: चाचा जी आप कहें तो मैं एक डॉक्टर को ले आऊं
0: बेटी तू भी चलाएगी
2: एक नया डॉक्टर आया है उसके हाथ में बहुत यश है भगवान ने चाहा तो उसका हाथ लगते ही रूपा ठीक हो जाएगी
0: अरे तो जाना जा मेरा मुंह के पास नहीं है जाकर जल्दी से बुला ला और देख फीस पहले से तय कर लेना नहीं तो बाद में
2: मैं सब पक्का कर
0: रही हूं समझ आ रहा
2: तू अभी गई और अभी आई
0: अच्छा जल्दी जल्दी जल्दी आना रूपा को भी इसी वक्त बीमार होना था अरे भगवान सैकड़ों रुपया पर पानी फिर जाएगा न जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रही है ये
1: डॉक्टर बोगस सर ने बताया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है
0: हाँ भाई बेहोश पड़ी है
1: अरे भाई डॉक्टरों के चक्कर में पड़कर क्यों रुपए बर्बाद कर रहे हो मेरी बात मानो पल भर में रूपा को होश आ जाएगा
0: क्या करूं बताओ बताओ तुम्हें बताओ ना
1: उसके कान में धीरे से कहो बेटी देख तेरे लिए सुंदर सुंदर साड़ियां और जेवर लाया हूँ बस वो आंखें खोल देगी क्योंकि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है
0: अपनी बकवास बंद करो मैं जानता हूँ तुम क्यों बार बार साड़ियों और जेवरों का जिक्र कर रहे हो
1: अरे भाई मेरा भला क्या स्वार्थ हो सकता है इसमें मैं तो
0: तुम साड़ियों और जेवरों का धंधा करते हो नहीं बोलो करते हो नहीं
1: तो हूँ
0: तो अपनी दुकान का रहतिया माल मुझे भी आना चाहते हो मगर कान खोल कर सुन लो उधार चंद
1: हाँ, बोलो
0: मेरा नाम भी कृपण चंद है मैं तुम्हारी बात में फंसने वाला नहीं हूँ
1: लेकिन मेरी बात तो सुनो
0: कुछ नहीं सुनूंगा तुम दोस्त नहीं दुश्मन हो तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है जो बिना स्वार्थ के दौड़ धूप कर रही है चले जाओ यार जाओ
1: ठीक है अब मुझे क्या
0: हाँ हाँ जाओ जाओ दूर कहीं का मुझे उल्लू बनाने आया था अरे बाप रे आया आया आया अभी तक दुलारी नहीं आई देखो देखो देखो रूपा का क्या हाल है
2: चले आइए प्रेम बाबू चाचा जी अंदर हैं
3: मैं एकदम डॉक्टर लग रहा हूँ ना
2: मगर जरा सोच समझ कर बात करिएगा चाचा जी बड़े काइया हैं कहीं पोल खुल गई तो आपका पत्ता तो गोल होगा ही मेरी भी खैर नहीं रहेगी
3: मेरी एक्टिंग देखकर तुम तंग रह जाओगी लेकिन अगर रूपा ने गड़बड़ी कर दी
2: रूपा को मैंने सब कुछ समझा दिया है बस आप चाचा जी को किसी तरह की शक न होने दें बस
3: फिक्र ना करो तुम मैं बेटी के साथ साथ बाप का भी इलाज
0: अरे बेटी दुलारी दुलारी रूपा की हालत
2: अब ठीक हो जाएगी चाचा जी डॉक्टर साहब आ गए हैं
0: अरे ये डॉक्टर है
2: क्यों
0: एकदम छोकरा
3: श्रीमान जी
0: ये क्या इलाज करेगा
3: आप मुझे मामूली डॉक्टर ना समझें
0: अच्छा
3: मैं मनोचिकित्सक हूँ
0: ये क्या बला है जी
3: ना मैं सुई लगाता हूँ और ना मिक्सचर देता हूँ ना नब्ज देखता हूँ और ना आला लगाता
0: हूँ कैसे इलाज करते हो जी तुम
3: जी चेहरा देखकर श्रीमान जी मैं आपका चेहरा देखकर आपकी बेटी का मर्ज बता सकता हूँ
0: अच्छा
3: जी हाँ
2: हाँ चाचा जी इन्होंने मेरी मौसी की ननद की सास की छोटी लड़की का इलाज इसी तरह किया था अरे चाचा जी इनके हाथ में जादू है जादू
0: तब तो मेरी बेटी जरूर ठीक हो जाएगी डॉक्टर साहब चल कर उसे देख लीजिए
3: मैं मरीज के पास नहीं जाता श्रीमान जी
2: मगर वो तो बेहोश है
3: जी हाँ है नहीं थी मैं पिता का चेहरा देखकर बता सकता हूँ कि पुत्री को होश आ गया है जाकर मरीजा को ले आओ
2: अभी लाई अभी लाई
0: कमाल है वाह वाह वाह वाह आप तो डॉक्टर नहीं जादूगर है
3: जी नहीं भगवान का दास हूँ उसी की कृपा से कुछ सिद्धियाँ मिल गई हैं देखिए आपकी बेटी आ रही
0: है मगर डॉक्टर साहब
3: जी
0: चेहरा अभी भी पीला है आया आया कितनी दुर्बल हो गई है देखिए ऐसे बिल्कुल ठीक से चल नहीं पाती
3: सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा आप मुझ पर विश्वास रखिए
2: लीजिए मरीज आ गई
3: ठीक है मुझे इनसे बातें करने दीजिए अब आप लोग
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मेरे सामने ही बातें करो।

0: ये ठीक नहीं है, आपके सामने रूपा खुलकर बातें नहीं कर पाएगी।
1: लेकिन मैं अपनी बेटी को जवान डॉक्टर के पास अकेले नहीं छोड़ सकता।
2: डॉक्टर पर अविश्वास नहीं करना चाहिए श्रीमान जी।
1: श्रीमान जी, विश्वास तो मैंने कभी अपने बाप पर भी नहीं किया।
0: अच्छा चाचा जी, आइए हम लोग उस कोने में चलें, रूपा आपकी आंखों के सामने रहेगी।
1: ये ठीक है, जाओ डॉक्टर जाओ। देखो
3: मैं आ गया।
0: मेरी आंखें
1: डॉक्टर क्या बोल रहा है?
0: अरे चाचा जी, रूपा से मर्ज की बातें पूछ रहे हैं।
1: अरे मगर वो तो एकदम सच कर खड़ा है।
0: तो क्या हुआ चाचा जी? रूपा की आंखें देख रहे हैं, जुबान देख रहे हैं, डॉक्टर को सब कुछ देखना पड़ता है ना?
1: डॉक्टर साहब
2: जी,
1: डॉक्टर साहब कुछ पता चला?
2: मैंने इलाज शुरू कर दिया है।
1: अच्छा अच्छा,
2: आपको फर्क नहीं नजर आ रहा?
1: हाँ, पहले से तो ठीक लग रही है, चेहरे पर मुस्कान और ताजगी भी आ गई है। दुलारी बेटी, रूपा फोन पर ले जाना।
2: देखिए, दिमाग का असर जिस्म पर पड़ता है।
1: अच्छा
2: जी हाँ
1: जी।
2: अगर मन प्रसन्न है तो तन चंगा है, और मन में चिंता हुई कि शरीर को घुन लग जाता है। इसलिए मैं शरीर के रोग का निदान मानसिक स्थिति के आधार पर करता हूँ।
1: तो क्या मेरी बेटी का दिमाग खराब है?
2: जी हाँ
1: जी।
2: मैं इसी नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इनके दिमाग में शादी करने का
1: भूत है।
2: मैं गलत कह रहा हूँ?
0: जी नहीं प्रेम बाबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर चाचा जी शादी के खिलाफ हैं।
1: बिल्कुल
2: होना ही चाहिए, शादी बर्बादी का मूल है।
1: क्या बात है, तुमने तो मेरे मन की बात कह दी।
2: देखिए ना, मैं इसीलिए अब तक कुंवारा हूँ।
0: तब फिर इसका इलाज क्या है? क्या रूपा ठीक नहीं होगी?
1: डॉक्टर, क्या मेरी बेटी हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी?
2: जी नहीं, इसका भी अचूक इलाज है।
1: जल्दी बताइए, जल्दी बताइए।
2: इनके दिमाग में जो गांठ लग गई है उसे खोलना पड़ेगा।
1: अच्छा,
2: रोगी को प्रसन्न करने के लिए ये जरूरी है कि उसकी इच्छा पूरी कर दे।
1: क्या मतलब कि इसकी हम शादी कर दे? पापा पापा
2: जी नहीं जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, शादी करने की जरूरत नहीं है।
1: फिर क्या करें बताइए।
2: देखिए, शादी करने का नाटक तो करना ही पड़ेगा।
1: नाटक?
2: जी हाँ, मेरा मतलब है रोग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये जरूरी है कि मरीजा को ये यकीन हो जाए कि उसकी शादी की जा रही है।
1: आपका मतलब है कि?
2: हाँ हाँ, नकली शादी कीजिए, शादी का ढोंग रचाइए।
1: मगर डॉक्टर, ये कैसे मुमकिन है?
0: इसमें कठिनाई क्या है चाचा जी, नाटक ही तो करना है।
1: अरे बेटी, मगर नाटक के लिए नायक भी तो चाहिए। दूल्हा कौन बनेगा? बोलो, दूल्हा कौन बनेगा?
2: हाँ, ये समस्या।
1: वही वही ना
0: डॉक्टर साहब
2: जी,
0: आप चाहें तो समस्या हल हो सकती है।
2: वो कैसे?
0: आप ही दूल्हा बन जाइए। बोलिए चाचा जी, क्या राय है आपकी?
1: हो तो सकता है, लेकिन
0: अरे लेकिन लेकिन छोड़िए चाचा जी, जो करना है जल्दी कीजिए। रूपा अंदर पहुँच कर फिर शिथिल पड़ गई है।
2: देखिए, इलाज फौरन होना चाहिए, नहीं तो मरीजा हमेशा के लिए पागल हो जाएगी, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे ठीक नहीं कर सकती।
0: डॉक्टर साहब
2: जी,
0: आप कृपा करके हमारी विनती मान ले, दूल्हा बनकर शादी का नाटक रचा दे, मैं अभी रूपा को लाती
1: हूँ। बचाइए डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर, जैसे भी हो बचा लीजिए। डॉक्टर, आप चाहेंगे तो दूल्हा बनने की फीस अलग से दे दूंगा।
2: ठीक है, इंसानियत के नाते मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा।
1: गुड गुड।
2: रोगी का उपचार करना डॉक्टर का परम पुनीत कर्तव्य।
1: सही सही है, बिल्कुल सही।
2: नाटक सुखांत हो, मैं यही कोशिश करूंगा।
0: रूपा आ गई चाचा जी।
1: बहुत अच्छा बेटी, देखो नौजवान पसंद है, मैंने तुम्हारी शादी इसके साथ करने को।
0: क्या ये सच है पिताजी?
1: हाँ पसंद है।
0: तो आप शादी के लिए सहमति दे रहे हैं?
1: सच्चे दिल से बेटी, बेटी की खुशी में तो बाप की खुशी है।
0: मैं भी पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ।
1: अरे सुन दो, अरे सुन दो पिताजी, अरे पंडित जी की क्या जरूरत है, ये तो नाटक है नाटक।
0: मगर नाटक भी सही ढंग से होना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब के कंपाउंडर को पंडित बनाकर ले आती हूँ।
1: अच्छा ठीक है, जाओ जाओ। बेटी बेटी, अब तो तुम अपने पिता से नाराज नहीं होना?
0: नहीं, लेकिन
1: बेटी लाओ तो अपना हाथ। अरे हाँ, और भाई तुम भी अपना हाथ।
2: लेकिन वो
1: नाटक अच्छा जा

0: এই চল মাটি তো আলা বেটি হাত এই জিনু আপনে হাত সে মানে আপনি বেটি কা হাত তোমারে হাত দে দিয়া
1: হাত ছোড়না মত ইসি তরে পকড়ে রহো পন্ডিত জি ভি আ গয়ে হ্যায়
2: वाह जजमान वाह अरे बिना पंडित लठानंद के ब्याह कैसे हो सकता है
0: ये तो ठीक है
2: जजमान मैं कराऊंगा ब्याह
0: लेकिन पंडित जी अरे ये तो नाटक है
2: अरे नाटक तो सारी सृष्टि में हो रहा है जो है जजमान है कहाँ है ये संसार जो है ये रंगशाला है जिसमें हम आप सब अभिनेता है
0: तो जजमान वर वधु का हाथ आपने ही मिलवाया था ना
2: जी हाँ बिल्कुल
0: तब ठीक है तब ठीक है
2: तो बच्चा लोग अब तुम जरा इसके आस पास फेरे लगा लो जो है तो
0: मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरी
2: समझ लो यजमान हमारे भी पल गई सदा से भाग्यवती रहो सदा से भाग्यवती रहो हाँ यजमान अब सुनिए यजमान अब आप कन्या और वर को आशीर्वाद दे दें जो है और कहें कि ये जोड़ी जुग जुग बनी रहे
0: पंडित जी मेरी बात तो
1: चाचा जी आशीर्वाद में कंजूसी कैसी दीजिए ना नाटक पक्का होना चाहिए
2: पक्का होना चाहिए मैं आशीर्वाद देता हूँ
0: बोली
2: ये जोड़ी जुग जुग
3: भाई वाह यानी कि चट मंगनी और पट ब्याह भी कर दिया तुमने अरे और हमें खबर भी नहीं भेजी मैं अभी जाकर साड़ियां और जेवर
2: अरे उसकी जरूरत नहीं है भैया बैठो तुम अच्छा अच्छा जी मैं बोले तो अब हमारी रक्षणा तुमने जाए जो बैठो कैसी रक्षणा शादी तो
1: दे दीजिए दक्षिणा चाचा जी पंडित जी ने कैसे ढंग से ब्याह कराया है
2: और यहाँ तो चला रही है चलिए
0: जय हो जजमान की
2: आए ये क्या केवल मीठाने पैसे जो जो अरे राम राम जब जजमान एकदम पक्की शादी कराई है
0: कम से कम सवा पांच रुपए तो दीजिए जो
2: मैं अब एक कानी कौड़ी नहीं दूंगा ये समझ लीजिए और लेना हो तो लो नहीं तो उसे भी लौटा
0: अरे
2: अरे तुम नाराज क्या होते हैं जजमान मैं जाता हूँ श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे
4: अब हमें भी आज्ञा दीजिए चलो रूपा
2: तुम लोग कहाँ जाओगे भाई
1: शादी के बाद लड़की ससुराल जाती है पिताजी वहीं जा रहे हैं
2: ये क्या मजाक है देखा कल की छोकरी हमें बना रही है
3: अरे इसमें बनाने की क्या बात है अरे भाई जब शादी तुमने कर ही दी है किरमन चंद तो उसे विदा भी कर दो
2: कैसी शादी कैसी विदा अरे उदासन तुम नहीं समझते भाई तुम नहीं सोचते अरे ये शादी तो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो इलाज के लिए शादी का नाटक किया गया था देखते नहीं देखो देखो मेरी बेटी की तबीयत एकदम ठीक हो गई
3: इलाज नाटक भाई ये सब क्या चक्कर यानी कि
4: अब हमें क्या मालूम हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम दोनों वर्षों से एक दूसरे को प्यार करते हैं आज पहली बार मैं इनसे मिला और मैंने रूपा से शादी करने की इच्छा व्यक्त की इन्होंने कृपा करके अपनी सहमति दे दी और हमारा ब्याह हो गया चलो रूपा
2: अरे अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे अरे लोगो अरे लोगो अरे
3: हाँ भैया कृपण चंद गए
2: तो जाने तो क्या हुआ
0: उदासन के बकवास ये बिल्कुल बकवास है उदासन ये डॉक्टर था डॉक्टर मेरी लड़की को ले भागा मेरी लड़की को ले भागा उदासन मुझसे कहने लगा कि नए ढंग से इलाज करूंगा तुम्हारी से पूछ लो
2: तुम्हारी क्या बात है
1: कुछ नहीं पिताजी रूपा प्रेम बाबू को चाहती है
2: ठीक है
1: मगर चाचा जी शादी करने को तैयार नहीं
2: थे
1: इसीलिए हमें बीमारी और इलाज का नाटक करना
2: नाटक
3: भाई कृपण चंद आज बच्चा तुम अपने ही जाल में फंस गए

0: 都给我，哎呀呀呀呀，哎，一条边，我都这么大大下的感动，不然的么子干的爱哪去啊？我的妹妹跟啥啥，我的多乐本的别人干的干活吧？哎呀呀呀，哎呀呀，哎。अरे भाई उधार चल।
1: हाँ कृपाण चल।
0: अरे संभाल लो।
1: हो गया।
0: अरे चक्कर आ रहा।
1: चक्कर चक्कर।
0: अरे नहीं नहीं नहीं अरे चक्कर अरे चक्कर
2: पुराना मर्ज नया इलाज। ये नाटक अभी आप सुन रहे थे। मूल लेखक मोलियर, रूपांतरण एवं निर्देशन विनोद रस्तोगी। ये आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक रंगकर्मी और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से बातचीत। वामन केंद्रे को रंगमंच की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तकरीबन 50 दशक तक रंगमंच की दुनिया को अपनी कला से वामन जी ने सुशोभित किया। उनका ये सफर आज भी जारी है। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेरेंगे पद्मश्री वामन केंद्रे। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने, तो आइए सुने ये बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इसका पहला भाग।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और इस समय हमारे साथ हैं जाने माने रंग निर्देशक, थिएटर की दुनिया में जिनका बहुत अमूल्य योगदान है, पद्मश्री वामन केंद्रे साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: बहुत लंबे इंतजार के बाद आपका विविध भारती आना हुआ है
2: जी।
1: इन स्टूडियोज में आके कैसा महसूस होता है सर?
2: मैं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या है कि आकाशवाणी से जो पुराना रिश्ता है, मुझे लगता है कि मनोरंजन के जब साधन सीमित थे
1: जी,
2: उस समय की सारी यादें जो हैं, चाहे वो बीड़ आकाशवाणी केंद्र था, पहले तो नहीं था पर बाद में हुआ, तब का औरंगाबाद और अभी का छत्रपति संभाजी नगर में जो आकाशवाणी केंद्र था उससे काफी जुड़ा हुआ था मैं, फिर मुंबई आकाशवाणी केंद्र, फिर दिल्ली आकाशवाणी केंद्र। और एक ऐसा याद आता है कि नाटक के अलावा कभी कभी बीच में सिनेमा एक माध्यम था, नाटक एक था, और दूरदर्शन की शुरुआत भी नहीं हुई थी, तब से आकाशवाणी में आना जाना रहा है। और वही एक जो संस्कार है, चाहे वो छोटे छोटे जो भी कार्यक्रम हुआ करते थे, सुबह की धुन से उठना होता था और वो अभी भी कान में गूंजती हैं, तो आकाशवाणी का जो रिश्ता है वो मुझे लगता है कि बड़ा नॉस्टैल्जिक रिश्ता है। तो यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद कुछ बिना कैमरा
1: जी जी जी,
2: कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, कुछ बातचीत होगी, इसलिए बड़ा आनंद आ रहा है
1: जी। आप एक ऐसे गांव से आते हैं, वहां आपके बचपन में तब क्या रेडियो था?
2: रेडियो था, मैं जब छोटा था तब रेडियो था, पर ऐसा था कि गांव में सिग्नल्स नहीं आते थे। पर जैसे चौथी क्लास के बाद में, पांचवी क्लास में, थोड़ा सा गांव छोड़ के, बिल्कुल छोटा सा जो देहात है उसको छोड़ के, एक जिला परिषद के स्कूल में आया, उस

0: गांव का नाम था नेकनूर।
1: जी सुंदर नाम है।
0: हाँ, तो तब वो कहीं ना कहीं एक रेडियो भी बजता है पान पट्टी पे खासकर।
1: अच्छा, क्या बात है,
0: हाँ,
1: क्या बात है
0: और बहुत मशहूर प्रोग्राम तो था बीना का गीतमाला, तो वो
1: जी।
0: तो बिल्कुल दिल हाथ में पकड़ कर सुनते थे।
1: वाह,
0: और वो एक रेडियो होता था और उसके इर्द गिर्द 200-300 लोग बैठ के सुनते थे। तो ये सारी जो स्मृतियां हैं अभी भी आकाशवाणी की, और ऐसा लगा था कि ये माध्यम खत्म होगा टेलीविजन के आने की वजह से, इतने चैनल खुलने की वजह से, पर क्योंकि ये भी एक माध्यम है, एक शक्ति है, व्यक्त होने की शैली है, तो ये तो मालूम था कि ये खत्म नहीं होगा। फिर वो सारे रेडियो मिर्ची और सारे जितने भी चैनल वापस आ गए, और जब आप कैमरे के सामने नहीं होते हो, आप जर्नी में हो, कहीं टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो, कार में जा रहे हो, घर में हो, तो वो फिर दोबारा उसकी शक्ति जो है लोगों को पता चली, जिसको हम वाचिक अभिनय की शक्ति कहते हैं।
1: वाह
0: तो
1: जी,
0: मूल गांव में जहां मैं रहता हूं या मेरी फैमिली रहती है, वो वैसा ही है, पतरे के घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पहले तो झोपड़ियां होती थी, उसी में रहता था, मेरा बचपन तो उसी में गया।
1: तो पिता काश्तकार थे।
0: पिता मेरे, हाँ, किसान थे, तो इसीलिए वो जो संस्कार है वो किसानी के या खेती के हैं या उस माहौल के हैं। तो ऐसा ही गांव है अभी भी, मुझे लगता है कि 8-10 साल पहले एक सड़क जैसे तैसे गांव तक पहुंची है,
1: जी,
0: तो इसीलिए वो अभी भी घर तक बहुत सीधे तरीके से हम पहुंच नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो काली मिट्टी वाला एरिया है।
1: जी,
0: मतलब आप खोदते जाओ जमीन में तो 8-10 फीट कोई पत्थर नहीं दिखता, मिट्टी ही मिट्टी है। तो इसलिए बरसात में बहुत ज्यादा तकलीफ वाला है कि पैर फंसते रहते, आप एक पैर फंसाओ और दूसरा निकाल के आगे डालो, फिर पहला निकालो फिर दूसरा, इस तरीके से। वो जब हम स्कूल में भी जाते थे बगल वाले गांव में, मेरे गांव में एक शिक्षक की स्कूल था,
1: जी
0: उस स्कूल को कोई बिल्डिंग भी नहीं थी।
1: मैंने सुना है पेड़ के नीचे पढ़ते थे।
0: यस, तो जो हनुमान का एक मंदिर था, और
1: जी
0: वो बहुत पुराना पत्थर वाला, वो पत्थर भी वो क्या कहते हैं, बहुत तराशे हुए पत्थर नहीं होते थे, ऐसे ही हनुमान मंदिर के दीवार को लगाए और उसके सामने एक चबूतरा बनाया था ताकि लोग आके बैठे, और बहुत बड़ा इमली के पेड़ था उसके ऊपर,
1: जी
0: मतलब
1: जी
0: कई सैकड़ों साल पुराना। तो उसके नीचे उस चबूतरे पे हमारी स्कूल शुरू होती थी,
1: अच्छा
0: और जब बारिश आती थी तो बगल में एक चावड़ी बोलते हैं मराठी में,
1: जी जी
0: एक धर्मशाला टाइप थोड़ा सा एक पाइस पतरे की शेड था,
1: हाँ,
0: तो उसको दरवाजे नहीं होते थे, तो जो गांव की गायें हैं, भैंसे हैं,
1: घुस
0: बकरियां
1: जाते
0: हैं,
1: थे।
0: वो घुस जागते थे रात भर वहां, और फिर हमको सबको उसको हकाल के बाहर निकालते, सुबह 8-9 बजे स्कूल जब जाते थे तो वो सारा गोबर ये सब
1: साफ कर रहे हैं।
0: साफ करके उसके बाद बरसात पतरे के नीचे भरती थी। तो ऐसा था हमारा स्कूलिंग,
1: जी, तो
0: जिसको
1: यहां शिक्षा की असली ताकत समझ में
0: नहीं,
1: आती
0: मेरे
1: है।
0: समझ में आता है कि हम अब आज की तारीख में इतना स्कूल के बारे में सजग है, अवेयर है, पर पढ़ना हो तो आदमी कहीं भी पढ़ सकता है। मैं
1: बिल्कुल
0: अपने अनुभव से तो कह ही सकता हूं कि जिला परिषद का स्कूल है, एक शिक्षक आता था, वो बीच में एक नदी थी, बाढ़ आ गई तो शिक्षक उधर है, हम नदी के इस किनारे, शिक्षक उस किनारे, तो कुछ कम्युनिकेशन नहीं होता था, तो स्कूल नहीं होता था। पर बहुत अच्छे शिक्षक, एक जो शिक्षक आके गांव में रहे, उन्होंने एक शिक्षण का वातावरण बनाया। अब उनका मुझे नाम भी और सरनेम भी याद नहीं है, इतना पुरानी बातें हैं,
1: जी,
0: पर एक शिक्षक जब आपके जीवन में आता है तो इंस्पायर करता है। कहीं भी पढ़िए, मुझे लगता है बिल्डिंग से शिक्षण नहीं होता है, पढ़ाने वाले से शिक्षण होता है और पढ़ने वाले से शिक्षण होता है। इसलिए ऐसे छोटे से गांव में जहां कोई खेल का माहौल नहीं है, जहां कुछ नहीं है, पर एक बहुत अच्छी चीज थी कि किसान के घर में पैदा होने की वजह, एक तो खेती की वजह से एग्रीकल्चरल बेस है मेरे जीवन का, तो इसीलिए कौन से पौधे को क्या कहते हैं, कौन से पौधे को क्या फल आते हैं, ये सारा का सारा जो ज्ञान है उस समय हुआ। फिर जानवर पंछी, ये सारा का सारा माहौल हो मेरे संस्कार का, एक्सपोजर का हिस्सा है। दूसरी सबसे बढ़िया बात ये हुई कि जो हमारा फोक कल्चर है, लोक कलाएं जो हैं, वो किसान के घर के सामने जाए बिना, आंगन में जाए बिना उनकी रोजी रोटी नहीं चलती है
1: जी।
0: वो सुबह 4 बजे आने वाला जो कुड़मुड़िया बोलते हैं, 4 बजे आता है, 6 बजे वासुदेव आता है, फिर गोसावी आते हैं, डवरी आते हैं, गोंधली आते हैं, ये आता है, वो आता है। तो ऐसे सारे जितने भी कल्चर को कैरी करने वाले मुसाफिर है या थे, वो किसान के आंगन में आके वो नाच गाना जो भी है उसका भिक्षा मांग कर

0: वो अपना चरितार्थ चलाते हैं। तो हमारा सारा कल्चर जो है भारतीय वो एग्रीकल्चरल बेस्ड है,
1: बिल्कुल
0: वर्तूल से चलता है। किस समय दिवाली आएगी, किस समय पंचमी आएगी, कब होली आएगी, कब फलाना आएगा, ये एग्रीकल्चर में जब किसान को कब फुर्सत होती है उससे वो कैलेंडर बंधा हुआ है।
1: बिल्कुल,
0: तो उसका फायदा ये हुआ कि वहाँ कीर्तन है, भजन है, भारूड है। एक मेरे घर में ही था,
1: जी
0: मेरे एक चाचा तो कीर्तनकार थे और पिताजी को भजन और भारूड बहुत अच्छा लगता था। उनका मेन व्यवसाय तो ये था,
1: खेती
0: खेती था, पर वो अपने आनंद के लिए ये सारा करते थे। कभी भजन गाते थे एकादशी के दिन, कभी कहीं बगल के गांव में भंडारा लगा तो वहां बुलाते थे इन गांव वालों को, वहां जाके वो भारूड इनेक्ट करते थे, संतों की कविताएं। तो गाते भी थे, नाचते भी थे और इनेक्टमेंट भी था। तो ये टोटल मुझे लगा कि मेरे गांव में पैदा होने का जो बड़ा मेरे जीवन में है, मेरे सोच में है, वो इसीलिए कि ये सारा मुझे मुफ्त में मिला। ये संस्कार, लोक कलाएं, लोक संगीत है, लोक नृत्य है, चाहे तमाशा है, चाहे कीर्तन, जो भी है, मतलब एक मनोरंजन से प्रबोधन तक की जितनी भी लोक कलाएं हैं वो मुझे घर में बैठे बैठे देखने को मिली, उसकी अनुभूति मिली, उनका संस्कार मिला। तो ये छोटा गांव जो है वो मेरे जीवन का अहम हिस्सा है और इसीलिए मुझे मालूम है उस गांव का योगदान मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे करियर में क्या है। इसलिए मैं अभी भी गांव से जुड़ा हुआ हूं। मेरी माताजी गांव में रहती हैं, मेरे भाई, मेरे चाचा जी सारे गांव में रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, कहीं और जगह पे बिखरी हुई फैमिली है, लेकिन उस गांव से मेरा रिश्ता अभी भी कायम है।
1: क्या बात है, गांव और पढ़ाई लिखाई और ये सारी बातें हो रही है तो यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ ये गाना ठीक रहेगा, लिखोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। ये गाना सुनते हैं।
0: यस।

बोलो क्या होता है?

0: बोलो बात से क्या होता है?
1: बंदर
2: बहादुर
0: बनने के बाहर

0: क्या होता है?
1: डीटर।
0: तकदीर।

0: बामन केंद्र जी, सुंदर बात आपने कही कि एक पूरी लोक कलाएं किसान के घर उसके द्वार तक आती हैं और जो खेती का एक पूरा चक्र है उसके आधार पर हमारे त्योहार बंधे हुए हैं, कैलेंडर बंधा हुआ है और उस तरह से जीवन चलता है, उस तरह से पर्व और उत्सव चलते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा है और कलाएं उसमें अंतर्निहित है। भारूड आपके बचपन और आपके संस्कारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। आपने बताया पिताजी को भी बहुत ज्यादा वो लुभाता था, उससे जुड़ी यादें बांटिए।
1: नहीं, मुझे लग रहा है कि भारूड एक ऐसी कला है जो संतों ने जो कविताएं लिखी है, जो कविताएं ऐसी कविताएं जिनका इनैक्टमेंट भी हो सकता है, ऐसी कविताओं को भारूड कहते हैं। बहुरूढ़
0: जी,
1: जो लोगों में रूढ़ है, प्रसिद्ध है, ऐसी कविताओं का उसमें गाना भी है
0: जी,
1: नृत्य भी है और उसके बाद इनएक्टमेंट भी है। तो जैसे हम ये कह सकते हैं कि उसको एक आधे आधे घंटे का एक भारूड के ऊपर इनएक्टमेंट, आधा घंटा पौना घंटा जितनी कैपेसिटी है, क्योंकि होता तो सारा इम्प्रोवाइजेशन है, वहां कोई स्क्रिप्ट तो लिखा होता नहीं है। स्क्रिप्ट तो जो है वो संत एकनाथ ने लिखे भारूड है, जनाबाई ने लिखे भारूड है, तुकाराम जी ने लिखे भारूड है, ज्ञानेश्वर ने लिखे कुछ भारूड है। तो ऐसे जितने भी ये संत परंपरा है महाराष्ट्र की, मुझे लगता है उनकी कविताओं का एक तरीके से स अभिनय सादरीकरण है ये
0: जी।
1: तो वो और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग होता है, उसमें ह्यूमर भी है, उसमें मस्ती भी है, नाचने नचवाने वाला रिदम भी है, ताल भी है, लय भी है, सामाजिक जागृति भी है और प्रबोधन भी है। तो इसीलिए वो फॉर्म बहुत, और वो कंटेम्पररी है, उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है। मतलब इतना लचीला भी है वो, क्योंकि वो जो किसान है या मजदूर है या जो भी इनैक्ट कर रहा है वही, और उसमें इनफॉर्मेलिटी बहुत है, मतलब कोई औपचारिकता नहीं है। मतलब एक बड़ी बड़ी मूंछ वाला आदमी औरत का काम कर रहा है मान लीजिए, और चारों तरफ ऑडियंस बैठी हुई है, हस्बैंड और वाइफ के बीच का झगड़ा हो रहा है यहाँ पर, जो गीत से भी हो रहा है और गीत के बाद एक्चुअल संवाद में भी आ रहा है। तो औरत बनने के लिए क्या आवश्यक है, तो एक पल्लू चाहिए, तो किसी के किसी ने ओढ़ी हुई शाल है उसको खींच लिया, कमर में जो धोती पहना हुआ है उसने अपने कमर में एक उसका सिरा जो है खोच लिया और ऊपर से पल्लू, सर के ऊपर से पल्लू लगा लिया और एक बिंदी लगा ली या कुमकुम लगाते थे, हो गया वो औरत।
0: वाह,
1: बड़ी बड़ी मूछें है, इतनी लंबी दाढ़ी है, फिर भी उसको औरत मानते थे लोग।
0: यस,
1: और जो दूल्हा है वो गांव का है तो वो कोई लकड़ी ले ली है, लाठी ले ली है और कोई एक पगड़ी बांध ली कि हो गया वो दूल्हा। तो और वो दोनों के बीच में कभी गाते हैं, कभी संवाद प्रस्थापित हो रहा है, ह्यूमर हो रहा है, हजारों की तादाद में लोग आ गए, वो लोटपोट हो रहा है और उसमें से प्रबोधन तक पहुंच रही है बातें।
0: क्या बात,
1: मनोरंजन के द्वारा प्रबोधन तक पहुंचाना, जीवन के किसी एक वृत्ति प्रवृत्ति के सामने उसके ऊपर टीका टिप्पणी करना और हंसाते गुदगुदाते हुए ये सब करने वाला फॉर्म है, इसलिए कोई भी आदमी उसकी तरफ आकर्षित होगा। मेरे पिताजी को कई सैकड़ों भारूड याद थे और वो परफॉर्म भी करते थे, वो कोई उनका व्यवसाय नहीं, अपने आनंद के लिए परफॉर्म करते थे। जो मेरा गांव है दरडवाड़ी, वहां की भारूड मंडली बहुत फेमस थी, तो वो पंचक्रोशी जो है वहां 150 गांवों में कहीं भी ये भंडारा होता था तो भारूड मंडलियों को हर गांव के बुलाया जाता था, न्योता दिया जाता था। तो वो न्योते में ये जब जाते थे तो पूरा हंगामा करके आते थे।
0: वाह,
1: वहां एक तरीके का आपने एक भारूड गाया, सवाल जवाब जैसे होते हैं कुछ, हाँ, मनोरंजन की लोक कलाओं में, ऐसे भारूड के द्वारा एक दूसरे को तू हारेगा क्या मैं जीतूंगा या मैं हार जीतूंगा कि आप हारोगे,
0: जैसे
1: कवालियों के मुकाबले में भी होता है। तो ये सुबह जब सूरज उदय होता था तब तक चलता था।
0: ओहो हो, पूरी रात,
1: पूरी रात, और पूरा एक उस गांव के जो भंडारे में 4-5 हजार तो लोग आते ही आते थे। तो ये मुझे लग रहा कि इस फॉर्म ने मुझे बहुत आकर्षित किया और वो आज भी मेरे आकर्षण का केंद्र वैसे ही है।
0: बचपन में याद हो गए थे भारूड,
1: बहुत सारी भारूड मैंने प्रस्तुतियां कभी नहीं की, आई वॉज साइलेंट एडमायरर और साइलेंट ऑडियंस।
0: अरे वाह,
1: तब मुझे नहीं मालूम था कि मैं इस क्षेत्र में आऊंगा और कुछ हो जाएगा, ये तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे लगा कि अब उधर जाना चाहिए। जो मेरे अंदर का संस्कारित कलाकार है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं उछल मार रहा था या वो कुछ उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था, तो वो बारूद वाले

0: लेकिन कठिन थी पढ़ाई, आपने जैसा कि बताया अपने गांव से दूर जाके
1: माहौल नहीं था, पढ़ने का माहौल नहीं था। जो मेरे साथी थे, जैसे अब नेकनूर से सातवीं तक पढ़ लिया मैंने
0: जी,
1: और फिर आठवीं से आगे मेरे चाचा के साथ मैं रहता था एक रूम किराया करके नेकनूर गांव में। एक रूम में तीन चार बच्चे अपना उसको किराए से लेते थे, उसी में चूल्हा, उसी में ईंधन लाना, लकड़ियां लाना, उसी में चूल्हा जला के खाना बनाना, अपने कपड़े खुद धोना। तो इसलिए स्वावलंबन भी उस सारी जीवन शैली का एक हिस्सा हो गया। पानी भी लाना, सब कुछ आपको अपना अपना करना पड़ता था। तो खाना भी जब बनाते तो इकट्ठा, कोई सब्जी काट रहा है तो कोई रोटियां बेल रहा है, तो कोई तवे पे सेक रहा है, तो कोई सब्जी बगल वाले चूल्हे पे चढ़ा रहा है। तो इस तरीके का वो माहौल था। तो मेरे चाचा जी मेरे साथ थे, तो उनका वहां एसएससी खत्म हो गया। अब उनको आगे कॉलेज में जाना था, तो बीड जो जिला है हमारा, वहां पर उनको जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास यहाँ पढ़ने के खत्म हो गई कक्षा। तो फिर ऑब्वियसली मैं उनके साथ चला गया, क्योंकि चाचा साथ में है

0: तो थोड़ा सा ये भी सुकून भी था घर वालों को भी। तो 8वीं से फिर मैं बीड जिले पे आ गया, और जिले पे आने का मतलब ये है कि थोड़ा सा माहौल भी बड़ा बन गया, जिले का स्तर है तो एजुकेशन भी थोड़ा अलग किस्म का था, थोड़ा बड़प्पन या एक दृष्टि का विस्तार होने की जो संभावनाएं बनती है छोटे गांव से थोड़ा अर्बन एक टाउन में जाओ, टाउन से थोड़े बड़े टाउन में जाओ। तो फिर बीड में मैंने 8वीं से लेके ग्रेजुएशन तक मैं बीड में ही पढ़ता रहा।
1: जी, एक नई दुनिया खुली
0: एक
1: बीड
0: नई
1: शहर में
0: दुनिया
1: आने के बाद।
0: खुली। एक क्या होता था कि यहाँ साइकिल ही बहुत ज्यादा एक ग्लैमरस चीज होती, किसी के पास साइकिल है तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो साइकिल से अब रिक्शा तक आ गए हम लोग। अरे रिक्शा भी होती है, कार भी होती है, पूरे जिले के गांव में 3-4 कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी। पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप

0: के गांव में तीन चार कार होती थी, वो बड़े अमीर लोगों के पास होती थी, पर दूर दराज की गाड़ियों का आना जाना, लोगों से मिलना मिलाना, फिर एक क्या कहते हैं एक्टिविटी में हिस्सा लेना, तो जहां पर आप 200-400-500 बच्चों के साथ पढ़ते थे, अब अचानक मेरे कॉलेज में उस समय 4,500-5,000 स्टूडेंट थे।
1: ओहो,
0: दूसरा कॉलेज था एक हमारे ही बीड शहर में बलबीम कॉलेज, मैं पढ़ा हूँ नवगण महाविद्यालय में, वहाँ एक 4-5 हजार थे। तीसरा एक बंकट स्वामी महाविद्यालय था, उसमें 2-3 हजार गांव-गांव से आए और शहर के लोग पढ़ते थे, विद्यार्थी पढ़ते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जिला स्तर पर आप जब आते हैं। तो मेरा हमेशा विजन जो बढ़ता रहा, छोटे 30-35 मकान के गांव से फिर 2-3 हजार वाले मकान के शहर में, छोटे से तालुका प्लेस भी नहीं था, अभी भी वो तालुका नहीं हुआ है, पर उस वाले शहर पे, वहां से फिर डिस्ट्रिक्ट। तो आपका जितना शहर का आकार बढ़ता है उतनी आपकी सोच का भी आकार बढ़ता है।
1: बहुत सही बात है।
0: उसके बाद फिर औरंगाबाद संभाजीनगर चला गया यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो और भी बड़ा है, पांचों जिलों का जो 5 जिले थे मराठवाड़ा में, तो वो कमिश्नर ऑफिस था वो
1: जी,
0: तो वो और भी बढ़ गया, वहाँ यूनिवर्सिटी भी थी, तो यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी बात होती है। 300-400 एकड़ में आप इतनी सारी बिल्डिंगें, इतने सारे डिपार्टमेंट और पढ़ने पढ़ाने का बहुत बड़ा माहौल बन जाता है
1: जी।
0: कई सारे कॉलेजेस थे वहाँ, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि जो आपके पढ़ने का भी विस्तार होता है, सोचने का भी विस्तार होता है, और जीवन को आप जो सामना कर रहे हैं उस सामना का भी विस्तार होता है, तो जीवन अनुभव का भी तो विस्तार होता है
1: एकदम।
0: तो ये ऐसा वो माहौल था
1: जी। यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।

0: जब आप बीड शहर में आ गए अपने चाचा के साथ, चाचा की अपनी पढ़ाई, आपकी अपनी पढ़ाई, वहाँ सिनेमा और रंगमंच की दुनिया से किस तरह का संपर्क बना देखने सुनने और समझने का?
1: नहीं, क्योंकि बीड नेकनूर में तो ये सारा कुछ नहीं था, जो गैदरिंग में एक आध छोटा मोटा नाटक होता था वही उसी में हिस्सा लेता था मैं। पर बीड में आने के बाद, बीड एक शहर बड़ा है तो दो तीन सिनेमा हॉल थे, तो सिनेमा देखने की शुरुआत हो गई। कोई एक रिश्तेदार आते थे और वो जब भी दो तीन महीने के बाद आते थे, हम सारे बच्चों को वो पांच आने का सिनेमा का टिकट निकाल के हम सब सिनेमा देखते थे।
0: वाह वाह, कुछ फिल्में याद है?
1: बहुत शुरुआती तौर पर याद है, इतनी सारी फिल्में याद है, जितने भी हमारे हीरो हैं उस समय के पॉपुलर हीरोइंस हैं, हेमा मालिनी के सिनेमे देखे हैं, शर्मिला टैगोर के देखे हैं, रेखा जी के देखे हैं, कई मतलब सिनेमा के नाम जंजीर देखा हुआ है, शोले देखा हुआ है, उसके पहले जितेंद्र जी के सिनेमा देखे हुए हैं, अपने ये जो पहलवान
0: दारा सिंह
1: के सिनेमे बहुत देखे हुए हैं। तो ये मतलब ऐसा होता था कि साल में पांच छह सिनेमा तो देख ही लेते थे।
0: कितना रोमांचक था ये?
1: बहुत रोमांचक। वो सिनेमा का टिकट निकालना अपने आप में एक जो कल्पना से परे शर्त होती थी, वो टिकट पाना,
0: वाह वाह,
1: वो झुंड जो पड़ता था उस छोटी सी खिड़की में,
0: हाँ, हाँ।
1: अरे बाप रे बाप, कोई किसी के ऊपर कंधे पर चढ़ रहा है, कोई जूते से सर पे खड़ा है, कोई उल्टा खड़ा होके, कोई बहुत स्किलफुल लोग होते थे वो टिकट निकलने वाले। तो ये सारा जो माहौल है वो देखा है। उसके बाद जो गैदरिंग में नाटक होते थे, खासकर कॉलेज में, मेरे स्कूल में कोई नाटक नहीं होता था
0: जी,
1: तो वो एक बहुत ज्यादा गंभीर पढ़ाई वाला था, पर वहां पर दूसरा माहौल था। वो एक जो माहौल में एक किस्म की जो मूवमेंट चली थी उस समय, विद्यार्थियों की समस्याओं के आंदोलन हुए, किसानों की समस्याओं के आंदोलन हो गए, वो मुझे लगा कि वो सारे आंदोलन का हिस्सा मुझे बनाया गया
0: जी जी,
1: क्योंकि मेरी तरफ देखने के बाद चुलबुला था, थोड़ा भाषण वाषण करता था, जो नेकनूर में ही स्कूल में पढ़ता था तभी से वो शुरुआत हुआ था।
0: तब तो आपने एक्टिंग भी की थी?
1: तब भी एक बार एक एक्टिंग की थी मैंने, जहां एक ही बार नाटक हुआ था तो उसमें एक्टिंग भी की थी।
0: लड़की बने थे?
1: लड़की बना था मैं, और अब वो नाटक का नाम तो याद नहीं, एक छोटा एकांकी नाटक था, पर उसमें लड़की बना था और मेरे से मोटी लड़की का फ्रॉक मैंने लाया था और सेफ्टी पिन लगाया था, तो सेफ्टी पिन डायलॉग बोलते बोलते खिसक गया।
0: ओ,
1: तो पूरा नाटक जो है वो कहीं और चला गया
0: जी।
1: तो ऐसा भी एक वो अनुभव था। बीड में आने के बाद मुझे लगा कि वो जो माहौल मुझे दूसरा मिला, सोशल जागरूकता का माहौल मिला,
0: बड़ी आसानी से आप राजनीति में जा सकते थे?
1: हाँ, जा सकता था मैं, और वो भी एक ऑप्शन मेरे सामने था राजनीति में जाने का। पर वो कॉलेज में आते आते ऐसा लगा कि जो राजनीति हमारी मोड ले रही है उस समय की, जो अंगड़ाई ले रही है, वो मूल्याधिष्ठित राजनीति नहीं रहेगी। बहुत अनुभव किया उसका और ऐसा लगा कि ये कुछ सही नहीं है। वो मैंने इसलिए जानबूझ के छोड़ा कि अब यहां जाना सही इंसान का काम नहीं है, पर जाना जरूर चाहिए। वहां की राजनीति में ऐसा लगा कि सही इंसानों का होना बहुत जरूरी है, सेंसिटिव लोगों का होना जरूरी है। वहां नहीं है, ऐसा नहीं है, जो जाते हैं उसके बावजूद वो बदलना पड़ता है, वो दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का। तो इसीलिए मैंने चुना कि कहां पर जाके हम अपना करियर बना सकते हैं। जो मैं ये आंदोलन से काम कर रहा हूं, गरीबों के लिए लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं, ये मुझे निरंतर आगे चलाना था। तो मुझे लगा कि नाटक का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट हजारों भाषणों से ज्यादा होता है
0: जी।
1: सिनेमा का इम्पैक्ट है वो कई कई गुना ज्यादा होता है, नाटक से भी कई गुना ज्यादा होता है। पर नाटक जो बहुत अच्छा नाटक अगर आप करते हो तो उसका परिणाम इतना प्रभावी होता है कि देखने वाला अंतर्मुख हुए बिना घर नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने चुना कि नहीं, जो करियर करना है। जब कॉलेज में आया, दो तीन साल गैदरिंग में काम किया, और सेकंड ईयर में आया तो मैंने फुल लेंथ प्ले में लीड रोल किया, मुझे दिया गया। तो मैं तो इतना छोटा सा था, और ढाई आकर प्रेम का वो नाटक हो रहा था गैदरिंग के लिए, और उसमें मेन रोल था प्रोफेसर बल्लाड़ का। अब वो रोल निभाने के बाद ऐसा लगा कि यार ये कुछ जादू है इस सारी प्रोसेस में। तो तय किया कि नहीं, नाटक में जाऊंगा तो मैं एक तो सेंसिटिव रह पाऊंगा, मैं अपनी हिसाब से जिंदगी जी पाऊंगा, अपनी सोच के नाटक करूंगा, जिनकी मैं आवाज

0: बनना चाहता हूं, चाहे वो वंचित है, चाहे वो गरीब है, जो समाज के सीढ़ी के आखिरी सीढ़ी पे भी जिनको जगह नहीं है, ऐसे लोगों की आवाज बनने की संभावना इसमें ज्यादा है। तो इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये चुनाव जो किया मैंने माध्यम का, वो सोच समझ के किया। और इसीलिए फिर वहां जाना ही है नाटक में, तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे।
1: जी,
0: तो इसीलिए फिर औरंगाबाद शिफ्ट हो गया और वहां एक साल ड्रामा डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। वो इसीलिए कि मुझे अंतिम में जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही था, तैयारी करके जाना है मुझे। कोई इंटरव्यू में जाऊंगा तो वापसी का टिकट के पैसे लेके नहीं जाऊंगा,
1: वाह,
0: ये मन में तय किया था। और वाकई जब पहली बार इंटरव्यू दिया तो उसी इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और वो भी टॉप 4 में सेलेक्ट हो गया। वो टॉप 4 में इसलिए मुझे पता चला कि मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिली।
1: जी
0: अगर वो नेशनल स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो सेलेक्ट होने के बाद भी मैं एनएसडी नहीं जा पाता, क्योंकि मेरी जो आर्थिक परिस्थिति तब भी थी वो इतनी ही, क्या कहती थी, कि बहुत गरीब किसान का बेटा था, तो इसीलिए वो संभव नहीं था वहां जाकर वो सारा खर्चा करना। पर वो स्कॉलरशिप मिली, इसीलिए आज मैं आपके सामने बैठ के बातें कर रहा हूं।
1: क्या बात है। बहुत लंबी यात्रा हमने आपकी देखी, यहां तक कि यहां एक गाने की जगह बनाते हैं। हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब आप सिनेमा से परिचित हो रहे
0: जी जी
1: थे।
0: जी
1: आपने
0: जी
1: बताया कि इतने तरह की फिल्में देखी।
0: मुगले आजम देखी,
1: वाह, मुगले आजम का गाना सुनते
0: मुगले आजम
1: हैं,
0: का गाना सुनते हैं,
1: जब प्यार किया तो डरना
0: डरना
1: क्या।
0: क्या, क्या बात है।

0: मुगले आजम का ये गाना प्यार की बात करता है और कॉलेज के जमाने में लड़कों को किसी न किसी तरह से प्रेम तो हो ही जाता है। आपके साथ क्या मामला था?
1: बहुत हुआ, उसमें क्या है, शर्माने की क्या बात है। पर मैं फोकस्ड बहुत था
0: जी,
1: क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मैं तो लीडर था
0: जी,
1: तो हमेशा 10-20 लोगों के बीच में रहने की आदत थी। तो इसीलिए वो वाला जो सिलसिला था, बहुत सारी लड़कियों से बातें होती थी, पर एक पर्टिकुलर फोकस हो के किसी के प्यार में पड़ो, वो वाला माहौल लगा कि ये ठीक नहीं है। इसके लिए और बहुत सारी जिंदगी पड़ी है वो करने के लिए। तो मुझे जाना तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था। आकर्षण का केंद्र तो आप वैसे भी होते हो, अच्छा बोलते हो, मंचों से अच्छा बोलते हो, आपको मॉब मैनेज करने आता है, आपको ह्यूमन मैनेजमेंट पता है, तो आप लीड में हो तो अपने आप में लोगों के आकर्षण का केंद्र तो आप बन जाते हो। पर आपके आकर्षण का केंद्र कोई इंडिविजुअल बनने की वो क्या कहते हैं वो समय नहीं था, इसलिए मैं वो सारा पार करके फिर सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच गया।
0: क्या बात है। लेकिन इस दौरान आपने जो बुनियादी नाटकों की दिशा में जो काम किया, जो बीड़ में या औरंगाबाद में जाके किया, उसके बारे में बताइए।
1: नहीं, बीड़ में क्या था कि हम ये नाटक करते थे, कौन सा, गैदरिंग के नाटक
0: जी जी जी, गैदरिंग का मामला।
1: उसके बाद हमारे एक मित्र श्रीराम बड़े ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सेलेक्ट हो गए
0: जी।
1: तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, शायद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो वो सेलेक्ट हो गए वहां। तो उनका जो छुट्टियों में आना जाना होता था, तो हम उनसे सीखने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते थे। मैं लीडर था तो कॉलेज में समर वेकेशन में 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की कार्यशालाएं आयोजित करते थे। फिर उसका कोई एक नाटक होता था, वो फिर अभी जुलूस मुझे याद आ रहा है, नाटक हमने किया बादल सरकार का
0: जी,
1: वो जुलूस के शहर भर में शो किए।
0: वाह,
1: अब ऐसा लगता है कि वो कितने लोगों को समझ में आ गया, रास्ते के आदमी को तो ठेठ बात होनी चाहिए। तो पथनाट्य भी बहुत सारे किए। तो इस तरीके के वो छुट्टियों के माहौल में एक दो नाटक तो करते ही थे। तो गंभीर नाटक क्या होता है, उसकी तरफ जो खिंचाव या आपका आकर्षण का केंद्र बना। गैदरिंग के नाटक से एंटरटेनिंग नाटक क्या होते हैं, उसका संस्कार अपने आप मिलता रहा
0: जी।
1: जो शिक्षक थे उस समय के, पढ़ाने वाले नाटक या डायरेक्ट करने वाले, उन सबसे जो भी उनका आकलन था, वो बगल वाले जो कॉलेज होते थे उनके नाटक देखने जाते थे, तो वो क्या हमसे बेहतर करते हैं, ये तुलनात्मक अध्ययन भी होता रहा। तो पथनाट्य से लेके मनोरंजन का नाटक में बीड़ में ही समझ गया।
0: वाह वाह।
1: फिर वहां से मैं औरंगाबाद जब गया तो मुझे किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन होना था, जहां पर राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए नाटक होता था। पर मेरा टेम्परामेंट वो राज्य नाट्य स्पर्धा वाला भी नहीं था, और उनका अपना अपना ग्रुप में लोग होते थे तो उनके साथ वो अपना काम करते थे। तो अचानक वहां एक दिन पता चल गया कि यहाँ दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत हो रही है।
0: ओ ओ ओ।
1: तो उनके कुछ मित्रों से मेरी जान पहचान हुई थी, मूवमेंट में था मैं, स्टूडेंट एक्टिविटी में था, तो जान पहचान तो हुई थी। तो एक हमारे साहेबराव गायकवाड़, ये साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे वहां के अंबेडकर कॉलेज में या मिलिंद कॉलेज में, उनसे राबता था, आना जाना रहता था उनके घर में। तो एक दिन पता चला कि वो एक नाटक कर रहे हैं वहां, दलित साहित्य सम्मेलन पहली बार हो रहा है और जो मिलिंद कॉलेज के परिसर में हो रहा है, और उसमें दत्ता भगत लिखित आवर्त नाम का नाटक करना है और वो हीरो की तलाश में है। तो मुझे बुलाया गया और मुझे देखते ही अविनाश डोलस प्रोफेसर थे वो भी, और मेरे ही गुरु त्र्यंबक महाजन
0: जी,
1: वो पढ़ाने आते थे तो वो मुझे जानते थे कि ये बच्चा रॉ है पर बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो रोल दे दिया और मैं वो रोल निभाया और उसके 10-15 शो हमने किए।
0: वाह।
1: तो दलित थिएटर मूवमेंट की शुरुआत जो हुई, उस मूवमेंट में एक काइंड ऑफ फाउंडर मेंबर के हैसियत से या एक एक्टर के हैसियत से मुझे मौका मिला। उसके बाद दलित थिएटर ने ही दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नाटक खेला, थांबा राम राज्य तय,
0: ओहो
1: रुकिए राम राज आ रहा है। ये प्रकाश त्रिभुवन ने लिखा हुआ नाटक है, मेरे मित्र थे तो उन्होंने लिखा हुआ नाटक है, उसमें फिर बड़ा नाटक था ये लगभग, तो उसमें फिर लीड रोल करने का मौका मिला। तो ये दो जो फाउंडेशन प्ले हैं दलित थिएटर मूवमेंट के, महाराष्ट्र के और खासकर औरंगाबाद के, तो उस मूवमेंट का मैं हिस्सा बन गया और उस थांबा राम राज्य थे बहुत पॉपुलर हो गया वो नाटक
0: जी।
1: वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर तक जो फेस्टिवल होता था, नेशनल फेस्टिवल, वहां तक पहुंचा। वो पीटर ब्रुक ने देखा।
0: गजब गजब।

0: हाँ, और पीटर ब्रुक ने उस नाटक की इतनी तारीफ की, दूसरे दिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आकर उनका व्याख्यान रखा था। तो उसके पहले दिन वाले शो में मैं लीड रोल कर रहा था, वो भी स्पेशल परमिशन लेके एनएसडी में, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था।
1: अरे
0: हाँ, तो अचानक पीटर ब्रुक उस नाटक की तारीफ कर रहे, तो लोगों को लगा, अरे बाप रे, हमारा ही क्लासमेट उसमें तो कल लीड रोल कर रहा था, उन्होंने भी नाटक देखा था। तो इस तरीके से उस नाटक की तारीफें हुई। फिर यहाँ मुंबई में भी छबीलदास थिएटर में भी उसके शो हुए, क्योंकि हमें लगा कि ये केवल मराठवाड़ा तक रहना नहीं चाहिए, अलग अलग जाके उसको परफॉर्म, तो ये परफॉर्मेंस करते रहे। पर जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सिलेक्शन हो गया, उसके बाद फिर मुझे उस नाटक को दुर्भाग्य से छोड़ना पड़ा।
1: जी
0: फिर और वो नाटक चलता रहा, किसी और ने रोल कर लिया, पर उस नाटक में उस संवेदना ने मुझे एक और एक मौका दिया कि जो वंचित है, जो दलित है, वो उस आदमी की आवाज बनना पड़ेगा थिएटर को, या कहीं भी, या गरीब किसान है, गरीब मजदूर है। तो ये मोमेंट में जो जो मैं कर रहा था, सौभाग्य से मुझे उसी मंच पे एक कदम रखने का मौका मिला, जहां और किसी की आवाज बनकर आप उस माध्यम के द्वारा लोगों के मन में और क्या मस्तिष्क पे, या ये नाटक का अनुभव ले जा रहे हो और उनको अंतर्मुख करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये औरंगाबाद का दौर रहा। फिर जो छुटपुट छोटे मोटे नाटक एकांक किया, क्लास में किया, यहां किया, वहां किया, ये सारा अनुभव लेकर मैं दिल्ली पहुंच गया।
1: जी, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: क्या बात है।

0: एनएसडी की एडमिशन की जो प्रोसेस थी, क्योंकि आप बहुत छोटे बैकग्राउंड से आ रहे थे और
1: जी
0: एनएसडी राष्ट्रीय मुकाबला होता है,
1: जी
0: तो वहां आपने अपनी एक बहुत जोरदार उपस्थिति उस परीक्षा में दर्ज की,
1: जी
0: वो कैसे हुआ?
1: एक तो हमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा

0: के बारे में मालूम हुआ था।
1: जी
0: एक तो हमारा ही सीनियर श्रीराम बड़े वहां सेलेक्ट हुआ था, उसके दूसरे साल शिवदास घोड़के
1: जी
0: वो सेलेक्ट हो गए, तो दोनों मेरे मित्र थे। और तीसरे साल मैं सेलेक्ट हो गया। मैंने एक साल
1: जी
0: नाट्यशास्त्र से लेके जितना भी नाटक के ऊपर लिखा गया वो सब पढ़ा। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के, तब की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और अब की डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है।
1: जी जी
0: मैं हर दिन शाम को क्लास होता था क्योंकि इवनिंग डिपार्टमेंट था, तो दिन भर क्या करे, तो दिन भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था और हर दिन एक नाटक पढ़ता था। ये कसम खाई थी मैं, जब तक यहां रहूंगा मैं हर दिन एक स्क्रिप्ट पढ़ूंगा।
1: तो सैकड़ों नाटक पढ़ लिए।
0: तो मैंने तो, मुझे लगता है उस पूरे 8-9 महीने के दरमियान 200-250 नाटक तो पढ़ लिए। मान लो किसी वजह से आज कोई मित्र आ गए, कहीं सिनेमा देखने गए, कोई नाटक देखने गए, कुछ हुआ और आज नाटक नहीं पढ़ पाया, तो दूसरे दिन दो पढ़ना।
1: वाह वाह वाह।
0: और उसके साथ साथ फिर जितना भी सैद्धांतिक पक्ष था नाटक का, चाहे वो मराठी की किताबें, मराठी में जो आए आर्टिकल्स है, हिंदी में जो आए, अंग्रेजी में जितना समझ में आता था, वो सारे आर्टिकल स्टैनिस्लावस्की से लेके जितनी भी थियरीज है वो सब पढ़ ली।
1: जी
0: समझ में कितनी आई वो बाद में पता चला, पर पढ़ तो लिया। और दुनिया भर किस किस्म का थिएटर होता है, नाटक होता है, क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में बहुत सारे जो मैगजीन आते थे, इंटरनेशनल भी आते थे, हमारे यहां भी नाट्य दर्पण निकलता था, कोई भरत शास्त्र निकलता था मराठी के भी, ये सारा पढ़ने का मौका मिला।
1: तो एक सॉलिड बैकग्राउंड लेके गए,
0: एक सॉलिड बैकग्राउंड। और प्रैक्टिकली भी आप फोक से तो थे ही, फोक का था आपके ऊपर। और कॉलेज में 2-3 साल जो आइटम्स हमने किए, जैसे अम्बेसा गोंधड़ एक आइटम किया था मैं और श्रीराम बड़े, वो इतना पॉपुलर हो गया कि साल भर का जो हमारा शिक्षण का खर्चा उस एक आइटम से निकलता था। लोग एक्चुअली
1: पैसे फेंकते थे,
0: इतने पैसे फेंकते थे।
1: वाह।
0: एक बार तो जो बड़ा कॉइन फेंका किसी ने, बड़ा रुपये का कॉइन होता था उस समय, वो ढोलकी के
1: पेट में लगा।
0: हाँ, पेट में लगा और वो ढोलकी फट गई।
1: अरे बाप।
0: उसके बाद भी वो रुका नहीं है। तो ऐसी सारी, कोई 10 रुपया दे रहा है। मुझे याद है कि वहां तब हमारी जो कॉलेज की और खासदार रही है, एमपी रही है, थी वो केशर भाई, केशर काकू, हम उनको काकू बोलते थे। तो उन्होंने 100 रुपये का जो नोट दिया हमको, इतना बड़ा लंबा नोट था।
1: हाँ।
0: अब वो 100 रुपया तो बहुत हो गए हमारे लिए, एक आदमी के लिए, एक साल के लिए।
1: जी।
0: उससे ज्यादा खर्चा होता नहीं था। तो ये सारा का सारा, तो वो भी एक अनुभव था। और ये सारा अनुभव लेके आप, और फिर मैंने आषाढ़ का एक दिन का मैं सेट डिजाइन किया था, उसका मॉडल भी लेके गया,
1: मॉडल भी
0: साथ में लेके गया, फिर कॉस्ट्यूम प्लेट्स कुछ की थी वो भी लेके गया, ताकि आप दिखाएं कि मुझे बाबा बहुत सारा है और सीखने की इच्छा है और आगे बढ़ाई है। तो वो सब देखने के बाद मुझे लगा कि कारण जी जो डायरेक्टर थे, बीवी कारण जी जो आगे भी मेरे गुरु रहे, तो वो थे। और मेरा इंटरव्यू बड़ौदा सेंटर में हुआ, तब मुंबई सेंटर हुआ करता था, पर वो उस समय पता नहीं किसी और कारण वो बड़ौदा में शिफ्ट हो गया। तो बड़ौदा में मेरा इंटरव्यू हो गया और उसके एक 15-20 दिन के बाद चिट्ठी आ गई कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप फलाना तारीख को आके ज्वाइन हो जाइए, क्लासेस शुरू हो रहे।
1: वाह क्या बात है। मैं इस पूरी यात्रा से जुड़ी एक बहुत दिलचस्प बात पूछने वाला हूँ, पर यहाँ एक गाना सुनना है।
0: यार रहमान का लगाइए।
1: ठीक है, दिल से गाना सुनिए, दिल से।

0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने रंगकर्मी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूर्व निदेशक और शिक्षाविद पद्मश्री वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत।
1: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा की कार्यक्रम रिले कर रहे थे FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंड्रा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चिनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, जोरी, बिल्मा, रघुपुर, ढेकी डोली, एरन, नवा पारा, गिरहुल डीह के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, कुंजारा, श्रीटोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, उपका पानी, जाम चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 102 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कोरबा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पसरखेत, घोटमार, बताती के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़, घरघोड़ा, तमनार और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 68 है। ये बंगूरसिया, धुमा बहाल, पूंजी पथरा, तराई माल, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठा

0: शिकारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये ताल दादर अचानकपुर नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। महासमुंद वन मंडल के महासमुंद में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये केसरडी नांदबारू सुकुलबाय खिरसाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा नारी पानी कोनारी बुड़ार जिडार पायलीखंड बेसराझर कोदोमाली तौरेंगा कुकरार ताराझर खोलापारा छिंदौला लूठापारा फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म कल होना हो से। स्वर दिया है अलका याग्निक और शान ने, जावेद अख्तर की रचना है और शंकर एहसान लॉय का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म दबंग से। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजें हैं, शब्द रचना है जेलिस शेरवानी की, साजिद वाजिद का संगीत है।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आप सुन रहे हैं फिल्म अर्जुन पंडित का ये गीत, स्वर दिया है हरिहरन और अलका याग्निक ने, जावेद अख्तर की बोल हैं, दिलीप सेन और समीर सेन का संगीत है।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए।

0: पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
1: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म हमारी अधूरी कहानी से। स्वर दिया है अमी मित्रा ने और कुणाल वर्मा की रचना है और संगीत अमी मिश्रा का है।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का आखिरी गीत लीजिए सुनिए, फिल्म दरार से अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ें हैं, राहत इंदौरी की बोल है और अनु मलिक का संगीत है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुनें।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में सभी श्रोताओं को आरती का नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनिए फिल्म प्यार का मौसम से। स्वर दिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाणकर, सरिता प्रिंस, एकांश कवाणकर, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभ्रचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज, अम्बागढ़ चौकी से हमारे श्रोता साथी हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वली उल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत और इफ्जाल ताज, कोटिया नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवहानकर, निर्मला, विशाल नवहानकर, सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुम्भारगल्ले श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले। डीजे सुनिए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म प्यार का मौसम से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं लोहारेडी जिला कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लिलेश्वरी खुशांत निशांत साहू, रोहासी से मुकेश साहू, नंदनी मनीष मयंक जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, सीता गीता जसवीर जस्सी, चिरमिरी कॉलरी से इंद्र भानसी, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे, मजनू का टीला से मधु सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, पल्लवी राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, यवतमाल से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद, कालेगांव जफाराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली और सर्वद देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य और मेघा मस्कीन। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनिए फिल्म दिल देके देखो का ये गीत। स्वर दिया है मोहम्मद रफी ने, मजरू की रचना है उषा खन्ना का, संगीत है

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नानघाट कातलबोर से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, रितु राजपूत, डोगरगांव से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजबिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत और रमेश साहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा, सुलोचना भगत, चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना परवीन और वली अंसारी, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज, बिलासपुर से हमारे श्रोता साथी हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा।

संजू योगिता श्रीवास, साथ में है रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनिए फिल्म जीवन मृत्यु का ये गीत। स्वर दिया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी की शब्द रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के इस भाग का आखिरी गीत लीजिए सुनी, फिल्म चश्मे बद्दूर से। यशुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज़ें हैं, इंदु जैन की रचना और राजकमल का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं देवरी भाटापारा से KR साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय, सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू भाटिया, जालंधर से संदीप जटौलिया, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और साथ में है राजेंद्र कटारे, भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा, मोनिशा साहू। भाटापारा से ही हमारे श्रोता साथी हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चुवाराम वर्मा, सूरज बारीकर, नारायण यदु और भुवन कामरी, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके, जालंधर से मीना कौर, मन्नत नूर, नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, प्रिंस, एकांश, सुमित और ध्वनि गवाणकर, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाखरे, सुनैना, सुकन्या, सविता भाखरे, तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाउद्दीन। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनिए फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म चश्मे बद्दूर का ये गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग यहीं समाप्त होता है। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, संध्या के 6:00 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब आपको आज और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आज शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कार्यक्रम कानून की बात हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। आज कानून की बात में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम निवारण 2013 पर जानकारी सुनिएगा। जानकारी देंगी श्रीमती इंदिरा तिवारी, जिला महिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर। ईमेल करेगी सुने कार्यक्रम आप सुनेंगे संध्या 6:20 और संध्या 7:00। आज संध्या 7:30 पर ग्राम सभा प्रसारित की जाएगी। इसमें बेरा के गोठ में आपसे बातों का विषय रहेगा मौसमी सब्जियों की देखभाल। साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम आप मन की गीत। रात 8:00 सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार होंगे अभिजीत मोहनकर। रात 8:15 पर आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा का। समाचारों का अनुप्रसारण निर्धारित समय अनुसार किया जाएगा। रात 9:15 से रात 11:00 तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे। आइए श्रोताओं, अब जानकारी देते हैं कल यानी सोमवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

कल प्रातः 6:05 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर कल खेती की बात में जानकारी दी जाएगी। कद्दू वर्गीय सब्जियों में रोग नियंत्रण वाचन स्वर अभिनव गौराहा का होगा। प्रातः 6:45 पर नौविहान कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। सुबह 8:30 पर अमराई कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे गुलाबा देवी खरे, कौशल्या बघेल और उनके साथी। सुबह 9:00 साहित्यकार एवं इतिहासकार प्यारेलाल गुप्त की 136वीं जयंती पर वार्ता सुनिएगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीत सुनिएगा, प्रस्तुति होगी श्वेता पांडे की। दिन में 11:00 हम प्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। कल शाम 5:35 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवा जगत। इसमें आज की बात में आपसे चर्चा का विषय रहेगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना सोच का हिस्सा बनाएं। साथ ही सुनिएगा क्रम पर्यावरण में पर्यावरण हितैषी हमारे कार्य, प्रस्तुति होगी नेमी चंद साहू की।

कल शाम 7:30 पर ग्राम सभा में बीरा की गोट के साथ आप सुनिएगा भेंटवार्ता, पौध उत्पादन वितरण एवं पौधरोपण पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे श्रीमती निशा चंदेल, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी बिलासपुर। रात 8 बजे सुगम संगीत और रात 8:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, ये थी आज

0: और कल प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 होने को है। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और उसके बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी, इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सुकमा जिले की चिट्ठी। आलेख विष्णु प्रताप सिंह का है।
2: श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं सुकमा जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 80वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। सुकमा जिला मुख्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के जनता के नाम संदेश का वाचन किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने कहा कि बस्तर अब माओवाद से मुक्त होकर तिरंगा यात्राओं के जरिए स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा है। उन्होंने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में बंद पड़े स्कूलों को फिर से शुरू करने के साथ ही ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है। समारोह में श्री सिंह ने शहीद परिवारों के परिजनों को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। श्रोताओं, बस्तर संभाग में 12 से 14 अगस्त तक बस्तर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत नारायणपुर से हुई। दूसरे दिन यह यात्रा सुकमा से होकर गुजरी। सुकमा के दूरस्थ और कभी कठिन माने जाने वाले इलाकों से तिरंगे का गुजरना अपने आप में महत्वपूर्ण दृश्य रहा। यात्रा का अंतिम चरण बीजापुर जिले से शुरू होकर कर्रेगुट्टा क्षेत्र में संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें सहभागिता की। श्रोताओं, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने 13 अगस्त को जिले में हर घर तिरंगा अभियान, वंदे मातरम और भारत विभाजन की विभीषिका स्मरण दिवस विषय पर आधारित 3 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का प्रेरणादायक प्रतीक रहा है। श्रोताओं, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 10 अगस्त को सुकमा जिले में 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों और किशोर किशोरियों को एल्बेंडाजॉल की दवा खिलाई गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं को स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में दवा खिलाई गई। इस मौके पर अधिकारियों ने छात्राओं को स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही ताजा भोजन और सुरक्षित पेयजल का उपयोग करने के लिए जागरूक किया। श्रोताओं, जिले की 9 आत्मसमर्पित महिलाओं ने रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय बुनकर सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हथकरघा परिधानों में रैंप वॉक कर बदलाव और आत्मनिर्भरता की प्रेरक तस्वीर प्रस्तुत की। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर 7 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम में इन महिलाओं ने कोसा सिल्क और हैंडलूम परिधानों के साथ रैंप वॉक किया। जिला प्रशासन ने बताया कि इन महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता से जोड़ा जा रहा है। रैंप वॉक के लिए मुंबई से आए विशेषज्ञों ने उन्हें 7 दिनों तक प्रशिक्षण दिया। श्रोताओं, भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र अभियान के तहत राखियां भेजी जा रही हैं। इसी कड़ी में सुकमा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने देश की सीमाओं पर तैनात जवानों के लिए 2000 से अधिक राखियां भेजी हैं। इन राखियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपने हाथों से तैयार किया है। श्रोताओं, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए सुकमा जिला अस्पताल में 8 अगस्त को सिरहा गुनिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 100 से अधिक सिरहा गुनिया जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। सम्मेलन में पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मलेरिया, खसरा, उल्टी दस्त और निर्जलीकरण से बचाव के उपाय बताए गए। लंबे समय तक खांसी, वजन कम होना, बुखार और रात में पसीना।

0: आने जैसे लक्षणों पर टीबी की जांच कराने की अपील की गई। श्रोताओं, आदि कर्म योगी अभियान के तहत जिले के सभी 277 आदि सेवा केंद्रों में 13 से 15 अगस्त तक जन सुनवाई और संतृप्ति शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों के आयुष्मान कार्ड, व्यय वंदन और आधार कार्ड बनाए गए, साथ ही उन्हें विभिन्न शासकीय सेवाओं की जानकारी दी गयी। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का यह अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। इसमें आज सुकमा जिले की चिट्ठी आपने सुनी, आलेख विष्णु प्रताप सिंह का था। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। अब छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग शुभा मिश्रा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री हा सबो राजनीतिक दल मन ले माई लॉगिन मन पर आरक्षण लागू करे के मुद्दा ला राजनीतिक लड़ाई ना बनाए के करीन अपील। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संग छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मुख्यमंत्री हा घलो दिन श्रद्धांजलि। और कोरबा जिला मा सरलग वर्षा के सेती बांगो बांध के 5 गेट खोले गए हे। प्रशासन हा करीब 35 गांव पर बाढ़ के अलर्ट जारी करे हे। अब समाचार विस्तार ले। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि मा ओमन लाव श्रद्धांजलि दे जाते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के बछर 2018 मा आजे के दिन निधन हुए रहिस। अटल बिहारी वाजपेयी 3 घौ देश के प्रधानमंत्री रहिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री पी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा आज राष्ट्रीय राजधानी मा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल मा फूल चढ़ाई। उन्हें छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डे कहा आज लोकभवन मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित अपन निवास मा भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि मा फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि दीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सबो राजनीतिक दल मन ले अपील करे हे कि संसद और राज्य विधानसभा मा माई लॉगिन बर आरक्षण लागू करे के मुद्दा ला राजनीतिक लड़ाई ना बनाए जाए। स्वतंत्रता दिवस के बेरा मा लाल किला के प्राचीर ले राष्ट्र ला संबोधित करत हुए प्रधानमंत्री हा कहीन कि सबो दल आगू आए और माई लॉगिन मन ला सम्मान देवत हुए सुनिश्चित करे कि लोकसभा और राज्य विधानसभा मा माई लॉगिन मन ला तुरते 33% प्रतिनिधित्व मिले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA हा ए बछर जून मा होए UGC नेट परीक्षा के 84 विषय के आखिरी उत्तर जारी कर दे हे। उम्मीदवार 18 अगस्त तक ए उत्तर ला चुनौती दे सकत हे। एकर बर UGC नेट पोर्टल मा ऑनलाइन आवेदन करना होही। हर उत्तर मा आपत्ति बर ₹200 देना होही। उम्मीदवार मन ला अपन आपत्ति के समर्थन मा दस्तावेज घलो जमा करना होही। NTA हा कहिन कि कोनो आने जरिया ले भेजे गे आपत्ति स्वीकार नहीं करे जाही। NTA हा उम्मीदवार मन ले केवल अपन आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल में दे गए जानकारी में ही भरोसा करेला कि हिन्हे। छत्तीसगढ़ न्यायिक अकादमी डहाले आज रायपुर में न्यायिक अधिकारी मनबर एक दिवसीय संभाग स्तरीय न्यायिक सेमिनार आयोजित करेगी। एमा रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद जिला के 141 न्यायिक अधिकारी मन भाग लेन। समारोह ला संबोधित करत हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा हा न्यायिक प्रणाली ला ज्यादा प्रभावी और प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाए पर जोर दिन। मुख्य न्यायाधीश हा कहिन है कि ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवा तकनीक के बढ़त उपयोग ले आर्थिक अपराध जटिल हुआ थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान ला समझत हुए न्यायिक अधिकारी मनला साक्ष्य के सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। सेमिनार मा आर्थिक अपराध, दस्तावेज साक्ष्य, 0 FIR, EFIR और चेक अनादरण ले जुड़े कानूनी विषय मा चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में कैंसर इंस्टीट्यूट के शुभारंभ करीन। ओमनहा संस्थान में उपलब्ध उपचार सुविधा और आधुनिक मशीनरी के अवलोकन करीन। मुख्यमंत्री हा कहीन कि कैंसर मरीज ला अब एक ही जगह में जांच, उपचार और जरूरी चिकित्सा सुविधा मिल सकी। ओमन कहीन कि ये संस्थान अवैया समय में हजारों लाखों लोगन मन ला अच्छा कैंसर के उपचार देवाए में जरूरी की भूमिका निभाही। कार्यक्रम ला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा घलो संबोधित करीन। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप

0: आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावे। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बाढ़बो बाचे समाचार कोती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा काली स्वतंत्रता दिवस के मौका मा लोक भवन पहुंच के राज्यपाल रमन डेका ले सौजन्य भेंट करीन। ए मौका मा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा असम मा आए भीषण बाढ़ ले प्रभावित लोगन मन के सहायता बर छत्तीसगढ़ सरकार कोती ले 5 करोड़ रुपया के सहायता राशि के चेक राज्यपाल रमन डेका ला सौंपिन। वित्त विभाग हा पर्यवेक्षक मन के 50 खाली पद पर सीधा भर्ती ला मंजूरी दे दे है। एकर बाद महिला और बाल विकास विभाग हा भर्ती प्रक्रिया पर आदेश जारी कर दे है। ए नियुक्ति ले आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन, पोषण अभियान के निगरानी और विभागीय योजना के मैदानी स्तर मा अच्छा काम पर मदद मिली। उन्हें सरगुजा मा नवा क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना ला मंजूरी दे दे गए है। संस्थान के संचालन पर 12 नवा पद के सेटअप ला घलो स्वीकृति मिले है। एमा उपसंचालक, सहायक संचालक, सहायक लेखाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के संग आने पद शामिल है। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े हा कहिन कि नवा नियुक्ति ले विभाग के काम करे के क्षमता बाढ़ी और माई लॉगिन मन के संग लयिका मन ले जुड़े योजना के लाभ ज्यादा प्रभावी ढंग ले हितग्राही मन तक पहुंचाए जा सकी। दुर्ग जिला के भिलाई मां पाचुरथिया एक CNC टैंकर ले अचानक गैस के रिसाव होए लगीस। सूचना मिला थी, दुर्ग पुलिस मौका मां पहुंचीस और टैंकर ला सुरक्षा घेरा मां ले के बाद नेहरू नगर गुरुद्वारा तिराहा ले अवई जयवई डायवर्ट करेगीस। सुरक्षा ला देखत हुए नेशनल हाईवे मां गाड़ी मन के अवई जवई घलो रोक देगीस। गैस रिसाव रुके के बाद टैंकर के वॉल ठीक करेगीस और ओला सुरक्षित जगह पर रवाना करेगीस। एकर बाद हाईवे मां अवई जवई चालू कर देगीस। छत्तीसगढ़ मां शैक्षणिक सत्र 2026-27 बर कॉलेज मां प्रवेश के आखिरी तारीख बढ़ा के 31 अगस्त कर दे गए है। उच्च शिक्षा विभाग हा इस संबंध मां आदेश जारी करे है। अब राज्य के जेन शासकीय और निजी महाविद्यालय मन मां सीट खाली है उन्हें लयिका मन दाखिला ले सकी। एकर पहली प्रचार स्तर मां प्रवेश के आखिरी तारीख 31 जुलाई और कुलपति के अनुमति ले 14 अगस्त निर्धारित रहीस। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा हा कहिन है कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्र के कतकोन छात्र समय मा प्रवेश नहीं ले सके रहिन। छात्र मन के हितला ध्यान में रखत हुए ए निर्णय ले गए है जेखर ले योग्य विद्यार्थी मन के एक बच्चर खराब नहीं हो और ओमन उच्च शिक्षा ले छूटे छन। कोरबा जिला मां सरलग वर्षा के बीच मिनी माता बांगो बांध के 7 गेट खोल दे गए है। बांध ले करीब 25,000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी मां छोड़े जावत है। एकर चलत नदी तीर के निचला इलाका मां बाढ़ के स्थिति बने के आशंका है। प्रशासन हां करीब 35 गांव पर बाढ़ के अलर्ट जारी करे है। लोगन मल्ला सतर्क रहे और सुरक्षित जगह मा जाए के सलाह दे गए है। अति तेज वर्षा के कारण सूरजपुर जिला के प्रतापपुर विकास खंड के गांव धोंधाती नदी मा बने पुलहा बहगीस। ए पुल्ला करीब 10 करोड़ रुपया के लागत ले बनाए गए रहीस। पुल बह जाए ले गांव के लोगन मन के अवई जवई प्रभावित हुए है। ए घटना के बाद स्थानीय लोगन निर्माण एजेंसी ऊपर गुणवत्ता मा लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगावत है। उहे महासमुंद जिला के मुड़मार बांध मा काली 15 अगस्त के नहावत एक मनखे के डूबेले मौत होगी। जानवर के अनुसार ए मनखे अपन 5 दोस्त मन के संग मुड़मार बांध घूमे बर गे रहीस। इस बीच मौसम विभाग हा अवैया 2 दिन के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ एक जगह मा भारी ले अति भारी वर्षा होए के चेतावनी दे है। उन्हें प्रदेश के कतकोन जगह मा हल्का ले मध्यम वर्षा होए के संभावना जता है। आज मंझनिया के बाद राजधानी रायपुर के संग प्रदेश के कतकोन जगह मा ज्यादा वर्षा होए है। अब थोड़कून समाचार सारमा। बलरामपुर जिला के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के शिवपुर के जंगल मा आज हाथी मनहा एक मन के ऊपर हमला कर दिस जेखर ले उखर मौका मा ही मौत होगीस। उधमतरी जिला के श्याम तराई नाका चौक तीर अज्ञात गाड़ी के टक्कर ले बाइक सवार एक मनखे के मौत होगीस। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घंव फेर। प्रधानमंत्री ह सबो

0: राजनीतिक दल मन ले माई लॉग इन मन पर आरक्षण लागू करे के मुद्दा ला राजनीतिक लड़ाई ना बनाए के करीन अपील। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के संग छत्तीसगढ़ के राज्यपाल मुख्यमंत्री हा घलो दिन श्रद्धांजलि। और कोरबा जिला में सल्लग वर्षा के सेती बांगो बांध के 5 गेट खोले गए हे। प्रशासन हा करीब 35 गांव पर बाढ़ के अलर्ट जारी करे हे। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का दूसरा भाग।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनी के इस भाग में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम के इस भाग का पहला गीत लीजिए सुनिए, फिल्म खुशबू से। स्वर दिया है आशा भोसले ने, गुलजार की रचना है आरडी बर्मन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह, जतिंदर कौर, गुरुप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, करमजीत कौर, पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और साथ में है प्रयाग चौधरी, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा और कौशल सेन, फैजिका पंजाब से भूषण खेरा, विशाल विष्णु और इनके साथी हैं, पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री, धनशी बुरांडे, उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी करिश्मा, सोमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्य पैकरा, भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत और राघवेंद्र साहू, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्या भारती, छत्तीसगढ़ से प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और देवशंकर, लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय भान सिंह, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और देवियांश बघेल। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म खुशबू का ये गीत।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप। भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए फिल्म पहेली का ये गीत। हेमलता और सुरेश वाडेकर की आवाजें हैं, गीत और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद गौरव, आरव और अर्पिता, पैठन से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, कोड़ीभाटा गलतारा से दिलीप चंदन, चुवाराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन, मुरादाबाद से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। मुरादाबाद से ही हमारे श्रोता साथी हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग, भिलाई से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान अहमद सिद्दीकी और शहनवाज अहमद सिद्दीकी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म पहेली का ये गीत।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। इस विषय पर जिला महिला संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर श्रीमती इंदिरा तिवारी से की गई बातचीत। ये आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति है।

फिल्म पहले के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी का ये भाग यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे संध्या 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे कार्यक्रम कानून की बात। आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 6:23 हुए हैं। कानून की बात लीजिए, इसमें सुनिए

0: कानून की बात कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं हूं अंजनी और आज एक नए विषय के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हैं और हमारे साथ हैं कानून की विशेषज्ञ श्रीमती इंद्र कुमारी तिवारी, जिला महिला संरक्षण अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर
1: जी।
0: और आज जो हमारा बातचीत का विषय है वो है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। स्वागत है महोदया आपका। और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जरा आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं या वो किस तरह का माहौल होता है जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं को लगता है कि उनका कोई उत्पीड़न हो रहा है।
1: जी जी, आजकल महिलाएं क्या है कि कार्यस्थल पर जाकर के अपना काम करती हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से कानून बना हुआ है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पहली मुख्य समस्या है कि उनके साथ उनके जो सहकर्मी है या उनके बॉस के द्वारा उन्हें उत्पीड़ित किया जाता है। जैसे सहकर्मी द्वारा जबरदस्ती किसी महिला को टच करना, अनुचित रूप से छूना और क्विड प्रो क्वो का सिद्धांत लागू होता है, जैसे तुम मुझे यह दो तो मैं तुम्हें वह दूंगा। मतलब बॉस के द्वारा यह कहा जाता है, अपने कैबिन में बुला करके यह कहा जाए कि तुम मेरे साथ चलो, मेरा साथ दो, मेरे साथ इस होटल में चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो और मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा, तुम्हारा वेतन वृद्धि कर दूंगा। तो ये अगर बातें होती हैं तो वहाँ पे उसका लैंगिक शोषण होता है और मानसिक रूप से महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित होती हैं, लेकिन ये बात वो किसी को बता नहीं पाती हैं। अगर घर में बताती हैं तो घर वाले बोलेंगे कि नहीं तुम काम छोड़ दो, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम काम जितना हो रहा है उतना ही में तुम घर चलाओ। आर्थिक रूप से भी उन्हें परेशानी होती है, सामाजिक परेशानी होती है, आर्थिक रूप से परेशानी, मतलब उनका वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है। अगर महिला शिकायत करती है तो उसका वेतन वृद्धि रोक दिया जाता है और सैलरी उनका रोक दिया जाएगा।
0: कभी कभी देखने में ये आता है कि महिलाएं काम कर रही हैं तो जो सहकर्मी होते हैं वो अगल बगल खड़े होके कुछ द्विअर्थी बातें करते हैं।
1: हाँ।
0: कुछ शारीरिक भाव भंगिमा ऐसी बनाते हैं जिससे कि महिला असहज हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या इस तरह की बातें लैंगिक उत्पीड़न की श्रेणी में आती
1: हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अश्लील मजाक करना, अश्लील चुटकुले सुनाना, है ना, अश्लील मैसेज भेजना, वीडियो करना, अश्लील कॉल करके अश्लील बातें करना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैसेज हैं इनके माध्यम से अगर कोई मैसेज करता है या कॉल करके कुछ बातें करता है अश्लील, तो वो भी लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत
0: आता है।
1: लेकिन महिलाओं को इसका एक जो भी रिकॉर्ड है वो सबूत के रूप तौर पर रखना चाहिए।
0: जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई महिला है जो किसी कार्यस्थल पर काम कर रही है और उसके साथ अगर कोई उसका सहकर्मी है वो इशारों में बातचीत करता है या बगल में खड़े होकर, जैसा कि आपने कहा, अश्लील चुटकुले सुनाना या फिर कुछ ऐसा शारीरिक हाव भाव बनाना जिससे कि अश्लीलता झलकती हो, तो महिला को क्या करना चाहिए, कैसे वो सबूत इकट्ठा कर पाएगी?
1: देखिए, ये जो अश्लील इशारे करना होता है ना, ऐसा कुछ शारीरिक रूप से मतलब मांग करना, संबंध बनाने की या किसी और चीज की मांग करना होता है, अश्लील इशारे होते हैं जिसे कहा जाता है, तो इस संबंध में महिला सबूत बार बार, वो पुरुष जो है बार बार करेगा,
0: उसे लगेगा कि अगर महिला कुछ नहीं बोल रही है तो वो सहमत है तो वो बार बार करेगा।
1: तो वो बार बार करेगा, जो बार बार करेगा तो वो महिला सावधान रहे और जब उसको समय मिले वो रिकॉर्डिंग रख ले, बात करना हो तो बात करे और फिर रिकॉर्डिंग को रख ले, कॉल रिकॉर्डिंग में उसके बाद सबूत मिल जाएगा। और अगर वो अनुचित रूप से

0: स्पर्श करता है, तो उसके पास अगर वहां पे तत्काल फोटो का हो तो वो ले सकती है।
1: मतलब किसी महिला को कार्यस्थल पर इतना सतर्क होना चाहिए कि यदि उसके साथ लैंगिक दुर्व्यवहार होने की कोशिश हो, तो वो ये कोशिश करे कि अधिक से अधिक साक्ष्य जो है वो एकत्र
0: साक्ष्य
1: किए जा
0: रखे,
1: सके।
0: हाँ अपने पास साक्ष्य रखे, क्योंकि साक्ष्य के अभाव में क्या होता है कि महिलाएं फिर जो शिकायत होती है वो में प्रमाणित नहीं कर पाती हैं, और प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण फिर वो समझौता करने के लिए फिर मजबूर हो जाती हैं।
1: मजबूर हो जाती
0: हाँ
1: है।
0: जी
1: जी। मान लीजिए कि एक महिला कार्यस्थल पर है, उसके उसके सहकर्मियों द्वारा वो उत्पीड़ित है, वहां माहौल अच्छा नहीं है, तो पहली शिकायत कहां पे करें?
0: देखिए, इस अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी संस्थाओं को, सभी कार्यालयों को, चाहे वो शासकीय हो या अशासकीय हो, सभी उद्योगों को, सभी होटल रेस्टोरेंट जितने हैं, जहां 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं, वहां पे एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन होना अनिवार्य है। जहाँ पे महिला नहीं भी हो, पुरुष भी काम कर रहे हो, लेकिन उनकी संख्या 10 या 10 से अधिक होनी चाहिए। अगर 10 या 10 से अधिक है तो उन्हें आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य है, और इस समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष के बाद पुनः एक समिति गठन करके उसकी कॉपी इस अधिनियम का नोडल विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग है, और अधिनियम की धारा 5 के तहत एक जिलाधिकारी नियुक्त होते हैं, जिन्हें समिति जो है किसी शिकायत की जांच करके रिपोर्टिंग तैयार करके अनुशंसा जो है समिति जिलाधिकारी को भेजती है और संबंधित नियोक्ता को भेजती है। और आगे एक और समिति है, जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति गठित होता है महिला एवं बाल विकास में, जिला स्तरीय समिति है ये। तो इस समिति में जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं, जहाँ 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ तो आंतरिक शिकायत समिति है, लेकिन जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं वहाँ आंतरिक शिकायत समिति बनी ही नहीं है, और जहाँ पे नियोक्ता के खिलाफ शिकायत है, नियोक्ता मतलब वो मालिक, किसी उद्योग फर्म का मालिक, किसी कार्यालय का नियोक्ता जो मेन प्रभारी है, अगर वो ही उत्पीड़न कर रहा है और उसी के खिलाफ शिकायत है, तो वो शिकायत सीधे जिला स्तर पर जो स्थानीय शिकायत समिति बनी है वहां पे शिकायत दर्ज होगी। क्योंकि अक्सर करके झाड़ू पोछे लगाने वाली जो महिलाएं हैं या फिर खेतों में जो काम करके करने जाती हैं, रोपा लगाने जाती हैं और कुछ काम, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि 10 से 1 लोग काम करते हैं, और या फिर वहां समिति बनी हो, ये
1: जी,
0: जरूरी
1: वो
0: नहीं
1: कार्यालय के रूप में तो है
0: है।
1: नहीं।
0: नहीं, वहां
1: जी।
0: समिति बनी नहीं है, तो वो अगर वहां पे उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो वो सीधे जिला स्तर पर कलेक्टेड ऑफिस में, महिला एवं बाल विकास विभाग है वहां पे स्थानीय शिकायत समिति बनी हुई है, वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और वहां शिकायत दर्ज कराएंगी तो उनकी शिकायत पर पूरी जांच और कार्यवाही की जाएगी।
1: आमतौर पे देखने में आता है, हर जगह तो नहीं, देखने में आता है कि जो पुरुष सहकर्मी है या नियोक्ता है, महिलाओं
0: जी
1: के सामने ही अभद्र गालियां
0: जी जी
1: देता
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: तो ये क्या इस श्रेणी में आएगा
0: बिल्कुल
1: और क्या
0: बिल्कुल
1: इसकी
0: बिल्कुल
1: शिकायत होगी?
0: बिल्कुल, ये लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। महिलाओं को गालियां देना, नीचा दिखाना, तुम औरत हो कुछ नहीं कर सकती, है ना, इसी तरह से धमकाना, तुमको मातृत्व अवकाश के लिए भी धमकाया जाता है कि तुम ज्यादा छुट्टी लोगी तो तुमको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ये सारी जो धमकियां हैं, तुमको सैलरी नहीं दूंगा, तो ये सब है लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आता है। तो इन सब की शिकायत वो सीधे कर सकती हैं, स्थानीय शिकायत समिति में अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।
1: क्या प्रावधान है यदि मामला सिद्ध होता है? दोषी के खिलाफ किस तरह की दंडात्मक कार्यवाही होती है इसमें?
0: दोषी के खिलाफ समिति जो है, पहले तो समिति में शिकायत रखी जाएगी, और समिति धारा 10 के तहत दोनों पक्षों के बीच समझौता का पहले प्रयास करेगी। अगर दोनों पक्ष समझौता के लिए तैयार हैं, आवेदिका ने लिखित आवेदन दिया है कि हाँ मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, अनावेदक माफी मांग रहा है, तो उस स्थिति में समझौता हो जाता
1: अच्छा।
0: है ना। लेकिन अगर आवेदिका समझौता के लिए तैयार नहीं है, उसके साथ ज्यादा ही गंभीर प्रकृति का,
1: गंभीर प्रकृति के
0: हाँ
1: अपराध हुए हो।
0: अपराध हुए,
1: जी।
0: कृत्य हुए हैं, तो वहां पे अगर वो समझौता नहीं करना चाहती है तो केस आगे जाएगा, और 90 दिन की अवधि होती है समिति के पास, वो जांच करती है। 90 दिन पूरा होने के बाद 10 दिन का उसके पास समय होता है, 10 दिन में अपना रिपोर्ट तैयार करके अनुशंसा के साथ जिलाधिकारी को और संबंधित नियोक्ता को भेजेगी। नियोक्ता के पास 60 दिन का समय होता है, 60 दिन के भीतर वो जो समिति अनुशंसा की है उस अनुशंसा का पालन कराएगी। तो इस में समिति अनुशंसा कर सकती है कि जो संबंधित, अगर किसी आपराधिक किस्म का प्रकृति आ रहा है ना,
1: जी।
0: छेड़छाड़ संबंधी क्या है, तो आईपीसी की धारा

0: सकती है, थाना में FIR के लिए भेजा जा सकता है, या फिर आर्थिक रूप से जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर अगर शासकीय कार्यालय में है तो उन्हें निलंबित किया जा सकता है, उनका ट्रांसफर किया जा सकता है, उनकी सैलरी काट करके आर्थिक रूप से मुआवजा आवेदिका को पीड़िता को दिलाया जा सकता है।
1: जी, यदि मान लीजिए कोई ग्रामीण महिला है, उनके साथ कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार होता है, तो क्या वो ऐसा कर सकती हैं कि सीधे थाने चली जाएं और थाने में आप इसकी सूचना दर्ज कराएं? क्या ये प्रावधान है?
0: कर सकती हैं, थाना इसके लिए है, थाना में भी जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अगर थाना वाले शिकायत नहीं लेते हैं तो भी उसके बाद फिर वो यहाँ कर सकती हैं।
1: आप जिला महिला संरक्षण अधिकारी
0: जी,
1: इस नाते महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर कुछ आप महिलाओं से कहना चाहेंगी कि वो किस तरह सुरक्षित रहें, कार्यस्थल पर किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखें?
0: हाँ, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हैं कार्यस्थल पर अपना काम कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सजग रहना भी बहुत जरूरी है। किसी के दबाव में आकर काम न करें। अगर उन्हें कोई कहता है कि नहीं तू मेरे साथ ऐसा कर, मैं तुझे प्रमोशन दूंगा या वे तेरा सैलरी बढ़ा दूंगा, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप तत्काल शिकायत करिए और आपकी शिकायत गोपनीय रखी जाएगी। यह अधिनियम जो है कहता है कि उसकी शिकायत की मीडिया में या प्रेस में किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रचार करता है तो अधिनियम में सीधा प्रावधान है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।
1: यही मैं भी जानना चाहता था आपसे कि महिलाओं के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है, लोकलाज।
0: लोकलाज जी,
1: बदनाम
0: जी, जी, जी।
1: बहुत डरती हैं महिलाएं और
0: जी,
1: सहती हैं।
0: जी, जी।
1: ऐसे में किस तरह से बहादुरी दिखाना होता है, किस तरह की समझदारी दिखानी होती है?
0: एक तो महिलाओं को जैसे उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, लैंगिक उत्पीड़न हो रही है उनके साथ में, लैंगिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है, तो थोड़ी सी समझदारी वो दिखाएं कि सबूत इकट्ठा कर लें, है ना। सीधे एक बार दो बार हुआ और वो शिकायत कर दें तो फिर अनावेदक तो बोलेगा ही ना कि
1: ऐसा नहीं किया है,
0: हम ऐसा नहीं है, हमारा व्यवहार देख लिया जाए, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो जो महिला है वो पहले सबूत इकट्ठा कर ले, क्योंकि अगर इंसान एक बार करता है, दो बार करता है, तो तीसरी बार भी करेगा, चौथी बार भी करेगा। कॉल करता है तो कॉल को रिकॉर्ड करके रखिए, मतलब जो भी चीज मैसेज भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके रखिए, वो आप संरक्षित रखिए, तो ये सबूत के तौर पर आपके काम आएंगे।
1: एक अंतिम सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई महिला है और कोर्ट में जाना चाहती हैं या अपने केस को लेकर के आगे बढ़ना चाहती हैं और रुपए पैसे की उतनी व्यवस्था नहीं है,
0: जी,
1: तो किस तरह से उनकी मदद हो सकती है?
0: देखिए, कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तो अगर महिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जाती है और वहां पर ये बोलती है कि मेरा केस इस न्यायालय में चल रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है आर्थिक रूप से, महिला का तो वैसे भी उसको सरकारी वकील मिल जाएंगे, विधिक सहायता उन्हें फ्री में दी जाएगी, है ना। अगर वो महिला है तो, महिला है या बच्चा है तो उसे तो फ्री में वकील मिलेंगे।
1: जरा
0: तो
1: हमारे श्रोताओं को विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी दे दीजिए।
0: विधिक सेवा प्राधिकरण हर जिले में एक न्यायालय परिसर में ही रहता है, जिला न्यायालय परिसर में, तो वहाँ पे एक सचिव मैडम होती हैं जो जज के रैंक की होती हैं, तो वो जो है देखते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं गांव-गांव में जा करके कि जो भी व्यक्ति अपना केस नहीं लड़ सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्हें विधिक सहायता दी जाएगी, उन्हें सरकारी वकील दिए जाएंगे और वो सरकारी वकील के माध्यम से अपना केस लड़ सकते हैं।
1: इसका एक टोल फ्री नंबर भी है।
0: टोल फ्री नंबर है
1: 15100।
0: टोल फ्री नंबर है 15100। इसमें अपना कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं।
1: श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्रीमती इंद्र कुमारी तिवारी जी, आप जिला महिला संरक्षण अधिकारी हैं महिला एवं बाल विकास विभाग सूरजपुर में। महोदया, आप स्टूडियो में आई और इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद आपका।
2: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, प्रस्तुति सहयोग अंजनी कुमार पांडेय का और प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार की। किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इसमें विषय था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013। श्रीमती इंद्र कुमारी तिवारी से बातचीत कर रहे थे अंजनी कुमार पांडे। ये आकाशवाणी अंबिकापुर की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
2: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
6: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
8: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर।
9: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
10: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
9: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
10: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
9: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
10: क्यों?
9: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
11: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
12: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
13: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
12: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
13: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
12: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
13: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
11: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
14: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
13: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
14: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
13: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
14: आकाशवाणी से।
11: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाने की अपील की। प्रदेश में कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर

अगस्त की गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और कोरबा जिले में लगातार बारिश के कारण बांगो बांध के 7 गेट खोले गए। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाया जाए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी दल आगे आएं और महिलाओं को सम्मान देते हुए यह सुनिश्चित करें कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का वर्ष 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने आज लोकभवन में और मुख्यमंत्री विष्णु देसाय ने रायपुर स्थित अपने निवास पर भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी द्वारा आज रायपुर में न्यायिक अधिकारियों के लिए एक दिवसीय संभाग स्तरीय न्यायिक सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद जिलों के 141 न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने न्यायिक प्रणाली को अधिक प्रभावी और प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाने पर जोर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऑनलाइन लेन देन, डिजिटल प्लेटफॉर्म और नई तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आर्थिक अपराध जटिल हो रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों को समझते हुए न्यायिक अधिकारियों को साक्ष्यों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। सेमिनार में आर्थिक अपराध, दस्तावेजी साक्ष्य, जीरो एफआईआर और ईएफआईआर तथा चेक अनादरण से जुड़े कानूनी विषयों पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। एनटीए ने उम्मीदवारों से केवल अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। अब राज्य के जिन शासकीय और निजी महाविद्यालयों में सीटें रिक्त हैं, वहां विद्यार्थी दाखिला ले सकेंगे। इससे पहले प्राचार्य स्तर पर प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई और कुलपति की अनुमति से 14 अगस्त निर्धारित थी। उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के कई विद्यार्थी समय पर प्रवेश नहीं ले सकते थे। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि कोई विद्यार्थियों का एक वर्ष खराब न हो और वे उच्च शिक्षा से वंचित न रहें। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोकभवन पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देसाय ने असम में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक राज्यपाल रमेन डेका को सौंपा। यह सहायता राशि असम के बाढ़ प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए प्रदान की गई है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर कल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जगदलपुर की अमर वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के शौर्य और बलिदान ने बस्तर का नया इतिहास लिखा है। उन्होंने बताया कि राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस के 141 जवानों को वीरता पदक मिल चुके हैं। इस वर्ष बस्तर के 93 नए स्थानों पर तिरंगा फहराया गया है।

0: श्री शर्मा ने झीरम घाटी पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके सम्मान में पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि झीरम के शहीदों का सपना लोकतंत्र, शांति और विकास वाला बस्तर था। उन्होंने शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कोरबा जिले में लगातार बारिश के बीच मिनी माता बांगो बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से करीब 25,000 क्यूसेक पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है। इसके चलते नदी के आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका है। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। उधर तेज बारिश के कारण सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के ग्राम घोंगा के पास नदी पर बना पुल बह गया। पुल के बह जाने से ग्रामीणों की आवाजाही प्रभावित हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोग निर्माण एजेंसी पर गुणवत्ता में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वहीं महासमुंद जिले के मुंडबाद बांध में कल 15 अगस्त को नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह युवक अपने 5 दोस्तों के साथ मुंडमार बांध घूमने गया था। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। आज दोपहर बाद राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज वर्षा हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने आज रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में कैंसर इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान में उपलब्ध उपचार सुविधाओं और अत्याधुनिक मशीनरी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर मरीजों को अब एक ही परिसर में जांच, उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह संस्थान आने वाले समय में हजारों लाखों लोगों को बेहतर कैंसर उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी संबोधित किया। वित्त विभाग ने पर्यवेक्षकों के 50 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती को मंजूरी दे दी है। इसके बाद महिला और बाल विकास विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आदेश जारी कर दिया है। इन नियुक्तियों से आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन, पोषण अभियानों की निगरानी और विभागीय योजनाओं के मैदानी स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। वहीं सरगुजा में नवीन क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को मंजूरी दी गई है। संस्थान के संचालन के लिए 12 नए पदों के सेटअप को भी स्वीकृति मिली है। इनमें उपसंचालक, सहायक संचालक, सहायक लेखाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य पद शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि नई नियुक्तियों से विभाग की कार्यक्षमता बढ़ेगी और माताओं तथा बच्चों से जुड़ी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से हितग्राहियों तक पहुंचाया जा सकेगा। दुर्ग जिले के भिलाई में बीती रात एक CNG टैंकर से अचानक गैस का रिसाव होने लगा। सूचना मिलते ही दुर्ग पुलिस मौके पर पहुंची और टैंकर को सुरक्षा घेरे में लेने के बाद नेहरू नगर गुरुद्वारा तिराहा से यातायात डायवर्ट किया। एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी गई। गैस रिसाव थमने के बाद टैंकर का वॉल्व ठीक किया गया और उसे सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया गया। इसके बाद हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया। अब कुछ खबरें संक्षेप में। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के शिवपुर के जंगल में आज हाथियों ने एक ग्रामीण पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और धमतरी जिले के श्याम तराई नाका चौक के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिलाओं के लिए

0: आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाने की अपील की। प्रदेश में कॉलेजों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त की गई। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और कोरबा जिले में लगातार बारिश के कारण बांगो बांध के 7 गेट खोले गए। प्रशासन ने करीब 35 गांवों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: चाहिए
2: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरक अछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।

प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:03 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का शेष भाग।

कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी के इस अंक में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत लीजिए सुनी कश्मीर की कली फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, SH बिहारी की रचना और ओ.पी. नैयर का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश, प्राची और प्रवीण, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब, हासी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और इनके साथी हैं जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, भाटापारा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा और धनेश्वरी वर्मा, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद शादाब खत्री और साथ में है रमेश गोड़, लुथरा खमरिया से अक्रम, अमीन, अर्श और आतिका, लोहगर ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर, गुरलाल और अवि

सिंह। रिंगनी से हमारे श्रोता साथी हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया। लुथरा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मोहन सिंह, सहोदरी बाई मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम, चंद्रपाल मरावी और साथ में हैं लक्ष्मी थदवानी। बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव। बुड़गहन से हमारे श्रोता साथी हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा विनय शंकर पांडे। महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर और साजिद शाहिद। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद पर कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जाखोद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहनी, कल्पित, गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, तानिया नारंग, बुल्ढाना महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा, दीपाली और श्लोक कुमार, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी, पर्ल और वेलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजवती, टोप सिंह, काजल, पूर्वी, हेजल, राजेश और रेशमा साहू, बोटसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली, जगदीश, प्राची और प्रवीण, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एस एम जावेद, शगुप्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, शेख रहीम मुन्ना, राबिया शेख, तखतपुर से हमारे श्रोता साथी हैं मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल, मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरबी चचेड़ी से कमल कांत मरावी, प्रमीला नेहा, पुष्पराज मरावी, सौंगा जिला धमतरी से कोमल सेन, तोशन सेन, विनायक सेन, कोलगांव से पांडु चंदन, पांडु रंग कुंभार, उषा प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, नवीन, सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित आहूजा, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान। लीजिए श्रोताओं, आप सभी की पसंद पर सुनिए फिल्म गजब का ये गीत। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी, आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नागर कोहरा राजनांदगांव से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम और राकेश कुमार, महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साह, अश्वनी, अमरदीप, पशुपति और इनके साथी हैं, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कतियाबारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लाविया, आरव खुराना, सहारनपुर से आशु, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीना और विविधा वंडलकर, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर। लीजिए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनिए फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई का ये गीत। स्वर दिया है हेमलता ने, गीत और संगीत है रविंद्र जैन का।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल करेगी सुनी आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का आखिरी गीत लीजिए सुनिए फिल्म राजकुमार से। स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, शैलेंद्र की रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। इस गीत के लिए ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, बिनाक्षी, निशा और तुलसी, दिशा गोस्वामी। हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोर्ड के नंदा हनुमान, उत्तम चंदाड़े। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। खमरिया से साबिक खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। पलारी से नीतीश कुमार, तनुजा दिवांगन, ईशांत, लखनलाल और सावित्री बाई दिवांगन। राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। समडेल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा, रिमझिम गुप्ता। अडार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। रायगढ़ बिहार से उमा राज, पवन, संजय, दीपक, कमल। बलौदा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री। नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी। लीजिए सुनिए आप सभी की पसंद पर फिल्म राजकुमार का ये गीत।

फिल्म राजकुमार के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम सभा।

0: माया पीरित भरे राम राम, जय जोहार। का हाल चाल भाई हमार संगवारी मन के? बड़ दिन में भेंट हुआ थे है ना भाई? अब भेंट करे हन त गोट बात ला पते पते छोरी। हाँ हाँ भाई, यो देखे काकी है का कहते, ओकरे बार तो आज छन ओ कजरी दीदी कहते। हाँ वो महू जाना था तब बताइन, आज के बेरा के गोट के क्रम में विषय लाए हन मौसमी सब्जी के देखभाल। भाई मौसमी मतलब देखा था बरसात के मौसम के साग भाजी, और ये मौसम में भाजी तरकारी एकर बढ़वार तो बहुत तेजी ले होते भाई बरसात में। फिर ये मौसम में पौधा में कीड़ा रोग लगे के संभावना घलो ज़्यादा होते, ता थोड़ा सावधानी और सही देखभाल ले अपन बारी ला हरा भरा और सब्जी ला निरोग रखे जा सकते है। कथे संगी हुआ, माटी में पसीना अब बारी में बहार, माटी में पसीना बारी में बहार, हरियर साग भाजी देते खुशहाली अपार। ता अपार खुशहाली प्राप्त करना है ता सुघर अपन बारी ला हरा भरा रखना है। गोट बात के क्रम जारी रखबो बढ़िया जानकारी के संग, पर पहली सुनी संदेश आला।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर?
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
7: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
5: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
6: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
5: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
7: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
0: संगी हो संदेशा के पहली बात चलत रही से मौसमी सब्जियों के देखभाल के बारे में। तो एक बार पहली बात आते, सबसे पहली माटी के पानी में के जो निकासी के साधन रखना है ओकर बारे में बात करबो। खेत में या बारी में यदि पानी रुक जाही तो का होते, जरी हा सर जाते। तो एकर से तीर क्यारी ला थोकर ऊंच में बनावा और पानी निकले के रद्दा जरूर रखाओ। देखा न कथे पानी जरूरी फिर ठहरना नहीं है, जरी में सड़न हो ये गलती करना नहीं है। तो संगी मन ए बात के चेत करा। अब बात करबो सिंचाई के, तब बरसात में अलग से पानी के सिंचाई की जरूरत तो पड़बे नहीं करा, या पड़ी तो बहुत कम पड़ते। तब पौधा के माटी ला देख के पानी देवाओ। ऊपर ले माटी सूखा दिखते जरूर, पर का होते अंदर में नमी रहते, ता नमी रहे मा ते बात ला ध्यान देना है। दूसर बात करबो निराई गोड़ाई के, ता का होते खरपतवार सब्जी के पौधा के पोषण पानी और घाम एकर हिस्सा ला बांट लेते। जतके ज्यादा पौधा निकलते उतके ज्यादा खरपतवार के जो कांदी है वह बढ़ते। तो एकर से तीर समय समय में जोन घास फूसे वाला निकालत रहा, हल्का गोड़ाई ले माटी भुरभुरी रहते और जरीला हवा भी मिलते। एकरे बर कथे घास हटावाओ पौधा बचावाओ और मेहनत के फल में खुशहाली पावाओ। अब आते खातू माटी के बाद, तो अच्छा से सड़े हुए गोबर खातू वर्मी कंपोस्ट जैविक खातू के इस्तेमाल करे जा सकते है। खातू हमेशा पौधा के जरूरत और माटी के हालात देख के कराओ, बहुत ज्यादा खातू देले फायदा के बजाय नुकसान होते। संगवारी हो बरसात में कीड़ा रोग घलो तेजी से फैलते, ता जैसे पत्ता में छेद हो गए सफेद धब्बा हो गए पिवरापन आ जाते, पत्ता मुड़े दिखते, ये सब जैसे ही लक्षण आप यदि दिखाते तो तुरंत चेत करा और रोगी भागला पौधा ले अलग करके नष्ट कर देवा। और बारी में हवा के आवागमन बने रहे ये बात के भी चेत कराओ। देखा का कथे, पत्ता पत्ता देखा और रोग ला पहचानाओ और समय

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मू रेडियो श्रोता संगवारी मन के स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जो कहो अपन कजरी बहनी के

उपचार कर फसल ल बचाव। साग भाजी के पौधा बहुत घना हो जाते त का करना चाहिए, जरूरत अनुसार छटाई करते रहना चाहिए। अब बेल वाला साग जैसे लौकी, करेला, तरो ये सब ला ढेखरा दे के नार चढ़ावा, एकर से ऊपर घाम फाथे और फसल भी बढ़िया होते। और सब्जी तैयार हुआ तहाँ तुरंत तोड़ देवाओ, एकर में का होते नवा नवा फर ज्यादा लगते। बहुत दिन तक यदि फर ला पौधा में छोड़ दे तो नवा फर बने में प्रभावित होते। एकरे बर कहे गए बाड़ी में हरियाली, मन में मुस्कान, अब मेहनत ले भरते घर आंगन के धान। तसंगी हुआ मौसमी साग भाजी के बढ़िया मतलब है सही पानी, साफ क्यारी, संतुलित खातु, समय में निराई गुड़ाई, कीड़ा रोग के समय रहते पहचान, अपन घर के बारी हो या खेत, थोड़ा ध्यान और नियमित मेहनत ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ते। तो याद रखो स्वस्थ माटी, स्वस्थ पौधा, स्वस्थ साग भाजी स्वस्थ परिवार के आधार आए। अपन बाड़ी ला समय देवाओ, प्रकृति के संग चलाओ और ताजा हरियर साग भाजी के आनंद लेवाओ। जात जात यही कहबो, हरियर बाड़ी हरियर गांव, सब्जी संग खुशहाली लाओ। तो आओ आज दिने इतवार, अगोरा हे हमर मितान मन ला आज के कबर के पारी रथे ओ मन के फरमाइशी गीत, आप मन के गीत के तसंगी हुआ। जाना थन सब ला अपन चिट्ठी के अगोरा रथे भाई, तो जल्दी जल्दी चिट्ठी ला खोली और शुरू करीन फरमाइशी गीत के कार्यक्रम आप मन के गीत के क्रम में। तो सबसे पहली तो चिट्ठी ले हन ओहे मोती गार्डन भाटापारा ले मोतीलाल झेरिया, कल्पना झेरिया, बिट्टू कुमार झेरिया, चिंटू झेरिया, युग कुमार झेरिया, अब भाटापारा छत्तीसगढ़ ले राम कुमार राउत, अमरिका राउत, गणेश राउत, कार्तिक राउत और युवराज राउत। आगे के चिट्ठी ले हन भाई भाटापारा दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा के। और फिर चिट्ठी आहे देखा भाटापारा ले ही बच कमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम रेवार, जितेंद्र यदु, सियाराम टेलर, अश्वनी पांडे। और आगे के चिट्ठी आहे भाटापारा दतरेंगी ले ही द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर और सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रेयांश ठाकुर के फरमाइशी में। संगी हुआ सावन के फुहार, मया के बहार और संगवारी मन के याद, यही मधुर एहसास के संग अब सुना वो सुरीला गीत जेकर फरमाइश हमार संगवारी मन करे हवाए। कथे संगी हुआ बरखा के बूंद बूंद माँ मया के सुर गुंजाए और सावन हरा के संगी मन भर के फेर झूमाए। तो आवा एक गीत के संग हमू झूमिन जेला स्वर दे कुलेश्वर ताम्रकार उकर संगवारी मन।

कत कसुक घर गीत लसुनेन संगी हुआ जेला स्वर देहरेन है कुलेश्वर ताम्रकार उखर संगवारी मन संगी हुआ सावन नाम लेते च मन मा हरियर खेत भिंजे डगर माटी के सौंधी खुशबू और रिमझिम बरखा के सुर गूंज उठते। सावन सिर्फ मौसम नो है, ए हर मन के भीतर दबे मया नेह और मीठा याद के पर्दा ला धीरे धीरे खोल देते। जब बूंद मन धरती ऊपर गिरते ना संगी हुआ त ऐसे लागते जैसे प्रकृति अपन हाथ ले माटी मा हरियर चुनरी सजा दे हवे। और यही सुहाना मौसम मा अगर मया के गीत कान में पर जाते त मन के कोना कोना मा एक अनजान मिठास घुल जाते। आवा आगे के गीत पर फरमाइशी चिट्ठी आहे नकुल श्याम मोहम्मद अकरस मोहम्मद अजीज स्थान लुथरा खमरिया ले औ पोड़ी लाफा ले विद्यानंद साहू त्रिवेणी साहू रानी बबली सुमन मंटू मिष्ठी सृष्टि दृष्टि गन्नू गणेश कान्हा कृष्णा औ अंशु साहू गांव रोहासी ले डगेसर राम साहू गौरव साहू नूतन साहू अलका जानवी साहू औ घनश्याम साहू के। औ आगे के चिट्ठी है सुभाष वार्ड भाटा पारा ले एमएल यादव अजय कुमार यादव अमित अमीन यादव गिरीश करण यादव युवान ढाबेश यादव और हथबंध नेवधाले सेवाक्राम यादव टुपेंद्र कुमार यादव तुलेंद्र कुमार यादव और देव कुमार यादव के। ग्राम रसेड़ा अकलतराले मुरलीधर साहू लक्ष्मी देहवी साहू योगेश कुमार साहू कीर्ति कुमार साहू संध्या साहू डिकेश कुमार साहू वासु डॉली अपूर्वेश साहू के। सबके फरमाइश में देखा का कह रहे हैं सावन के जब झड़ी लगते ना और आगी है जब गुंगवाते तो कैसे लागते। आवा संगी हुआ कुछ देर बरखा के बूंद संग अपन मन ला घलो भिंजोइन और बीते दिन के मिठ सुरता ला करत ये सुरीला गीत सावन के फुहार और मया के रंग में रंग जाइन हमू। जेरा स्वर दे है सावित्री करिहार और नकुल जायसवाल मन।

देखा संगी हो आ, काकर काकर आगे गुंगवावा थे बतावा भला। सावन के झड़ी है तो इदारी शीत तो मा बढ़ हो गए है भाई। जगह जगह झोर की तला उफना थे बढ़िया, अच्छा लगा थे हमार किसान संगी मन तो खुश हावय। संगवारी हो, सावन के महीना मा झिमिर झिमिर बरसत पानी और मन मा जागे मीठा कहानी और बूंद बूंद जेमा सुर बन जाते और सावन गाथे अपन मीठा और सुघर कहानी। तब बारिश के ये सुहाना मौसम में बूंद के रिमझिम और माटी के सौंधा खुशबू के संग अब प्रस्तुत है एक ऐसा गीत जो बरसात के फुहार के संग सीधा दिल ल छू लेते। आवा मौसम के एक खूबसूरत रंग में थोकन भीग जाइन और ये गीत ला सुनिन जेकर फरमाइशा है पोड़ी भाठा अकलतराले दिलीप चंदन चुवाराम यदु निखिल चंदन वसुंधरा चंदन प्रांजल चंदन बीरगांव तखतपुर ले जयमून कोल दिलीप कोल रामायणी कोल भुवनेश्वर कोल बेलगहना शक्ति बहरा ले श्याम शंकर मिस्त्री विजय पायलट रागनी गीता देवी महक मनीष प्रकाश काशीपुरी राधा पड़वार और कुसुम काशीपुरी। आगे के चिट्ठी आहे राम प्रसाद साहू ग्राम पंचायत खैरा डगनिया ले और रमेश ठाकुर और उखर संगवारी मन चांदनी चौक गंडई पंडरिया ले पवन कुमार सेन प्रभा देवी सेन लक्की विक्की नानू और शिवाजी चौक राजीम ले अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव दत्रेंगी भाटा पारले नोखेलाल वर्मा हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा। आवा संगवारी हुआ सब के फरमाइश में सुनी केदार यादव के ये सुघर गीतला।

देखा संगी हुआ, अरे तता तता बैला चलीस और मस्त झिमिर झिमिर पानी के संग में सुघर गीत ल सुने जिला स्वर धेरे ने केदार यादव जी मन संगी हुआ। आगे के गीत पर फरमाइशी चिट्ठी आहे हमार ग्राम महमनपुर भक्तिन बाजार अकलतरली रमेश कैवत राजकुमारी आरती कैवत और पोड़ी भाठा कलतराले दिलीप चंदन चुआरिया म्यादो निखिल चंदन वसुंधरा चंदन प्रांजल चंदन बिरगांव तखतपुर ले दिलीप कौल जयमुन कौल रामायणी कौल भुवनेश्वर कौल। आगे चिट्ठिया है लक्षणपुर ले रामजी साहू जीवन लाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश कुमार साहू और महावीरवाड़ भाठा पारा ले श्रीमती अमृता यादव पार्वती यादव ईश्वरी यादव लक्ष्मी यादव कुमारी प्रेरणा डिम्पी यादव और देवरी भाठा पारा ले गन्नूलाल रजक के आर साहू अश्वनी वर्मा गणेश मिस्त्री मया राम रजक पुनेश्वर रजक फनेश्वर रजक और मुकेश कुमार रजक कुमारी हाव्या रजक और तानिया रजक। आगे आहे चिट्ठी आहे संगी हुआ रिंगनी छत्तीसगढ़ ले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा के और ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ ले राम दुलारी प्रजापति राम शरण प्रजापति चंद्रेश कुमार प्रजापति चंद्रकला प्रजापति और शशिकांता प्रजापति के आवा एमन के फरमाइश में चलिन छत्तीसगढ़ के माटी अब महतारी और किसान के सुगंध ले भरे हमर अपन छत्तीसगढ़ जेन ला दुनिया भर में धान की कटोरा के नाम ले जानते हैं। अब सुनिन हमर छत्तीसगढ़ की मया मेहनत और पहचान ले जुड़ा है सुरीला गीत मोर छत्तीसगढ़ ला कही थे धान के कटोरा त चलो सुरता करिन अपन माटी के और सुनिन ये सुंदर गीत जिला स्वर दही है मंसूरी सिंह और खर संगवारी मन।

हाँ संगी हुआ, धान के बाली ले महके हमर छत्तीसगढ़ के माटी, और किसान के पसीना ले चमके ये धरती सुघर न्यारी। अतका सुघर गीत ल सुने जेला स्वर दे रही है मंसूरी सिंह मन। आगे के चिट्ठी आहे ग्राम बसीबार जिला कोरबा ले शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद कुमारी, आंचल कुमारी, चंचल कुमारी चांदनी, विनय भाई, डॉक्टर मनोज कुमार कंवर। ग्राम रोहासी ले डगेसा राम साहू, नूतन साहू, गौरव साहू, अलका जानवी साहू, घनश्याम साहू। डोंगर गांव छत्तीसगढ़ ले राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजबिये। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ले रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन के। दतरेंगी भाटापारा ले नोखेलाल वर्मा, हीरामणि, परसमणि और पुष्पेंद्र मणि। दरचूरा गांव ले ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरी, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू। एमर रहे ग्राम दरचूरा ले सबके फरमाइश में सुखघर गीत जयंती यादव खर संगवारी के आवाज सुनी तो एकर पर बुधिया हर कैसे हवा। हाँ?

संगी हुआ जयंती यादव उखर संगवारी के स्वर में सुनत रहें ये आखिरी गीत आपके फरमाइश आप मन के गीत के। अब चली मंडी कती। आज के मंडी में धान के भाव 27 रुपये कुंटल, गेहूँ 2200 से अधिकतम 2950, सरसों के कीमत है 5100 अधिकतम 5500, बासमती धान 2010 2200, सूखा मटर 3032, साग भाजी की बात करबो तो आलू 1029 रुपये अधिकतम, पताल 1600 1500 रुपये न्यूनतम, गोंदली के भाव 1200 1800 रुपये अधिकतम। और मौसम के बात करबो तो आज 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किए गए है। बादल छाए रही। कार्यक्रम कैसे लगी इस चिट्ठी पत्र के अगोरा रही कजरी दीदी ला। आज के कार्यक्रम ने देवा विदा झोंका कजरी बहनी के। मया प्रीत भरे राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं अभिजीत पोहनकर।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्म

0: भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिजीत बोहनकर के गाए गीत और गजलों को।

अभिजीत बुहनकर की गाय इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, इस धरती से हमारा अनोखा रिश्ता है। ये रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये समुद्र, ये वृक्ष और पहाड़ हैं। अभी हमारी धरा पूरी तरह से हरियाली से ढकी हुई है, मानो किसी ने हमारी धरती पर हरी चुनरी पहना दी हो। अभी बारिश का मौसम है। जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरती है तो धरती का कोना कोना भीग जाता है और मिट्टी की खुशबू पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। ये फूल, पौधे, पत्ते और हवाएं प्रकृति का अनुपम उपहार है जिसे पाकर हमारा मन झूम उठता है।

श्रोताओं, अभी पूरे देश में मानसून सक्रिय है। बरसते बादल अच्छी फसल के सूचक हैं। बारिश का मौसम हमें ये सिखाता है कि बिना भेदभाव की बूंदें सब जगह बरसती हैं। बादल हमारी धरती को तृप्त करते हैं। साथियों, बारिश की हल्की फुहारें जीवन की खुशी, मस्ती और ताजगी का एहसास कराती है। पहाड़ों पर बारिश होने से नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। पहाड़ों पर बादल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बरसते हैं। पहाड़ियाँ बारिश के दिनों में हरी भरी दिखाई देती है। पहाड़ों की गोद में असंख्य झरने बहने लगते हैं। पहाड़ों की खामोशी हमें सिखाती है कि जीवन का संतुलन शांति और खूबसूरती से किया जा सकता है।

श्रोताओं, हवा प्रकृति का अनमोल और सुंदर उपहार है। ठंडक और सुकून देती हवाएं फूलों की खुशबू को दूर दूर तक फैलाती है। हवा जब बारिश की बूंदों से टकराती है, पेड़ों के पत्तों को स्पर्श करती है, घने जंगल से जब गुजरती है तो एक अनोखा संगीत सुनाती है। ऐसा संगीत जो ईश्वर ने बनाया है। इस संगीत को सुनने के लिए हमें भावनात्मक रूप से प्रकृति से जुड़ना होगा, तभी यह संगीत हमारी आत्मा तक पहुँचेगा। श्रोताओं, बारिश और मोर पक्षी का एक अद्भुत रिश्ता है। जैसे ही बादल छाने लगते हैं, घटा आती है और बारिश की बूंदें जमीन को स्पर्श करती है तो मोर खुश हो जाती हैं, पंख फैलाकर नाचते हैं, आवाजें निकालते हैं। मोर बहुत ही सुंदर पक्षी है। चमकीले पंख, कोमल चाल और सुंदर नृत्य से मोर सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। बारिश के दिनों में कई पक्षियों की आवाज़ों से जंगल गूंज उठता है।

श्रोताओं, प्रकृति की गीतों और बातों की बात, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा में और बातें एक प्रसिद्ध भारतीय सिनेमा की पार्श्व गायिका हेमलता जी की। आज हेमलता जी का जन्मदिन है। इनका जन्म 16 अगस्त 1954 को हैदराबाद में हुआ। हेमलता को बचपन से ही संगीत में रुचि थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में शिक्षा ली। हेमलता को संगीत निर्देशक नौशाद ने फिल्मों में आने की सलाह दी। उन्होंने अपना पहला गीत उषा खन्ना की रचना को गाया था, संगीत निर्देशक रोशन का था। हेमलता ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में कई मधुर गीत गाए। कांच और हीरा, गीत गाता चल, सलाखे, तपस्या और फकीरा के जैसी गानों को उन्होंने शानदार सफलता से गाए। रविंद्र जैन की फिल्म चितचोर में हेमलता ने फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1980 से 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मी दुनिया में खुद को एक पहचान दी अपनी जादू भरी आवाज़ से, और ये आवाज़ आज भी बेहद लोकप्रिय आवाज़ है।

हेमलता जी ने अपने कैरियर में 38 से अधिक भाषाओं में 5000 से अधिक गीत गाए हैं। 1970 से 1980 के दशक में कई लोकप्रिय गाने उन्होंने गाए हैं। उन्होंने रामानंद सागर के ऐतिहासिक टीवी धारावाहिक रामायण, उत्तर रामायण और श्री कृष्णा में गीत और भजन भी गाए हैं। मधुर मखमली आवाज से सबके दिलों में राज करने वाली हेमलता जी को आज उनके जन्मदिन पर अनेकों शुभकामनाएं देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज में गाए कुछ गीतों को।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों और बातों के साथ दीजिए अनुमति अपने साथी आरती को कार्यक्रम रजनीगंधा से। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत।

0: महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृहमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव

0: करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। NTA ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से N. गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद N. मालवीय और डॉ. प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जांच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newsonair.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic, West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह

0: श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म आर्टिकल 15 से, आवाज़ें यासिर देसाई और आकांक्षा शर्मा की थी। गीत के बोल रश्मि विराग के और संगीत पीयूष शंकर का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप
1: कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म लूडो से। आवाज अरिजीत सिंह की थी। गीत के बोल संदीप श्रीवास्तव के और संगीत प्रीतम का।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं, हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं, तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
1: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म शिद्दत से, आवाजें सचिन टंडन, परंपरा टंडन और सचिन जिगर की थी। गीत के बोल कौसर मुनीर के और संगीत सचिन जिगर का।

0: ये गाना
1: मेहंदी हसन साहब का, यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना

आज एक ऐसी नायिका की दास्तां लेकर आई है आपकी ये रेडियो सखी, जिसके चेहरे में न जाने क्या है कि हम सब अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं। वे सचमुच बंगला सौंदर्य की स्वामिनी हैं। उनकी आवाज और संवादों की अदायगी में मीठा मीठा और नमकीन नमकीन बंगला स्वाद घुला है। आइए सलाम करें सादा सरल सहज और सुंदर अभिनेत्री राखी की प्रतिभा को।

बहुत बरस पहले की बात है, बांग्ला अभिनेत्री संध्या रॉय राणा घाट यानी पश्चिम बंगाल में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। माछेर झोल का स्वाद

इस अभिनेत्री को ले आया अपने एक परिचित परिवार के घर, और ये घर था अभिनेत्री राखी का, जिन्हें संध्या राव को देखकर अभिनय की लौ लग गई।

15 वर्ष की उम्र में अभिनेत्री राखी का ब्याह हो गया अजय विश्वास से, जो कि एक फिल्म निर्माता और पत्रकार थे। सन 1968 में राखी अपने पति के पास मुंबई आ गईं। दरअसल एक दिन उनके पति ने अपने ही निर्देशन में बनने वाली फिल्म में राखी को भूमिका देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच यहीं से दूरियां बढ़ने लगी। उन दिनों राखी ने मुंबई में मॉडलिंग और डबिंग जैसे काम किए। थोड़े समय संघर्ष के बाद फिल्म जीवन मृत्यु से राखी की जिंदगी झिलमिल सितारों का आंगन बन गई।

फिल्म जीवन मृत्यु के बाद राखी के पास फिल्मों का अंबार लग गया। उन्होंने बहुत सोच समझकर फिल्में चुनी। उसी दौर में राखी ने सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटी सी लेकिन यादगार भूमिका निभाई।

बाद राखी की कुछ बहुत ही सफल फिल्में आईं, जिनमें से एक थी फिल्म ब्लैकमेल, जिसमें नायक थे धर्मेंद्र, जो राखी की पहली फिल्म जीवन मृत्यु में भी नायक थे। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने राखी से राजेंद्र कृष्ण के इस गीत के जरिए जो कुछ कहा, जमाना आज उस बात को दोबारा तिबारा बल्कि हजार हजार बार कहते हुए भी नहीं थकता।

राखी स्वयं अपनी फिल्म शर्मिली को एक यादगार फिल्म मानती हैं, जिसमें उनकी दोहरी भूमिका थी। आज भी छोटे पर्दे पर इस फिल्म को देखकर लड़के आहें भरते हैं और लड़कियां कहती हैं,

0: मेरा मन।
1: अभिनेत्री राखी ने कुछ ऐसी फिल्में भी की जो व्यावसायिक तो नहीं थी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे फिल्म परमा, फिल्म वित्त निगम की फिल्म 27 डाउन। इसके अलावा उन्होंने एक असमिया फिल्म भी की थी। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ राखी ने लगभग 2 दर्जन फिल्में की। खास बात ये कि इनमें वे कहीं अमिताभ की नायिका हैं तो कहीं माँ। फिल्म काला पत्थर और फिल्म कस्मे वादे।

0: दोस्तों बात चल रही है राखी की अलग अलग नायकों के साथ अभिनीत फिल्मों की। यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में राखी की अहम भूमिका थी। इस फिल्म में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक साथ थे।
1: कौन?

सन 1973 में राखी ने लेखक, निर्देशक और गीतकार गुलजार से प्यार रचा लिया। आज उनकी बेटी बोस्की यानी मेघना खुद फिल्म निर्देशिका बन चुकी हैं। उनकी पहली फिल्म फिलहाल काफी चर्चित रही। अपने फिल्मी करियर के बाद के दिनों में राखी ने चरित्र भूमिका निभानी शुरू की। आज के जमाने के कई नायकों की माँ की भूमिकाएं राखी ने निभाई हैं।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

शहतूत की शाख पे बैठा कोई बुनता है रेशम के तागे, लम्हा लम्हा खोल रहा है, पत्ता पत्ता बीन रहा है, एक एक सांस बजाकर सुनता है सौदाई, एक एक सांस को खोलकर अपने तन पर लिपटाता जाता है, अपनी ही सांसों का कैदी रेशम का ये शायर एक दिन अपने ही तागों में घुटकर मर जाएगा।

एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हूं तन्हाई भी। यादों की बौछारों से जब पलकें भीगने लगती हैं, कितनी सूंधी लगती है तब माजी की रुसवाई भी, और खामोशी का हासिल भी एक लंबी सी खामोशी है। उनकी बात सुनी भी हमने, अपनी बात सुनाई भी।

0: न आने की आहट न जाने की टोह मिलती है, कब आते हो कब जाते हो। इमली का ये पेड़ हवा में हिलता है तो ईंटों की दीवार पे परछाई का छींटा पड़ता है और जस्प हो जाता है, कब आते हो कब जाते हो। बंद कमरे में कभी कभी जब दिए की लौ हिल जाती है तो एक बड़ा सा साया मुझको घूंट घूंट पीने लगता है। आंखें मुझसे दूर बैठकर मुझको ही देखती रहती हैं, कब आते हो कब जाते हो। दिन में कितनी कितनी बार मुझको तुम याद आते हो।
1: बस रे चुप।

0: अच्छा यह गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: जाग के काटे सारे रैना, जाग के काटे।
0: हम अभी हाजिर हुए।

रात चुपचाप दबे पांव चली जाती है। रात खामोश है, रोती नहीं, हंसती भी नहीं। कांच का नीला सा गुंबद है, उड़ा जाता है। खाली खाली कोई बजरा सा बहा जाता है। चांद की किरणों में वो रोज सा रेशम भी नहीं। चांद की चिकनी डली है कि घुल जाती है, और सन्नाटों की एक धूल उड़ी जाती है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिज्र की रातों में ये देखो तो क्या होता है।

बस एक ही सुर में, एक ही लय पे सुबह से देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं तमाम मौसम, टपक रहा है पलक पलक, रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म लोभान चल रहा है।

0: फिल्म शक, संगीत वसंत देसाई का। फिल्म इजाजत, पंचम का संगीत।
1: चुप सी लगी।
0: फिल्म सन्नाटा, संगीत हेमंत कुमार का। फिल्म खुशबू, संगीत पंचम का।
2: अब के ना सावन बरसे।
0: फिल्म किनारा, संगीत पंचम। फिल्म लीला, संगीत जगजीत सिंह। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता।
1: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज यूजीसी नीट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology, and sustainable development. These fields will shape the economies and the society's future.
1: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation